नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 14 सितंबर 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से भी आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। सुबह के 6 बजने ही वाले हैं, समाचार थोड़ी ही देर में अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि ब्रिक्स देशों में सहयोग की प्रेरणा हो और मानवता की प्रगति के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि

0: ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले 3 दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कजाखिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर पूरे देश में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर महीने में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होंगे। देशभर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में हिंदी दिवस 2026 और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। श्री शाह उद्घाटन सत्र में हिंदी को बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को 2025-26 के राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत MTEL गैया पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय किया जा रहा है। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। इसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले उत्सव का आज पहला दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

वंदन वार, सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है, यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे कुछ शिक्षा दे सकती है। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

अपने अनोखे रूप और गुणों से श्री गणेश देते हैं जीवन के अनमोल सूत्र। मन में विश्वास की ज्योत जले तो जीवन पथ उजला ही दिखता है।

बस यही है प्रार्थना, सभी के मन के विश्वास और आस्था की डोर को स्वयं से बांधे रखना और इस जीवन के हर विघ्न को हरना। श्री गणेश।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

झरोखा के तुरंत बाद 6:35 से आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस। आज सुनिए 311वां भाग। सुबह 6:45 से संगीत सरिता में सुनिए श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। 14वीं कड़ी आज सुन सकते हैं। कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत हम है राही प्यार के कार्यक्रम सुन सकते हैं 7:30 से। 8 से सुनिए समाचार प्रभात त्रिवेणी कार्यक्रम का समय 8:15 का और 8:30 से नए जमाने के गीत चित्रलोक कार्यक्रम के साथ। सुबह 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है फिल्मकार जीपी सिप्पी पर और 10 से सुनिए उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण फिल्मकार विमल रॉय की सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य से मंदाकिनी जोशी की बातचीत सुन सकते हैं। सुबह 11 से रंग तरंग 12 से हिंदी में समाचार 12:05 से यादों की महफिल। दोपहर 1 से सुरीला सफर और 2 से त्रिवेणी का पुनः प्रसारण। दोपहर समाचार का समय 2:15 का है और दोपहर 2:30 से आप सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। 3 से सखी सहेली और शाम 4 पिटारा के अंतर्गत आज सेहत की बातें सेहतनामा कार्यक्रम के अंतर्गत पोषण इस

पर बातचीत सुनिए आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी कड़ी। शाम 5 बजे छाया गीत का पुनः प्रसारण और 5:30 से तराने नए पुराने। शाम 6 बजे से हिंदी में समाचार और 6:05 से जारी रहेगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। शाम 6:35 से संध्या रंजन में सुनिए भक्ति संगीत। 6:45 से संगीत सरिता के अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आज सुनिए 14वीं कड़ी, कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। फौजी साथियों की सेवा में प्रस्तुत होगा कार्यक्रम जयमाला शाम 7 बजे से और 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है वजूद। नाटिका दीप शिखा आप सुन सकते हैं रात 8 बजे से हवा महल में, लेखन गिरीश का, निर्देशन डॉक्टर अचला नागर का।

आज के फनकारी कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात 9:30 से भी। फिल्म का जीपी सिप्पी पर केंद्रित है आज का ये कार्यक्रम। रात 10 से छाया गीत और 10:30 से ढलती जाए रात। 11 से आप सुन सकते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का पुनः प्रसारण। ये थे आज के मुख्य कार्यक्रम जिनका विवरण आपने सुना झरोखा में। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस आज 311वां भाग।

अंगद के मुख से कई रावणों के उपहास की कथाएं सुन रावण तिरस्कार भरे स्वर में बोला, मूर्ख वानर, मैं वही रावण हूं जिसकी भुजाओं का बल कैलाश पर्वत को ज्ञात है, जिसका पराक्रम स्वयं महादेव जानते हैं, जिसने अगणित बार अपने सिर काट और चढ़ाकर उनकी पूजा की थी, दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथियों के विशालकाय दांत मेरी छाती से टकराकर गाजर मूली की तरह टूट गए थे, मेरे चलने मात्र से पृथ्वी ऐसे डोलती है मानो भूकंप आ गया हो, मैं वही जगत प्रसिद्ध रावण हूं। क्या ये सब तूने अपने कानों से नहीं सुना जो मुझे छोटा समझ एक मनुष्य की बड़ाई करता है? तू कितना अज्ञानी है अब मैं समझ गया। रावण के वचन सुन अंगद श्री राम की महिमा और अनंत शक्ति का बखान करते हुए कहते हैं, तू मूर्ख है जो श्री राम को साधारण मनुष्य, हनुमान को वानर, कामदेव को धनुर्धर, कल्प वृक्ष को एक सामान्य पेड़, गरुड़ को मात्र एक पक्षी और शेषनाग को एक मामूली सर्प समझता है। यदि तूने श्रीराम से वैर मोल लिया तो ब्रह्मा और रुद्र भी तेरी रक्षा नहीं कर सकेंगे।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए अब सुनते हैं इस श्रृंखला की 14वीं कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना श्रृंखला की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। और स्टूडियो में हमारे साथ हैं जाने माने शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे जी। शकुंतला जी, किराना घराने के बहुत से गायकों ने सुबद्ध संगीत या उपशास्त्रीय संगीत जिसे कहते हैं लोकप्रिय किया है गा करके, तो खास तौर से ठुमरी और दादरा जो हम सुनते अलग अलग गायकों की आवाज में, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे।
2: जयंत जी, जी किराना घराने की ठुमरी है
1: जी,
2: जो ठुमरी बाकी नॉर्मल ठुमरी से थोड़ी अलग है।
1: अच्छा,
2: वैसे डायरेक्ट ठुमरी अगर आपने बोला तो उपशास्त्रीय अथवा सुगम शास्त्रीय संगीत में राग और शब्द को समान महत्व आता है। और इस घाट में विशिष्ट स्वर वाक्य में बंदिश के शब्दों में सौंदर्यपूर्ण गुम्फन करके शब्द का अर्थ और उसका भाव अधिक स्पष्ट करना और उसका जो गान प्रकार है उसका यही उद्देश्य है।
1: हाँ।
2: और राग तो दिखाई देता है लेकिन

0: कभी कभी उसके अर्थ के कारण राग का नियम एकदम काटेकोर ऐसा पालन नहीं जाता है,
1: सटीक तरीके से उसका पालन नहीं होता।
0: शब्दों का भावनिक आशय समृद्ध करने के लिए
1: जी, जी।
0: राग के बाहर के स्वर लाए तो उसमें कुछ हमने गैर किया, ऐसा नहीं होता है।
1: अच्छा,
0: उपशास्त्रीय गान में शब्दों को भी महत्व है उतना ही जितना स्वर को भी है
1: जी।
0: स्वर वाक्य शब्दों का हाथ पकड़ के ही आता है। बोल बनाओ और बोल बाट
1: जी,
0: ये इस स्वर वाक्य का एक अलग विशिष्टता है। बोल बाट यानी क्या, लय के अंग से जो आती है ठुमरी वो बोल बाट।
1: हाँ।
0: बोल बनाओ यानी स्वर के अंग से आती है ये ठुमरी।
1: अच्छा,
0: ठुमरी है तो थोड़ी संत गति भारदस्त उसका स्वर लगाओ, और दादरा अगर है तो थोड़ा सा चंचल और खेल करी ऐसा होता है
1: जी। जी,
0: इस घाट के एक प्रस्तुति में आलाप के माध्यम से शब्दों को पकड़ के
1: जी,
0: उसको पकड़ के आने वाली स्वर वाक्य और इस्तेमाल हम करते हैं, इसके कारण तान सरगम इत्यादि प्रकार को यहाँ कुछ भी वाव नहीं है।
1: अच्छा,
0: राग जब दूसरा स्वर ठुमरी में आता है, राग का अलग का स्वर
1: जी,
0: तो हम धीरे से इसको अंदर आने देते हैं।
1: अच्छा,
0: और उसको हम मिश्र कहते हैं, मिश्र गारा ऐसा करके वो उसको अंदर लेता है और
1: जी, जी, जी, जी।
0: उस अंग से अंदर आता है। सुगम और शास्त्रीय प्रकार सादर करते समय आवाज का जो पोत ढंग जो हमें बदलना पड़ता है
1: जी, जी।
0: शब्द फेंक विशिष्ट पद्धति में करनी पड़ती है। स्वरोच्चार और स्वर बांधनी ये भी अलग ढंग से करनी पड़ती है। इसीलिए आलाप ख्याल का और ठुमरी का ये बात सुनने वाले के समझ में आते है, ठुमरी है या आलाप है। ये नॉर्मल ठुमरी का ये जो हो गया
1: जी, जी, जी।
0: अभी किराना वाली ठुमरी और इसमें क्या फर्क है ऐसा आप अगर पूछे, भाव प्रधानता स्वर प्रधानता ये किराने घराने की ठुमरी की एक अभिव्यक्ति दिखाने की विशेषता है।
1: जी, जी।
0: शुद्ध मधुर और सुरीले स्वरों का प्रयोग जो होता है इसी घराने के प्रमुख विशेषता से ये भाव आया हुआ है।
1: अच्छा,
0: धीमी गति से प्रस्तुत की गई ठुमरी
1: जी,
0: उसका गायन अपेक्षाकृत शांत संयमित शैली में किया जाता है जिससे भाव स्पष्ट रूप से उभरते हैं। कर्ण स्वरों का प्रयोग, मेंड स्वर, कर्ण स्वर, मुरकी तथा सूक्ष्म स्वर लगाओ जो सब हमारे किराने घराने की शैली है
1: जी।
0: किराना घराने में मुख्यतः बोल बनाओ की ठुमरी यानी गायन के साथ जिसका अर्थ के साथ भाव के साथ इसका विस्तार होता है
1: जी।
0: और ठुमरी में गीत के बोलों का भाव जो विस्तार पूर्वक और भावपूर्ण प्रस्तुतिकरण किया जाता है। अभी हम खास ठुमरी सुनेंगे खान साहब अब्दुल करीम खान की, और ये बहुत ही गारा राग में है
1: जी।
0: जादू भरे नैन वो बहुत पॉपुलर है और बहुत ही अच्छी ढंग से गाई है।

0: की प्रस्तुति अत्यंत मधुर, कोमल और भावपूर्ण होती है। आपने तो अभी सुन ली
1: जी।
0: इस घराने की ठुमरी में मुख्यतः श्रृंगार और भक्ति रस की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है, वो किराना घराना है।
1: वाह।
0: प्रमुख कलाकार उस्ताद अब्दुल करीम खान, पंडित भीमसेन जोशी, डॉक्टर प्रभात रे, विदुषी माणिक वर्मा, पंडित फिरोज दस्तूर, पंडित सवाई गंधर्व आदि कलाकारों ने किराना घराने की ठुमरी और उसकी विशिष्ट पहचान लोगों तक पहुंचाई है। विशेष रूप से डॉक्टर प्रभा अत्रे ने ठुमरी के सौंदर्य और भाव पक्ष को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्हीं ने गाया हुआ एक बहुत ही अच्छा दादरा है, लेकिन उसका थोड़ा ढंग बदल के मैं गाती हूँ।

0: किराना घराने की ठुमरी में
1: जी
0: तकनीकी चमत्कारी की अपेक्षा स्वर सौंदर्य, भाव अभिव्यक्ति और मधुरता को अधिक महत्व दिया जाता है।
1: जी जी जी,
0: ये तो इसका थोड़ा अनुभव अगर आपको अभी इस दादरा में आया तो पावन हो गई मैं।
2: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, आज आपने सुनी इस श्रृंखला की 14वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

मन्ना डे और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे संगीत सम्राट तानसेन। फिल्म का ये गीत स्वामी हरिदास ने इसे लिखा, एसएन त्रिपाठी का संगीत। आइए अब सुनते हैं शैलेंद्र का लिखा ये गीत, जिसे लता मंगेशकर ने अपनी आवाज से सजाया। आम्रपाली फिल्म के इस गीत में संगीत शंकर जयकिशन का।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
2: बिल्कुल।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

आशा भोसले और साथियों की आवाज में तुलसीदास फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। जीएस नेपाली के बोल चित्रगुप्त का संगीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: गीत आदित्य की आवाज में शर्त फिल्म का गीत आपने सुना, राजेंद्र कृष्ण के बोल, हेमंत कुमार का संगीत। आइए सुनते हैं गीत आदित्य को श्रीमती 420 फिल्म के इस गीत में, जानिसार अख्तर ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत।
1: छोड़ के कहां जाओगे, तुम बड़ा दुख पाओगे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

0: भाई बहन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें, साहिल उद्यानवी के बोल, एन दत्ता का संगीत।
1: जाना है तो जाओ।

0: महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे बंधन फिल्म का ये गीत। इसे लिखा इंदिवर ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के, और अंतराल में जाने से ठीक पहले हमने आपको सुनवाया मेरे सनम फिल्म का गीत, जिसमें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें आपने सुनी। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे ओपी नैयर का संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं फिल्म ब्रह्मचारी से।

सीता और गीता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, हम हैं राही प्यार के। और अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में अंदाज फिल्म से ये गीत, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

अंदाज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। इसके साथ ही आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। मुंबई में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में 2025-26 के राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। भारतीय चालक दल के 13 सदस्यों को बचाया गया। धीरज बोमा देवरा ने मैक्सिको में तीरंदाजी विश्व कप के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बनकर इतिहास रचा। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों के नेताओं का दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए आभार व्यक्त किया है। दो दिन के शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल थे। मलेशिया

0: के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलूपो सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शिखर सम्मेलन में उपस्थित थे। भारत ने 12-13 सितंबर 2026 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें समूह के 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान अंतिम 3 दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें भी की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा।
1: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे। भारतीय न्याय संहिता जो बनाई है, इसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भारतीय आधार देने का काम किया है और कई सारे राज्यों में सजा कराने का दर का एक ही साल में 30% वृद्धि हुआ है।
0: श्री शाह ने कहा कि 3 तलाक को समाप्त कर दिया गया है, जिससे मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर श्री शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A को बिना किसी विवाद के हटा दिया गया है।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा में धारा 370 और 35A हटाना जो असंभव माना जाता था, रक्त की एक भी बूंद गिराए बगैर, एक भी गोली चलाए बगैर धारा 370 आज पास्ट बनकर खड़ी है और कश्मीर पूर्णतया भारत के साथ जुड़ा है।
0: श्री शाह ने कहा कि सरकार ने 5 दशकों से चले आ रहे नक्सलवाद को समाप्त कर दिया है और देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 14 से अधिक शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 महीने के राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान की घोषणा की है। यह अभियान जन भागीदारी के माध्यम से वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूत करने के लिए 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। मुंबई में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह अभियान भाजपा एनडीए के सहयोगी दलों, स्वयंसेवी संगठनों और देश भर के नागरिकों द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस अभियान में सेवा ज्योति कलश यात्रा, वडनगर वाराणसी सेवा यात्रा, सेवा से मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, सेवाचे रंग, राष्ट्र संगे और सेवा प्रथम नवाचार चुनौती शामिल है। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृहमंत्री अमित शाह आज नवी मुंबई में हिंदी दिवस 2026 कार्यक्रम और 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
4: महाराष्ट्र के नवी मुंबई में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य महाराष्ट्र की समृद्ध भाषाएं, सांस्कृतिक और साहित्य परंपरा के साथ हिंदी के जीवंत संबंधों को रेखांकित करना है। उद्घाटन सत्र में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्ष 2025-26 के लिए राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन में शामिल होंगे। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
0: भारत ने ओमान तट के

0: पास वाणिज्यिक पोत एमटीएल गाइया पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि अब तक चालक दल के 13 भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया है। एक भारतीय नागरिक की तलाश जारी है। दूतावास ने कहा कि जारी खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों को बचाने में सहयोग के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। भारत ने तनाव को तत्काल कम करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की सलाह दी है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच आज ओमान में होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। इसमें होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर जहाजों की आवाजाही की व्यवस्था पर चर्चा की जानी थी। ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी ने कल देर शाम इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज सलालाह में होने वाली बैठक को आम सहमति बनाने के क्रम में स्थगित किया गया है। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार कुछ क्षेत्रीय देशों के अनुरोध पर ईरान और ओमान ने संयुक्त रूप से ये निर्णय लिया। यमन की सेना ने लाल सागर के तट पर ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों के ठिकाने पर हमले किए हैं, जबकि हौसियों ने यमन की सरकार का समर्थन कर रहे पड़ोसी देश सऊदी अरब को निशाना बनाया है। यमन की सरकार ने लाल सागर तट पर और अधिक सैनिक भेजने का फैसला किया है। पिछले सप्ताह हौसी विद्रोहियों ने महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर मोखा और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में एक द्वीप पर कब्जा कर लिया था। पूरे देश में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। हमारी संवाददाता ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है।
1: गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे महाराष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घरों और मोहल्लों में भक्ति गीतों, आरती और गणपति बाप्पा मोरिया के जयघोष के बीच लोग गणपति बाप्पा का स्वागत कर रहे हैं। मुंबई में कई गणेश मंडल सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे और बेस्ट ने विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तर प्रदेश में भी आज से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कजरी तीज मनाई जा रही है।
2: लखनऊ के झूलेलाल वाटिका पर भव्य गणेश उत्सव का शुभारंभ होगा। गोमती के किनारे आज से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलने वाले इस गणेश उत्सव में 13,000 स्क्वायर फीट का वातानुकूलित वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है, जहां भक्त बैठेंगे और गजानन की चिट्ठी लिखेंगे। उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कजरी तीज पर्व आज मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करेंगी और निर्जला व्रत रखेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बाल विकास, पोषण और प्रारंभिक प्रोत्साहन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में यूनिसेफ इंडिया की विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा एस पांडे और स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग और नवजात शिशु विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331-04-81 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
3: भारतीय तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व खिलाड़ी बन गए हैं। मैक्सिको में कल उन्होंने जापान के नाकानिशी जूनिया को रोमांचक शूट ऑफ में हराया। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 जीत लिया है। भारत ने कल फाइनल में श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 184 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम निर्धारित 20 ओवर में 111 रन ही बना सकी। भारत की ओर से शैफ अली वर्मा ने 39 गेंदों में 68 रन बनाए और स्मृति मंधाना ने 39 गेंदों में 59 रन का योगदान दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय महिला टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई दी है। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 156 रन बनाए। जवाब में भारत ने 13 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट पर 157 रन बनाकर जीत हासिल की। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 32 गेंदों में 82 रन बनाए और अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

0: इसके अलावा जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब भी जीत लिया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने भारत की मेजबानी में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने ब्रिक्स नेताओं का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, जय हो दिल्ली, अब पेचिंग में मिलेंगे। सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान हिंदुस्तान में है। पत्र लिखता है, खनिजों को हथियार न बनाए। अमर उजाला की सुर्खी है, ब्रिक्स का अब साझा लक्ष्य सर्वजन हिताय। राजस्थान पत्रिका ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट लिमिटिंग ओवरशूट के हवाले से लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग की पहली लड़ाई हारे, दशकों तक रहेगा ज्यादा गर्मी का दौर। लोकसत्य ने स्वदेश लौटने पर विचार कर रहे लोगों पर लिखा है, पश्चिमी सपनों पर वीजा की कैंची, भारत लौट रहा टैलेंट। अमरीका यूके कनाडा से शुरू हुआ रिवर्स ब्रेन ड्रेन। दैनिक भास्कर ने सोशल मीडिया अटेंशन पर लिखा है, डिजिटल दौर में शॉक कंटेंट का खेल जिंदगियां बर्बाद कर रहा। हिंदी दिवस पर आज कई समाचार पत्रों ने विशेष आलेख प्रकाशित किए हैं। हिंदुस्तान ने भारतेंदु हरिश्चंद की पंक्तियां, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, निबिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश की धड़कन है हिंदी।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस भी मनाया जा रहा है। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सभी साथियों को सलमा का सप्रेम नमस्कार। कोटि कोटि कंठों की भाषा, जन जन की अभिलाषा, हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी हम सब की परिभाषा। आज संसार में करीब 7000 भाषाएं और अनगिनत बोलियां हैं, जिसमें हिंदी संसार की दूसरी बड़ी भाषा है, जिसका उपयोग हम सब करते हैं। हिंदी अपने विपुल वैभव और समृद्ध शब्दकोश के कारण राजभाषा के पद पर सुशोभित है। इसमें अपनेपन की सुगंध, सरलता और मधुरता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। साथियों, जयशंकर प्रसाद का हिंदी भाषा और साहित्य में अतुलनीय योगदान है। उन्होंने हिंदी को किताबी रूप से मुक्त कर आम आदमी की भाषा बनाया। आइए सुनते हैं जयशंकर प्रसाद की लिखी एक रचना।

भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं होती, वो हमारी भावनाओं की आवाज होती है। किसी भाषा का विस्तार तभी होता है जब वो लोगों के दिलों तक पहुंचती है। हिंदी भी ऐसी ही भाषा है, सरल, सहज और अपनापन लिए हुए। देश में बोली जाने वाली अनेक भाषाओं और बोलियों के बीच हिंदी संवाद का एक सुंदर सेतु बनकर सामने आती है, और जब कोई भाषा सहजता से हमारे मन की बात कह देती है तो वो अपनी सी लगती है। दिलों को जोड़ने वाली सरल भाषा हिंदी का प्रचार प्रसार किसी दूसरी भाषा को पीछे करना नहीं, बल्कि भारतीय भाषाओं की समृद्ध परंपरा के साथ हिंदी को भी आगे बढ़ाना है। भारत अनेकताओं का देश है। यहाँ भाषाएं, बोलियां, पहनावे अलग अलग हैं, लेकिन इन विविधताओं के बीच एकता की जो डोर हमें बांधती है उसमें भाषाओं की भूमिका बहुत अहम है। हिंदी ने देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों को एक दूसरे से संवाद करने का अवसर दिया है। ये संवाद आगे चलकर अपनापन बनता है और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। साथियों, अमृता प्रीतम की प्रसिद्ध कविता अंबर की एक पाक सुराही उनकी अत्यंत भावपूर्ण और रोमानी रचनाओं में से एक है। तो आइए सुनते हैं यही सुंदर गीत।

हिंदी को संविधान ने राजभाषा के रूप में स्थान दिया है। साथ ही भारत की हर भाषा हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। हिंदी का सम्मान तभी पूरा होगा जब हम भारत की सभी भाषाओं का सम्मान करें, क्योंकि देश की असली सुंदरता यही तो है, अनेक स्वर लेकिन भावना एक। हिंदी की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी सहजता है। उसमें संस्कृत की गरिमा, उर्दू की चाशनी, लोक भाषाओं की मिट्टी की खुशबू और बोलचाल की आत्मीयता है। यही कारण है कि हिंदी में प्रेम भी बड़ी सुंदरता से व्यक्त होता है और जीवन दर्शन भी। हिंदी को केवल बोलने की भाषा नहीं बल्कि जोड़ने, समझने और दिल से दिल तक पहुंचने वाली भाषा बनाएं। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का एक विशेष स्थान है। आइए सुनते हैं उनकी एक रचना।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे

हिंदी की सरलता को अपनाएं, उसकी सुंदरता को महसूस करें और हिंदी भाषा के माध्यम से भारत की एकता के स्वर को और मधुर बनाएं। अब आज की त्रिवेणी होती है संपन्न। अब दीजिए सलमा को आज्ञा। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही विविध भारती परिवार की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं।

एबीसीडी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे शंकर महादेवन और विशाल ददलानी की आवाजों में, मयूरपुरी के बोल सागर जिगर का संगीत। और हर वर्ष जब हम गणेश जी की प्रतिमा विसर्जित करते हैं तो यही चाहते हैं, यही कामना करते हैं कि अगले बरस वो जल्द से जल्द आए। और आज से गणेश चतुर्थी शुरू है, आज है गणेश चतुर्थी और अब 11 दिनों तक ये त्यौहार गणेश पूजा का मनाया जाएगा। देश भर में ऐसा मनाया जा रहा है ये त्यौहार, और ऐसा लगता है कि हर साल जब श्री गणेश को हम विराजमान करते हैं तो हम सभी अपने जीवन को एक नई ऊर्जा, नई गति और नए उत्साह से भरते हैं, जो साल भर हमारे जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने में हमें बल देता है। तो बस इस उत्सव में रंगने का माहौल तो शुरू हो ही चुका है, इसका पूरा आनंद लीजिएगा।

विशाल ददलानी और साथियों की आवाज में बैंजो फिल्म का गीत आपने सुना। अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा, विशाल शेखर का संगीत। और जबकि गणेश पूजा का माहौल है और उत्सव का जब भी माहौल होता है तो सबसे ज्यादा मिठाई भी गणेश जी के बहाने ही हम खा लेते हैं कि भाई प्रसाद है खाते जाएं, लेकिन नई ऊर्जा इस उत्सव से तो हमारे मन में भरी रही है, किंतु अपने मन और सेहत का ख्याल रखना भी हमारे लिए जरूरी है, तो बस इसका भी ध्यान रखिएगा।

शाशा तिरुपति की आवाज में आप सुन रहे थे ओके जानू फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा गुलजार ने, ए आर रहमान का संगीत। आज है 14 सितंबर और आज के दिन मनाया जाता है हिंदी दिवस। 14 सितंबर 1949 में को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया और पहली बार 1953 में 14 सितंबर के दिन आधिकारिक रूप से हिंदी दिवस मनाया गया। तो एक ऐसी भाषा है हिंदी जिसमें संसार की कई भाषाओं का सहज समावेश हमें मिलता है और हम ये कह सकते हैं कि हिंदी भेदभाव नहीं मिलकर चलना सिखाती है। तो बस अपनी भाषा पर गर्व करें और हिंदी पढ़ना लिखना न जानने पर नहीं बल्कि जानने पर गर्व करें।

0: नीरजा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान की आवाज में, प्रसून जोशी के बोल, विशाल खुराना का संगीत।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
3: बिल्कुल।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और उत्सव का माहौल है तो मन का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी तो ये सबके साथ मिलकर झूमता है लेकिन कभी कभी गुमसुम हो जाता है। किसी ने पूछा नहीं, बुलाया नहीं, या मान सम्मान में कुछ कमी रह गई, तो न जाने ऐसी कितनी बातें होती हैं इस बीच में जो मन को विचलित कर सकती है। तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए तो सोचेंगे, पर पहले तो एक गीत सुन लेना चाहिए।

जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजों में आप सुन रहे थे जुनैद वसी का लिखा ये गीत। चिरंतन भट्ट ने संगीत से सजाया था जॉली एलबी 2 फिल्म के इस गीत को। और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का, बस अभी हाजिर होते हैं।

0: चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। चिन्मय श्रीपदा और गोपी सुंदर की आवाजें, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, विशाल शेखर का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और हम बात कर रहे थे कि

0: उत्सव में खास तौर से मन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं, ढेर सारी तैयारियां होती हैं और किसी किसी के घर भी जाना होता है, सबसे मिलना होता है। लेकिन माहौल जो भी हो, सबसे जरूरी है अपने मन का ख्याल रखना, क्योंकि अगर आपका मन खुश है, हल्का है, तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है।
1: मुरैना

शालमली खोलगड़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे तुम्हारी सुलू फिल्म का ये गीत, वायु ने से लिखा, तनिष्क बागची का संगीत। और हम बात कर रहे थे कि मन जो है इसी तरह से हल्का होकर उड़ना चाहता है, बहुत सारी चीज़ों को महसूस करना चाहता है। तो अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगे तो उसे बांध कर दिल से ना लगा कर बैठ जाएं, क्योंकि इससे तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किसी दोस्त से आप ये बात साझा कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा नहीं लग रहा आपको जिनसे आप वो बातें कर सकते हैं तो अपनी डायरी में लिख सकते हैं, किसी पेज पर लिख कर फाड़ कर फेंक सकते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी मन से वो बातें आप निकालेंगे उतना ही जल्दी आपका मन हल्का होगा और आपको जीवन में आनंद आने लगेगा।

सनम रे फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शान की आवाज, मनोज मुंतशिर के बोल और जीत गांगुली का संगीत। कुछ इस तरह से छोटे छोटे तमाशे हमारा मन भी करता है, लेकिन मन का माहौल बदलने का ये बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि गणेश पूजा शुरू हो गई और खास बात इसकी ये है कि आपको झूमने नाचने गाने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिलता है और इससे मन बड़ा खुश रहता है।

ट्यूबलाइट फिल्म का ये गीत आपने सुना, कमाल खान, देव नेगी, नक्श अजीज और तुषार जोशी की आवाज थी। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, प्रीतम का संगीत। और जब हम बात कर रहे हैं मन को हल्का रखने की और अपने जीवन को अच्छा करने की, तो एक सबसे गहन सूत्र है जो हम आपको बता रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम ही खुद की आलोचना करते हैं और लगातार करते हैं, लेकिन अगर इससे हमारे अंदर कोई बदलाव हम नहीं ला रहे हैं, सिर्फ अपनी आलोचना कर रहे हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है। इसके बजाय अपनी जो भी कमियां हैं उन्हें जरूर देखिए, लेकिन लगातार उसके बारे में मत बोलिए, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि मन इस बात को गांठ बांधता रहता है और उसे लगता है कि हम तो ऐसे ही हैं। तो इस तरह से अपने मन को आप ट्रेंड मत कीजिए, बल्कि खुद को इस तरह से तराशिए कि आपके अंदर की कमियां जरूर दूर हों, लेकिन आपका मन ये ना सोचे कि सिर्फ कमियां ही कमियां आपके अंदर है। तो अपने मन को स्वस्थ रखने और खुश रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। फिर देखिए कैसा आपका मन कहता है कि आपका वो फैन हो गया।

नक्स अजीज की आवाज में फैन फिल्म से गीत आपने सुना, वरुण ग्रोवर के बोल, विशाल शेखर का संगीत। और इसके साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यही समाप्त होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में।

0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज के फनकार।

0: ये सच है कि हमारी और आपकी दोस्ती इतनी पक्की है कि जिसे हम कभी तोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन ये गाना हमारी दोस्ती के नाम नहीं है बल्कि उस शख्सियत के नाम है जिस पर केंद्रित है आज के फनकार कार्यक्रम। जरा ये संवाद सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
1: कितने आदमी थे?
2: सरदार,
1: दो आदमी थे। दो आदमी। सुअर के बच्चों, वो दो थे और तुम तीन, फिर भी वापस आ गए। खाली हाथ क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों, धिक्कार है। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर?
3: पूरे 50,000।
1: सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहां से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो मां कहती है, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और ये तीन हरामजादे, ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिलाए दिए। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी।
2: कितनी गोली है इसके अंदर?
1: हा? कितनी गोली है?
4: छह सरदार,
1: छह, छह गोली, छह गोली है इसके अंदर, छह गोली और आदमी तीन। बहुत नाइंसाफी है ये। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। अब इसके तीन खानों में गोली है, तीन खाली। अब हम इसको घुमाए दिए। अब कहाँ गोली है कहाँ नहीं, हमको नहीं पता,
5: हमको कुछ नहीं पता।
1: इस पिस्तौल में तीन जिंदगी तीन मौत बंद है, देखें किसे क्या मिलता है। बच गया साला।

0: होगा कालिया?
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब गोली खा। कमाल हो गया।
2: तीनों बच गए।

अब आपको लग रहा होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज उस शख्सियत पर केंद्रित है जिसका फिल्म शोले से कुछ ना कुछ तो ताल्लुक है। सोचते रहिए, आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: भाई आज के फनकार कार्यक्रम में अगर कोई पहेलियां बुझाए तो जाहिर है कि आप पसोपेश में पड़ जाएंगे, आप चक्कर में पड़ जाएंगे, आप सोच में भी पड़ जाएंगे। तो अब मुझे लग रहा है कि बहुत देर हो गई पहेली को सुलझा लिया जाए और आपको बता दिया जाए कि आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक बहुत बड़े और बहुत ही कामयाब निर्माता निर्देशक पर जिनका नाम है जीपी सिप्पी।
1: हवा के साथ साथ,
2: अरे रे रे।
1: घटा के संग संग,
2: संभालना।
1: हवा के साथ साथ, घटा के संग संग।

0: रेशम जुल्फे लहराने दे ला ला ला ला ला ला
1: जीपी सिप्पी का नाम हिंदी सिनेमा उद्योग के इतिहास में केवल एक फिल्म के लिए याद किया जाएगा, लेकिन उस फिल्म का पता तो आपको भी है और वो फिल्म है 70 mm वाली शोले। लेकिन जीपी सिप्पी ने सिर्फ शोले ही नहीं बनाई और वो सिर्फ प्रोड्यूसर ही नहीं थे, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में उनकी शुरुआत बतौर डायरेक्टर हुई थी और वो भी साल 1955 में। फिल्म थी मरीन ड्राइव।

उसके बाद उन्होंने एक बड़ी ही कामयाब फिल्म का निर्देशन किया। इस फिल्म के गाने आज तक संगीत के कदरदान गुनगुनाते हैं। ये फिल्म थी अदले जहांगीर।

साल 1956 में जीपी सिप्पी की निर्देशित फिल्म आई श्रीमती 420। साल 1959 में उन्होंने बनाई भाई बहन, इस फिल्म के निर्देशक थे वो। अब जरा आपको ये भी बता दिया जाए कि जीपी सिप्पी प्रोड्यूसर बने थे सन 1951 में फिल्म सजा के जरिए। फिल्म सजा के गाने हम आज भी गुनगुनाते हैं।

सन 1958 में उन्होंने एक सस्पेंस फिल्म बनाई 12 o'clock। उसके बाद सन 1955 में आई गुनगुनाती हुई कामयाब फिल्म मेरे सनम के प्रोड्यूसर भी जीपी सिप्पी ही थे।

आज के फनकार कार्यक्रम में हम आज आपको निर्माता निर्देशक जीपी सिप्पी के बारे में बता रहे हैं, जिनका जन्म 14 सितंबर 1914 को हुआ था और वो दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में बतौर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जाने जाते हैं। ज्यादातर लोगों को उनकी फिल्म शोले का पता है, इससे आगे या पीछे की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। फिल्म शोले के निर्देशक तो थे उनके बेटे रमेश सिप्पी, लेकिन जीपी सिप्पी ने शोले के पहले और बाद में कई नामी फिल्में बनाई हैं। शोले से पहले ही वो सन 1968 में ब्रह्मचारी जैसी कामयाब फिल्म बना चुके थे।

दूसरी तरफ सन 1971 में उन्होंने बनाई थी फिल्म अंदाज, सन 1975 फिल्म शूली, और शूली के ठीक बाद सन 1980 में आई थी फिल्म शान। सन 1985 में रमेश सिप्पी के निर्देशन में जीपी सिप्पी की प्रोड्यूस फिल्म आई थी सागर।

सन 1985 के बाद से जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस का ग्राफ थोड़ा सा नीचे हुआ था। दरअसल इसके बाद आने वाली फिल्में कामयाबी की वो कहानी नहीं रच पाई जो शोले या उसके पहले और बाद की फिल्मों ने रची थीं, और जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस को फिल्म संसार का एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस बनाया था। सन 1991 में सलमान खान के अभिनय वाली पत्थर के फूल फिल्म आई।

सन 1992 में आई राजू बन गए जेंटलमैन, यहां से शाहरुख खान की कामयाबी की कहानी शुरू होती है। संघर्ष के दौर में शाहरुख खान जीपी सिप्पी के दफ्तर में अपनी तस्वीरें लेकर बैठे हुए थे और राजू बन गया जेंटलमैन के निर्देशक अजीज मिर्जा ने जीपी सिप्पी से कह रखा था कि इस लड़के में हीरो बनने का जबरदस्त पोटेंशियल है। जब जीपी सिप्पी ने शाहरुख खान को देखा तो उन्होंने फौरन ये फैसला किया कि उनकी इस अगली फिल्म में राजू शाहरुख खान ही बनेंगे।

0: इसके बाद आई आतिश। सन 1997 में जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस की आखिरी बड़ी फिल्म आई थी हमेशा। आपको बता दें कि जीपी सिप्पी के बेटे रमेश सिप्पी एक कामयाब निर्देशक के बाद एक कामयाब प्रोड्यूसर भी बन चुके हैं। रमेश सिप्पी के बेटे रोहन सिप्पी परिवार में सिनेमा की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये फिल्म है दम मारो दम।
1: तेरी बातों की शराब, तेरे पापों के हिसाब, तेरे स्विस बैंक अकाउंट खोल खोल मोल काउंट, तेरे गली गली यार पूरी गोली बार बार, पहले यारी ने ली फिर बिकी बार बार, तेरी होगी सरकार तेरा होगा दस बार, पर रहेगी नहीं कमजोरी हर बार। जाएंगे जाएंगे जाएंगे बारी बारी,
2: आपकी सेवा में जनहित में जा रही।
0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अजीमुशान निर्माता निर्देशक जीपी सिप्पी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
3: आज के फनकार।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती,
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों विविध भारती की टीम फिल्मकार विमल रॉय के सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य के घर गई, रिकॉर्डिंग की उजाले उनकी यादों के। तो चलिए सुनते हैं आज वही कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं फिल्मकार विमल रॉय के सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जिनके लिए सिनेमा सिर्फ एक पेशा या कला नहीं बल्कि परिवार की विरासत भी है। यानी आज हम बातचीत करने जा रहे हैं महान फिल्मकार विमल रॉय की बेटी रिंकी भट्टाचार्य से। वो विमल रॉय जिन्होंने भारतीय फिल्मों को अलग अर्थों में गढ़ा। तो रिंकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्ते, मैं बहुत खुश हूँ
1: जी।
2: मेरे से जो भी होगा पिताजी के बारे में मैं कहूंगा
1: जी। बिल्कुल। तो रिंकी जी, हम आपकी आंखों से देखने की आज कोशिश करेंगे महान फिल्मकार विमल रॉय साहब को। हम विमल रॉय को एक महान फिल्मकार के रूप में जानते हैं, लेकिन आप उन्हें एक पिता के तौर पर जानती हैं। तो सबसे पहले हम सभी का यही सवाल होगा कि कैसे थे पिता के रूप में विमल रॉय साहब।
2: मैं तो बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ
1: जी,
2: क्योंकि पिताजी का जैसा पिताजी मिलना ये छोटी बात नहीं है। और हम लोगों को कभी पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा महान का वो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है। एकदम घर में जैसे साधारण हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में सब बड़े हुए हैं
1: जी।
2: उनके साथ उससे हमको पता ही नहीं चलता था कि पिताजी बाहर उनका एक रूप है, बाहर उनका कोई स्टेटस है। और चाइल्डहुड मेरा, हमारा चाइल्डहुड बहुत ही एकदम सुखदायक था
1: जी।
2: बहुत
1: जी।
2: ही बहुत खुश, हम लोग सब बहुत खुश थे। फैमिली मैन थे वो, फर्स्ट फैमिली मैन थे वो
1: जी।
2: घर में आके उनका पूरा यही बदल जाता था,
1: एक रूप ही बदल जाता था।
2: रूप ही बदल जाता था।
1: मतलब आपके पिता घर पर फिल्मकार नहीं होते थे, एक पिता ही होते थे
2: जी। सही बात है
1: जी। तो आपको ऐसा कब महसूस हुआ कि आपके पिता बाकी लोगों से कुछ अलग है, बाहर उनका बहुत बड़ा रुतबा है या वो इतने महान फिल्मकार हैं?
2: ये हमको पता ही नहीं चला कि बाहर उनका क्या रूप है, क्या स्टेटस है, क्योंकि पिताजी को जो उनका बिहेवियर था घर में तो वो एकदम साधारण जैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली में होता है। पिता पुत्री का जो रिलेशनशिप होता है एकदम सहज सरल। हम लोग जो बड़े हुए हैं, हम बहुत ही, इस वेले मैं तो एक ही अंग्रेजी शब्द बोलती हूँ, ब्लेस्ड
1: जी,
2: ट्रूली ब्लेस्ड
1: जी। जी, तो आप अपने परिवार के बारे में बताइए, कितने भाई बहन आप लोग थे, और आपकी माताजी के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, वो किस तरह से उनकी फिल्मों से जुड़ी रही, उनके व्यक्तित्व से जुड़ी रही
2: जी। लेकिन मेरी माँ जो थी वो एकदम अलग थी, और उनका जो खुद आइडेंटिटी एक था
1: जी,
2: शी वॉज ए फोटोग्राफर, और उनके बारे

0: में सब लोग आजकल जानते हैं, उनका जो फोटोग्राफी है वो बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े व्यक्ति के फोटोग्राफ लिया है, जैसे टैगोर का लिया है और नेहरू का लिया है, इंदिरा गांधी का लिया है। मैंने मेरी माँ का जो पोर्ट्रेट्स हैं उसमें इन इन सब लोगों को नाम जुड़ता है।
1: जी
0: तो पिता और वो बहुत पिताजी के साथ बहुत ही उनका एकदम बहुत सुंदर रिश्ता था,
1: जी
0: बहुत सुंदर रिश्ता था।
1: क्या नाम था आपकी माँ का?
0: मेरी माता का नाम था मनोबीना रॉय।
1: जी,
0: जी
1: तो वो एक बहुत बड़ी फोटोग्राफर थी और उनका एक
0: हाँ
1: व्यक्तित्व था। आपके और भाई बहन भी हैं जो
0: जी
1: उनके बारे में भी हम जानना
0: हाँ,
1: चाहेंगे।
0: मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे बाद में दो सिस्टर्स हैं और एक भाई है जॉय, जो अभी देखभाल करता है अपना, मेरा पिताजी का जो लेगेसी है उसके साथ हम लोग सब सभी मिलकर काम करते हैं एक साथ।
1: जी, तो रिंकी जी, आपको पहली बार उनकी फिल्मों से जुड़ना आपका कैसे हुआ? किस तरह से आप उनकी फिल्मों से जुड़ी? क्या बचपन में आप अपने पिता के साथ उनकी फिल्में देखने जाया करती थी, या उनकी जो फिल्म बनाने की प्रक्रिया थी उनसे वाकिफ थी, या उनके साथ जाया करती थी? ऐसा कुछ हुआ कभी?
0: नहीं, पिताजी हमेशा पिताजी का एक कोशिश ये रहता था कि वो फिल्मी दुनिया से हम लोग को अलग रखे,
1: अच्छा।
0: और हम कभी हमको अगर बुलाते थे शूटिंग देखने के लिए तो कोई गाना वाना शूट होता है तो हमको बुलाते थे, जो बच्चों को जो अच्छा लगता है उसके लिए बुलाते थे, नहीं तो हम कभी स्टूडियो में जाते ही नहीं थे। उनका अलग ही था कि वो दोनों दोनों जो दुनिया है ना, फिल्म का दुनिया और घर का दुनिया अलग था हमारे
1: जी
0: घर में।
1: जी
0: और वो बहुत एडुकेशनिस्ट थे पिताजी। मैं तो बॉम्बे चली आई, मेरे तब 9-10 साल होगा, तो लेकिन उन्होंने ऐसे कोशिश किया कि मैं बंगला सीखूं क्योंकि मेरा मातृभाषा बंगाली है,
1: जी
0: तो उन्होंने मेरे लिए सब बंगाली किताब मंगाते थे घर कलकत्ता से, और हमको देखते थे कि हम करते हैं कि नहीं। उनका उत्साह था कि हम बंगला सीखें, बंगला बंगाली कल्चर को भी अपनाएं, इस सब उनका बहुत बहुत उनका देन ये है मेरे जिंदगी में कि पिताजी के लिए मैंने ये सीखा है, नहीं तो मैं शायद नहीं तो करती थी।
1: पिता का प्रभाव बहुत ज्यादा
0: बहुत
1: रहा।
0: प्रभाव। हाँ
1: तो एक बेटी होने के नाते रिंकी भट्टाचार्य पर क्या प्रभाव था? कितना प्रेशर था, कितना दबाव था, तो आप क्या कहेंगी?
0: नहीं, दबाव तो मैं नहीं कहूंगी, पिताजी का जो पूरा कल्चर था उससे हमने बहुत कुछ सीखा है कि पिताजी को खाली घर के लिए नहीं, पिताजी को इंडियन कल्चर से बहुत प्राउड थे वो। इंडियन कल्चर,
1: जी
0: कोई
1: जी
0: भी कल्चरल, कोई भी कल्चरल ये होता था, वो नेहरू को जानते थे पर्सनली, इंदिरा गांधी को जानते थे पर्सनली,
1: जी
0: तो ऐसे जो जिंदगी जिसके ये होता है तो उनके लिए तो अलग ही होता ना
1: बहुत एथिक्स थे
0: एटीट्यूड।
1: जीवन।
0: हाँ, उनका एटीट्यूड ही अलग था इस सब के बारे में, और हम लोग ने वो ही सीखा है पिताजी। वो बहुत जल्दी चले गए, पिताजी की उम्र बहुत कम था जब
1: जी
0: चले गए,
1: जी
0: तो इसीलिए उनका सबसे बड़ा फिल्म एक जो बनने वाला था वो नहीं बनी, और हमको इसका बहुत दुख है। और जो जो, जो लिखा था गुलजार लिख रहे थे उसको, तो उसका नाम था अमृत कुंभ।
1: अच्छा
0: अमृत कुंभ के ऊपर एक रियल लाइफ स्टोरी था,
1: जी
0: उसको उन्होंने लिया कि उसको वो था, लेकिन उसका शूटिंग करते करते पिताजी का ये हो गया, कैंसर में भुगते थे, स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते थे।
1: जी
0: हाँ, उनका हाथ में हमेशा सिगरेट होता था, और उनका ये जो सामने का उंगलियां है ना उसमें सब सिगरेट निकोटिन के दाग हो गया था इतना। हाँ, तो उससे उनको दुख भरी बात ये है कि
1: जी
0: उनको वो कोई हम नहीं छोड़ा सके उसको।
1: जी जी

0: बिमल रॉय एक महान फिल्मकार के रूप में उन्होंने इतनी कालजयी फिल्में हमें दी और गुरु के रूप में उन्होंने एक नई श्रृंखला बनाई उनके जैसी फिल्मों का आगे निर्माण किया लोगों ने। तो एक फिल्मकार के रूप में या एक गुरु के रूप में आप क्या मानती हैं, वो किस तरह से रही होंगी?
1: पिताजी ने जो उनके उनके साथ जो जो काम किया, जैसे गुलजार है, ऋषिकेश मुखर्जी है, आशीष सेन है, इनको सबको उनका प्रभाव से बहुत उत्साहित किया था फिल्म बनाने के लिए, और उनको उत्साह देते थे और उनको चांस भी मिलता था कि हमारा प्रोडक्शन बिमल रॉय प्रोडक्शन में उनका फिल्म भी बनती थी। तो इसीलिए मैं बोलूंगी कि असली गुरु का हिसाब जो गुरु दक्षिणा इनको देना चाहिए
0: जी,
1: सबको
0: जी। उनकी कालजयी फिल्में हैं जैसे दो बीघा जमीन है, देवदास है, परिणीता है, मधुमती है, सुजाता है, परख है और बंदिनी। इन मतलब एक एक फिल्म पर अगर हम चर्चा करें तो शायद कितने एपिसोड निकल सकते हैं, कितनी लंबी विस्तृत चर्चा हो सकती है। तो रिंकी भट्टाचार्य उस उम्र में उन फिल्मों को देखकर क्या सोचती थी?
1: पिताजी का क्या था ना, पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है
0: जी,
1: सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता
0: जी,
1: वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, हाँ बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से,
0: बिल्कुल
1: हाँ। तो इसलिए ना पिता खाली दो बीघा जमीन को लिखा था सलील चौधरी ने, तो वो फिल्म के लिए लिखा था, पिताजी के लिए लिखे थे। तो उसको जो फिल्म बनाया पिताजी उसका कोई लिटरेरी वर्शन नहीं था,
0: जी।
1: हाँ उनको लिखा था पिताजी के लिए सलील चौधरी ने, और उनको जो फिल्म है आज तो दो बीघा जमीन को सबसे बड़ा मान्यता मिलती है, यहाँ वहाँ फॉरेन कंट्रीज में सब में दिखाया जा रहा है।
0: बिल्कुल सही बात है। तो जब बात चली है दो बीघा जमीन की, तो कैसे इस महान फिल्म की रचना हुई होगी, किस तरह की घटनाक्रम में फिल्म बनी होगी उस जमाने में?
1: ये मुझे कभी कभी लगता है कि दो बीघा जमीन तो से उनका जिंदगी इसका बहुत असर है
0: जी,
1: क्योंकि पिताजी भी जब छोटे थे उनको घर से उनका जो जमीन था ईस्ट बंगाल, हम लोग ईस्ट बंगाल के हैं ढाका के
0: जी,
1: तो वहां से उनको निकाला गया था, तो वो भूल वो उनका जो वो दर्द था वो ट्रेजेडी था, हाँ तो वो भूल नहीं सके थे। तो मुझे लगता है इससे दो बीघा जमीन में और बहुत बहुत इंटेंसिटी हो गई है। इसके लिए ना पिताजी के लिए वो जो वो दुर्घटना थी कि उनको घर से निकाला गया था
0: जी,
1: वो भूल नहीं पाए कभी भी, हमेशा चाहते थे कि जाएं हम, जब ईस्ट बंगाल चलेंगे वो सोचते थे कि हम जाएंगे वहां पे, तो उसका वो ट्रेजेडी जो था वो जिंदगी भर उन्होंने उसका ये किया
0: मन में रहा,
1: मन में रहा,
0: और उसी पीड़ा का परिणाम दो बीघा जमीन के रूप में उतरा।
1: जी जी
0: जी। तो जब हम उस फिल्म को देखते हैं तो बलराज साहनी और बिमल राय की जोड़ी ने जिस तरह से यथार्थ को पर्दे पर उतारा वो अद्भुत था। तो उस वक्त उस फिल्म की सफलता को घर में आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया होगा?
1: नहीं, हमारे घर में ऐसे सेलिब्रेशन कोई नहीं होते थे
0: जी,
1: फिल्म विल्म को लेके, लेकिन पिताजी का ये जो दो बीघा जमीन है ना, ये मैं कहूंगी कि पिताजी का श्रेष्ठ है, लोग सोचते हैं, लेकिन मैं तो बोलूंगी सबसे फिल्म सब फिल्म सुजाता बंदिनी सबको लेके

0: अब लोग देखते हैं ना, तभी बोलते हैं कि कैसे कहाँ से आया स्टोरी। हाँ, उनको लिटरेचर पे बहुत ये था, बहुत वो ये थे, प्रभावित थे लिटरेचर, बंगाली लिटरेचर के।
1: जी जी जी। तो फिल्म दो बीघा जमीन के जो शंभू की पीड़ा थी, वो आज भी कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में व्याप्त है।
0: जरूर, मैं तो बोलूंगी ये बहुत सच बात है। हमने जो फिल्म दिखाई थी वेनिस फेस्टिवल में लास्ट ईयर, तो वहाँ सब लोग खड़े होते हैं, जैसे ही फिल्म खत्म हुई सब लोग रो रहे थे
1: जी,
0: इतना उसका प्रभाव था।
1: हाँ,
0: एक इंडियन फिल्म, कोई स्टार नहीं उसमें, फिर भी वेनिस फिल्म फेस्टिवल जैसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल में उसका क्या भूमिका थी, तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। आप वो देखने वाली, एक्सपीरियंस करने वाली चीज थी। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैं गई उनके साथ, वहाँ फेस्टिवल मैंने एक अटेंड किया, और हम लोग जब वापस आए तो मुझे बहुत बहुत बहुत मुझे प्राउड फील रहा कि इतना बड़ा काम हम लोगों ने किया है, हासिल किया है, बहुत बहुत ही बढ़िया बात है ये।
1: जी, तो रिंकी जी, जब बात दो बीघा जमीन की चल रही है, तो क्यों ना इसी फिल्म का एक गीत हम सुन लें। आप बताएंगे कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
0: जो लोरी है जिसमें मीना कुमारी ने एक छोटा सा भूमिका किया है।
1: हाँ।

0: बहुत सुंदर लोरी है ये रिंकी जी, इस लोरी के बारे में कुछ बताना चाहेंगी?
1: जरूर, मैं बताना चाहूंगी कि मीना कुमारी जो मेरे पिताजी के बहुत करीब से
0: जी,
1: और पिताजी उनको बहुत स्नेह करते थे
0: जी,
1: तो उन्होंने बोला कि दादा आपने फिल्म तो बनाए लेकिन मुझे आपने रोल नहीं दिया कुछ, तो पिताजी ने बोला कि उसमें तो तुम्हारे लायक कोई रोल नहीं था, लेकिन ठीक है हम एक गाना डालेंगे तो उसमें तुमको मैं ले लेती हूँ।
0: जी
1: तो इसीलिए मीना कुमारी ऑन स्क्रीन, मीना कुमारी सिंगिंग द लोरी।
0: हाँ हाँ,

0: और ये लोरी
1: और
0: बहुत, हाँ आप बता
1: ये
0: रही
1: लोरी बहुत, हम लोग सब गए थे रिकॉर्डिंग के लिए
0: जी,
1: कहाँ मुझे पता नहीं कौन सा स्टूडियो, शायद दादर में कोई स्टूडियो था, वहाँ बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स हुए और ये लोरी का रिकॉर्डिंग हुआ 4 बजे सुबह चार बजे
0: तो लता मंगेशकर की गाई हुई लोरी है। हाँ। ये तो सुबह 4 बजे इसकी रिकॉर्डिंग हुई,
1: सुबह 4 बजे रिकॉर्डिंग हुई
0: जी जी,
1: और तब तक लता जी वहीं पे बैठी थी।
0: अच्छा,
1: नेचुरली उनका ही गाना है ना,
0: तो बहुत टेक रिटेक हुई होंगी मतलब।
1: नहीं नहीं बहुत टेक नहीं, वो तो एक स्पेशलिस्ट थी।
0: इस तरह के बहुत सारे गीत पर हम बात करेंगे। फिल्म देवदास पर हम आना चाहेंगे, एक ऐसी फिल्म है देवदास जो अमर हो गया ये किरदार।
1: और एक चीज, आप फर्स्ट टाइम साहिर लिद्वानी ने गाना लिखा था उसमें।
0: हाँ जी जी,
1: और एस डी बर्मन
0: साहब का संगीत है और इतना यूनिक संगीत है और गाने के बोल जो है आज भी मतलब
1: मुझे तो एक सीक्वेंस बहुत अच्छा लगता है, मितवा करके गाना है जो
0: जी,
1: गीत तो पसंद है और ऑन स्क्रीन मीना कुमारी बहुत सुंदर लग रही है
0: जी जी,
1: उनका जो ये है ना वो सीक्वेंस बहुत सुंदर है।
0: तो फिल्म देवदास की जैसे हमने बात की कि ये एक ऐसा कालजयी फिल्म और एक ये जो पात्र है ये भी अमर हो गया, और क्या उस वक्त जब ये फिल्म बनाई गई थी तो क्या ये सोचकर बनाई गई थी कि ये प्रेम और विरह की कहानी है, आप क्या सोचती हैं?
1: नहीं, देवदास का क्या है, फर्स्ट देवदास जब बनी थी पिताजी उसका कैमरामैन थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, बड़ुआ के देवदास का।
0: जब केएल सहगल साहब जिसमें
1: केएल सहगल थे, पिताजी उसका मेन थे, कैमरामैन थे।
0: अच्छा।
1: तो उनको तब से उनको लगता है, और पिताजी का सबसे मुझे अजीब लगता है कि पिताजी तो घर में, हमारे घर में दारू शारू का कुछ ये ही नहीं था, लेकिन पिताजी ने फिल्म बनाई एक पियक कड़के ऊपर
0: जी।
1: लेकिन ये आज भी देवदास के लिए लोग बोलते हैं कि कितना अच्छा, और गाने भी बहुत सुंदर,
0: बहुत शानदार,
1: बहुत सुंदर गाने हैं।
0: हालांकि देवदास के आज तो कई फिल्मी संस्करण निकल गए, कई फिल्में कितनी बार बन चुकी है, लेकिन विमल रॉय की जो देवदास है वो आज भी बिल्कुल अलग लगती है।
1: जी, मैं आपसे बहुत सहमत हूँ इसके बारे में।
0: बिल्कुल, तो उस फिल्म के बारे में कुछ बताइए कि क्या विमल रॉय ऐसा मानते थे कि उस वक्त सिनेमा समाज को बदल सकता है? आप उस वक्त कितनी उम्र की थी और आपने क्या समझा होगा, क्या जाना होगा उस वक्त?
1: मेरा उम्र कुछ ज्यादा नहीं था, तब 15 साल की थी। तो जब देवदास बनी, देवदास का जो ये खास बात मुझे बोलना है कि देवदास के पारो का अभिनय जो है सुचित्रा सेन
0: जी,
1: उसको पिताजी ने पहले रिजेक्ट कर दिया था।
0: अच्छा।
1: दूसरा, हाँ, वो आई थी, वो हमारे घर की बहू समझा जाती थी, उनका शादी हुआ था हमारे घर में
0: जी।
1: तो जब एक दफे उनको फिल्म में उतरना था तो पिताजी के पास सबसे पहले आए, तो पिताजी ने बोला तुम घर की बहू हो, तुम कैसे फिल्म में काम करोगे, तो उनको रिजेक्ट कर दिया। फिर उसी को पिताजी ने बुलाया देवदास के लिए, तो हम लोग बहुत हंसते थे कि पिताजी को फिर से दोबारा उनको बुलाना पड़ा।
0: हाँ।
1: क्योंकि उससे बढ़िया तो कोई नहीं।
0: हाँ।
1: पारो का ये जो किया था,
0: जो भी नहीं था।
1: हाँ।
0: वो कोई और कर ही नहीं सकता
1: नहीं,
0: था ऐसा विमल रॉय साहब का मानना था,
1: कोई कर नहीं सकता था,
0: और वो अद्भुत सुंदर लगी है उसमें, और ये पात्र कितना जीवंत हो गया, पारो की भूमिका कितनी मतलब कालजयी एक भूमिका हो गई है, आज भी याद की जाती है
1: जी।
0: लोगों का रिएक्शन क्या रहा होगा उस वक्त देवदास फिल्म को देखने के
1: बाद? लोग तो एकदम पूरा हाउसफुल जाता था, पूरा हाउसफुल जाता था, लेकिन मेरा हिसाब से पिताजी का देवदास जो इतना बड़ा बना है, क्योंकि उससे पिताजी उसको समझते थे, वो सामाजिक जब ये है ना समस्या
0: जो व्यवस्थाएं थी उस वक्त,
1: हाँ, उनको समझते थे, इसीलिए उसका इतना प्रभाव आज भी है। आज भी कोई मैं तो आज भी देवदास देखने में मुझे डर लगता है कि इतना इसका जो ये है ना माहौल जो है वो बहुत बहुत एक इम्प्रेस करता है
0: जी,
1: बहुत ज्यादा
0: जी।
1: और आई थिंक मुझे लगता है कि वैजयंती माला भी जस्ट उसके पहले ही मधुबति किया था उन्होंने, क्योंकि वो डांसर भी थी ना, इसलिए उसमें देवदास में डांस तो है, इसीलिए
0: बहुत सुंदर है। तो इस फिल्म को जब निर्माण किया जा रहा था, इस फिल्म का जब निर्देशन कर रहे थे विमल रॉय, तो उनकी दिनचर्या क्या रहती थी, और आप परिवार वालों की दिनचर्या क्या उस वक्त थोड़ी बदल जाती थी?
1: नहीं नहीं नहीं, पिताजी जो काम करते काम को अलग ही रखते थे वो घर से, हमारा घरेलू जो ये है ना
0: वो अलग था,
1: अलग था एकदम, और काम का ये बहुत ही अलग था, तो कभी नहीं मिक्स करते थे, कोई तकलीफ नहीं थी। पिताजी बहुत डिसिप्लिन थे एज ए डायरेक्टर, और फिल्मी दुनिया में तो ऐसा इतना डिसिप्लिन मैं देखा नहीं किसी को आज तक
0: जी।
1: कि इतना डिसिप्लिन थे, उनको कहाँ पे कब जाना है क्या करना है सब उनको बात पता था। हाँ, तो इससे हमको हमारा भी बहुत प्रभाव हुआ कि हमको भी पिताजी का शायद समय बिताने को मिला। हाँ, तो इसीलिए ना

0: कि हमको कोई ये नहीं है, कोई कंप्लेन ही नहीं है कि देवदास बनाते थे या कोई बंदिनी बनाते थे। बंदिनी तो उनकी लास्ट फिल्म है, बंदिनी के बाद तो उनका बंदी हो गया काम
1: जी।
0: हाँ, तो ये बहुत बहुत अहम बात है कि पिताजी कभी दोनों को मिक्स नहीं करते थे।
1: जी जी, तो आप लोग क्या फिल्म हॉल में जाकर इस फिल्म को देखा था?
0: नहीं, जाते थे, देखते थे, हम लोग हॉल में भी जाते थे, लेकिन जो एडल्ट फिल्म है, जैसे देवदास तो एक एडल्ट फिल्म है
1: जी,
0: तो देवदास के लिए हमारा

0: मैं हॉल में जाके कभी भी देवदास देखा। मैंने फर्स्ट देखा दूरदर्शन में।
1: अच्छा, दूरदर्शन में आपने ही फिल्म देखी होगी। तो इस फिल्म के गानों के बारे में तो हम क्या ही आपसे कहें। एसडी बर्मन साहब का संगीत है, साहिर लुधियानवी के बोल हैं। कौन सा गीत आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगी जो आपकी खास पसंद होगा?
0: मेरा खास पसंद है आगे तेरी मर्जी।
1: आगे तेरी मर्जी, जी बिल्कुल।

0: तो आपके घर में बराबर पढ़ाई का माहौल रहता था, बच्चे घर में पढ़ाई करना
1: पूरा? पिताजी का ये भी था कि हमको ऑक्सफोर्ड में ले जाए पढ़ाए।
0: अच्छा।
1: हमको लेके भी गए थे लंदन
0: जी
1: दिखाने के लिए, लेकिन मैं मुझे ठीक नहीं लगा कि हम परिवार से इतना दूर रहेंगे, इसलिए मैंने हाँ नहीं किया। नहीं तो आज मैं ऑक्सफोर्ड रिटर्न होती थी
0: जी,
1: अगर मैंने उनका इस पर
0: बात को माना था। घर से दूर जाना आपको पसंद नहीं था, तो घर में एक आपसी सब में एक तारतम्य था, सामंजस्य था, प्रेम की भावना, सब एक दूसरे से गुंथे हुए थे।
1: एकदम।
0: बहुत बड़ी बात होती है कि सभी लोग मिलजुल कर रहे, और
1: फिल्मी दुनिया में स्पेशली
0: फिल्मी दुनिया में रहकर एक दूसरे की विचारधारा का सम्मान करना और मिलजुल कर रहना, विश्वास करना, सबसे बड़ी बात ये रही थी।
1: और हमारे सामने हम दूसरा फिल्मी दुनिया देखते थे, फिल्मी घर आने देखते थे, मुझे लगता था कि हमारा घर इतना अलग क्यों है, क्योंकि हमारे घर में कोई माहौल ऐसा नहीं था, कोई भी माहौल नहीं था कि हम लोग कुछ पढ़ा लिखा ये सब हमको उत्साह करना। पिताजी का बहुत अहम बात था, पिताजी बहुत मानते थे, ही वॉज एक्चुअली एजुकेशनिस्ट। आपने देखा है ना पिताजी हमारे विमल रॉय में, विमल रॉय फिल्म्स का जो लोगो है, कौन सा है आपको मालूम है? कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे
0: जी
1: बॉम्बे यूनिवर्सिटी का जो ये है टावर है।

0: वो उनका फिल्म का ये है,
1: लोगो
0: तो
1: है।
0: इस ये भी कोई सोचने लायक बात है ना।
1: जी जी। हाँ। जब बिमल रॉय की बात हो और सुजाता फिल्म की बात नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो हम बात करते हैं सुजाता फिल्म की। आपको अपने पिता बिमल रॉय की फिल्म जो है सुजाता के बारे में सबसे खास बात तो क्या लगती है?
0: जैसे मैंने बोला कि पिताजी तो लिटरेचर बेस्ड थे ना
1: जी,
0: हमेशा फिल्म फिल्म बनाने के पहले वो सोचते थे कहाँ से लाया, बंगाली लिटरेचर से। सुजाता का बारे में मैं ये बताऊंगी, एक फेस्टिवल में मैं गई थी, फॉरेन फेस्टिवल, जहाँ पे सुजाता पिताजी का सब फिल्म से उन्होंने सुजाता को चूज किया। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे यूरोप में कौन जात पात का कोई ये करेगा, लेकिन मैं एकदम बुद्धू बन गई सोच के। लोग बाहर आ रहे थे सब रोते रोते सुजाता देख के, उनपे जो वो जो मदर डॉटर का जो है ना, मदर एंड डॉटर का जो ये है रिलेशनशिप है, उसको लेके वहाँ यूरोप में तो एकदम सब जो आए थे सबको सब रो रहे थे देख के। तो मुझे ये भी ये खुलासा मिला कि देखो ये भी हमने सोचा नहीं था पहले।
1: इस विषय को उठाने का, सुजाता फिल्म को बनाने के पीछे क्या विचार रही होंगे आपके पिता के?
0: ये तो मैं नहीं कह सकती, मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन चूज किया उन्होंने, जरूर अच्छा लगा होगा इसीलिए चूज किया है।
1: उस समय बहुत बड़ी समस्या थी, आज भी ये समस्या है, लेकिन उस वक्त इसको उठाना, इस विषय को, बहुत ही बोल्ड विषय था और बहुत ही निर्भीक होकर उन्होंने इस बात को आवाज दी कि किस तरह से माँ और बेटी के किरदार को जीवंत किया। और इस फिल्म में उन्होंने नूतन को चुना, इसके पीछे क्या कुछ खास कारण?
0: नूतन पिताजी के सबसे फेवरेट एक्ट्रेस थे
1: जी।
0: नूतन की जो खास फिल्म है सुजाता और बंदिनी, तो पिताजी ने जब बंदिनी पिताजी ने सोचा बनाने का, तो नूतन को साइन करने को गए। तो नूतन ने बोला, दादा मुझे तो स्टोरी बहुत अच्छा लगा, लेकिन शायद मैं आपके साथ नहीं कर सकूंगी। तो पिताजी ने बोला, क्यों, क्या बात है
1: जी?
0: तो बोले, हम प्रेग्नेंट हैं, तो मैं अभी कैसे, मैं प्रेग्नेंट तो मैं फिल्म में काम नहीं करूंगी। तो पिताजी ने बोला कि तब मैं नहीं बना सकूंगी बंदिनी। तो उनका हस्बैंड जो थे उन्होंने उनको उत्साह दिया, बोला विमलदा आप जरा जल्दी जल्दी शूटिंग कर लीजिए, तो फिर नूतन आपके साथ काम करेगी। तो वही हुआ बात
1: जी जी।
0: शी वाज प्रेग्नेंट व्हेन शी वाज शूटिंग बंदिनी
1: जी। और उन्होंने क्या लाजवाब अभिनय किया है, अद्भुत अभिनय किया। और उसके बाद तो वो मतलब महान अभिनेत्रियों की एक लाइन में खड़ी हो गई। आप लोग गए इस फिल्म को देखने फिल्मी पर्दे पर?
0: हम लोग गए थे हॉल में देखने के लिए, मुझे याद है यहाँ पे जो ओपेरा हाउस है ना
1: जी,
0: ओपेरा हाउस में रिलीज हुई थी और सिल्वर जुबली किया था।
1: तो चलिए इस फिल्म का कोई गीत सुन लिया जाए।
0: हाँ, श्योर, जरूर।
1: चलिए तो फिल्म सुजाता का एक गीत सुनते हैं।
0: हाँ।

0: बहुत सुंदर गीत। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं रिंकी जी कि अपनी फिल्मों के संगीत को लेकर कितने जागरूक थे, क्या उनकी फिल्मों में गीत और संगीत भी उतना ही मायने रखता था जितनी फिल्म की कहानी या फिल्म का किरदार?
1: ऑफ कोर्स जरूर, क्योंकि पिताजी ने जो पिक्चराइजेशन किया है गाने को, जैसे मैं तो, मुझे तो अभी तक कोई इतना ये नहीं लगता है कि कोई दूसरा डायरेक्टर इतना ये करता है, मायने रखता है। बहुत ही अच्छा उन्होंने पिताजी का गाने पिक्चराइजेशन एक स्पेशल ये था, उनका टैलेंट था।
0: उनकी पसंदीदा गायिका लता मंगेशकर और ये सभी रहे
1: था। उनके पसंदीदा जो थे ना
0: संगीतकार भी एसडी बर्मन और सलील चौधरी साहब।
1: संगीतकार सलील चौधरी, एसडी बर्मन।
0: बहुत सारी फिल्में, ज्यादातर फिल्में सलील चौधरी साहब ने उनकी जो है संगीत में ढाली है, और एसडी बर्मन साहब का तो खैर संगीत हम सुन ही रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिल्म बंदिनी का जिक्र हम आपसे सुनना चाहते हैं। जब फिल्म बंदिनी उन्होंने बनाई तो आप क्या कहना चाहेंगी, फिल्म कैसे बनी और इस फिल्म की कोई शुरुआत कैसे हुई होगी, कुछ याद है आपको?
1: नहीं, मुझे नहीं याद है, लेकिन मैंने जब सुना कि पिताजी इस पर फिल्म बनाना चाहते हैं, वो एक इससे था, एक लिटरी बंगाली लिटरेचर से था
0: जी।
1: तो मैंने जाके मैं उसको रीड किया पहले।
0: अच्छा,
1: हाँ, मुझे
0: इस कहानी को,
1: इस कहानी
0: उस किताब को,
1: उसकी कहानी को, तो मुझे लगा कि हाँ इससे अच्छा बढ़िया बन जाता है। ये कल्लानी का स्टोरी है, वो जो है ना, जो लिटरेरी जो ये है वो लिखा है जरा संध करके, जिसका नाम था जरा संध, पेन नेम, हाँ, तो उन्होंने लिखा था। तो उनको जो ये स्टोरीज कलेक्शन था उसमें कल्लानी का स्टोरी पिताजी ने चूज किया था।
0: तो उस वक्त तो उनको ये फिल्म बनाने का विचार इसीलिए आया क्योंकि उस समय की ये समसामयिक एक कहानी थी, घटना थी। तो आपके पिता जब कलाकारों के साथ काम करते थे तो उनके काम करने की प्रक्रिया क्या रहती होगी, कलाकारों के साथ क्या संबंध रहते होंगे, किस तरह का व्यवहार रहता होगा, किस तरह से समझाना होता होगा एक डायरेक्टर के तौर पर?
1: हाँ, पिताजी कभी भी एक्टिंग नहीं दिखाते थे किसी को।
0: अच्छा,
1: जैसे राज कपूर है ना, राज कपूर हर भूमिका को एक्टिंग करके अपना स्टार को दिखाता है। पिताजी ने बहुत बहुत डिस्टेंस से उनको ये था। उनका एक डायलॉग राइटर था जो बहुत हिंदी एंड बंगाली जो जानता था, उनको पिताजी ने बताया था कि तुम जाके बोलो एक्ट्रेस को इस नूतन का है तो इतना इतना ये करे, हाँ ये ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो वो डिस्टेंस से करते थे, वो कभी एक्टिंग नहीं दिखाता था
0: जी। तो बंदिनी फिल्म की जो कल्याणी किरदार था नूतन जी का, तो बिमल रॉय ने जिस गहराई से इसे पिरोया ये बहुत लाजवाब था।
1: हाँ, ऐसा हुआ कि गुलजार प्रोडक्शन में था, बिमल रॉय प्रोडक्शन में ऐसे असिस्टेंट था। तो एक गाने का कहीं जरूरत हो तो

0: शैलेंद्र नहीं लिख पाए उसको, तो गुलजार ने उसको लिख दिया, ओपनिंग सॉन्ग ऑफ बंदिनी, मोरा गोरा आंगलेला।
1: जी
0: अच्छा तो सुन, तो फिर मैंने पिताजी ने बोला कि तुम गाना भी लिखते हो क्या, तो उन्होंने बोला ऐसे हाँ लिखता हूँ कभी कभी दादा, तो बोले अच्छा तुम एक काम करो, तुम अभी उस सब जहाँ वो काम करते थे मैकेनिक गैराज, गाड़ी का गैराज में, तो बोले तुम गाड़ी का गाड़ी वो सब छोड़ो, तुम आ जाओ हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन में, तुम गाना लिखोगे। तो गुलजार का फर्स्ट गाना पिताजी हमारे प्रोडक्शन में था, हाँ वो था नॉट मोरा गोरा एंगले,
1: जी
0: वो गाना का रिकॉर्डिंग उन्होंने किया फिर फर्स्ट, दैट इज हिज फर्स्ट सॉन्ग फॉर विमोरा प्रोडक्शन।
1: जी
0: हाँ पिताजी का बोलने पर वो फिर वो छोड़ भी दिए, फिर एकदम एकदम से ज्वाइन कर लिए।
1: चलिए तो बंदिनी फिल्म का गीत हम सुन लेते हैं।

0: उन्होंने जब चूज किया स्टोरी कल्याणी की स्टोरी बंदनी के लिए, तब मैं पढ़ने को गई तो मुझे भी लगा कि हाँ ये बहुत अहम बात है कि ऐसा कोई एक स्टोरी है जिसमें किसी ने जेल से आके लिखा है उसका केस, एक केस हिस्ट्री था ये रियल केस हिस्ट्री। हाँ, तो इसीलिए बहुत इसका बहुत माने रखता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उस वक्त ये एक बहुत सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बनाई गई थी। तो वही हम मधुमति के बारे में भी बस यही जानना चाह रहे थे कि पुनर्जन्म से संबंधित ये फिल्म थी।
0: मधुमति का अलग ही बात है, क्योंकि मधुमति का जो मधुमति लिखा गया था खाली पिताजी को प्रोडक्शन के लिए लिखा गया था, वो कोई लिटरेरी वे नहीं था।
1: जी बिल्कुल,
0: उसको क्लेम करते हैं ऋतिक घटन ने लिखा था, पता नहीं, लेकिन वो लिखा था पिताजी के लिए।
1: लेकिन वो बहुत उस जमाने की सुपर डुपर हिट फिल्म थी।
0: वो तो है।

0: हाँ
1: बिकॉज ऑफ द म्यूजिक, बिकॉज ऑफ ऑल द कास्टिंग. दिलीप कुमार, वैजयंती माला, प्राण, बहुत बढ़िया. ये पिताजी ऐसे बनाए थे क्योंकि हमारा प्रोडक्शन हाउस तभी फाइनेंशियली थोड़ा डाउन था. तो किसी ने बोलता है कि दादा आप इतना फिल्म बना रहे हैं लेकिन आप प्रोडक्शन का नहीं देख रहे, तो प्रोडक्शन ये हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि आप इतना खर्चा. पिताजी खर्चे का देख नहीं थे, देख भी नहीं थे कि क्या था. तो जब उन्होंने बोला तो पिताजी ने बोला ठीक है मैं ऐसा फिल्म बनाऊंगा जिसमें सब कुछ है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, गाने हैं, डांस है, सब कुछ है, विलेन, हीरो, हीरोइन, हाँ
0: वो तो, सब था जो एक फिल्म में होना चाहिए.
1: वो जो था वो सब फिल्म में होना चाहिए. तो मधुमती उसी हिसाब से बना गया
0: जी. तो वो जो गाने पूरे इतने सुपर डुपर हिट हुए, घर घर में वो गाने बजने लगे, क्या आपके घर में भी रेडियो था उस वक्त?
1: हाँ, हाँ,
0: में आप गीत संगीत तो सुन सकते थे, ये माहौल तो था घर में.
1: हाँ, हाँ, हाँ.
0: तो चलिए हमारे श्रोता उन्हें गीत हम सुना देते हैं. आप कहें

0: बहुत ही सुंदर गीत हमने सुने। और रिंकी जी, आप उनकी बड़ी पुत्री हैं, आपने पिता को बचपन से फिल्मकार के रूप में देखा है, फिल्में बनाते हुए देखा है, एक पुत्री होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे, इस विरासत को आप किस ढंग से संभाल रही हैं आज तक?
1: मैं इस तरह से संभाल रही हूँ कि मेरे पिताजी का जो फिल्म है उसको रीइशू
0: जी,
1: उसको रिस्टोर करना। तो मैंने काफी एक यहाँ पे है रिस्टोर कर रहे हैं, तो हमने 4 फिल्में तो अभी रिस्टोर करने के लिए दे दिया है, वो भी अभी न्यू DVD बन के आ जाएगी अभी। तो हो गया है 4 फिल्म की
0: जी
1: बातें।
0: कौन कौन सी फिल्में हैं वो?
1: मधुमत

0: देवदास
1: जी
0: बंदिनी और 2 बीघा जमीन
1: जी।
0: ये 4। इधर है एक जो रेस्टोरेंट है शिवेंद्र डूंगरपुर करके।
1: अच्छा।
0: तो शिवेंद्र ने इसको किया है, रिस्टोर किया है 4 फिल्में। नेक्स्ट ईयर समटाइम ये सब फिर से दोबारा आ जाएगी डीवीडी, नया डीवीडी आ जाएगी।
1: अच्छा।
0: सबकी हाँ
1: जी, बहुत बड़ी एक इस विरासत को आपने संभाला है और इसे जीवंत बनाए रखा है आज तक। तो रिंकी जी, आपको अपने पिता की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी?
0: ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है
1: जी।
0: मुझे तो अभी भी मधुमती देख, कभी भी मैं देखती हूँ ना मधुमती, तो मुझे लगता है कि देखते ही रहूँ
1: यू नो,
0: इतना उसका असर है। और एकदम मैं ऑडियंस ही बन जाती हूँ।
1: हाँ,
0: ये तो मधुमती के साथ है। तो 2 बीघा जमीन देखने को थोड़ा कष्ट होता है क्योंकि ट्रेजिक है। हाँ, लेकिन जैसे ये दोनों फिल्म तो मुझे बहुत पसंद है, मधुमती और 2 बीघा जमीन दोनों।
1: कभी आपको लगा कि मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलती और आगे चलकर एक बहुत बड़ी फिल्मकार बनती और बहुत सारी फिल्मों का निर्माण या निर्देशन करती जैसे मेरे पिता ने उस वक्त किया?
0: नहीं, ये कभी नहीं आया। बल्कि मैंने सोचा ही नहीं था कि हम फिल्म बनाएंगे, इसीलिए इसी डर से कि मेरे को कोई कंपेयर करेगा पिताजी से।
1: अच्छा।
0: इसीलिए मैंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं बनाना है फिल्म। और जो बनी है वो एक्सीडेंटली बन गई है
1: जी। तो उन फिल्मों के बारे में आप हमें बताइए जो आपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है।
0: मैंने दो ही डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, एक है डोमेस्टिक वायलेंस पे, क्योंकि मैंने औरतों के साथ बहुत सारा काम किया एनजीओ के साथ
1: जी,
0: तो उसको बनाया है बिहाइंड क्लोज डोर्स करके। और बस ये एक फिल्म है मैं जिसके बारे में बोलना चाहूंगी कि बिहाइंड क्लोज डोर्स है, वो वेरी बिग डॉक्यूमेंट्री। वो फेस्टिवल्स में भी गई है और इसको लेके लोग देखते भी हैं, अभी भी देखते हैं, डीवीडी में है वो।
1: इस फिल्म में जो महिलाओं के साथ जो अन्याय होता है उसके बारे में आपने काफी, और आपने बहुत सारी महिलाओं के साथ काम किया है। काफी लंबे समय तक आप सोशल वर्कर के रूप में काम करती रही हैं। बहुत सारी किताबों का लेखन भी किया है, तो हमारे श्रोता जानना चाहेंगे आपकी किताबें कौन कौन सी थी, आपने किन किन विषयों पर ये किताबें लिखी?
0: मैंने ज्यादातर किताबें लिखी और वुमेन्स इश्यूज को लेके, और 2-1 पिताजी पे लिखा है। मेरे पास दो किताबें हैं, जो एक तो है मधुमती खास, मधुमती का क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसके ऊपर मैंने एक किताब लिखी है
1: जी।
0: वो पब्लिश हुआ है। और एक किताब है जिसके डोमेस्टिक वायलेंस के बोला ना मैं बिहाइंड क्लोज्ड डोर, ये दोनों बहुत खास है।
1: इनका रिएक्शन आपको कैसा मिला जब ये किताबें दुनिया की समक्ष गई लोगों की, खासतौर से महिलाओं का?
0: बहुत अच्छा, इट इज वेरी बिग। ये लोग पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन भी हो जाए इसका
1: जी हिंदी भाषाओं में।
0: हाँ, कई भाषाओं में ट्रांसलेशन है।
1: आपको कहीं ना कहीं ये दबाव रहता होगा कि पिता से कंपेयर करेंगे, तो क्या ऐसी मानसिक स्थिति में भी आप दबाव में रही?
0: नहीं, मैं दबाव में नहीं थी, मैंने बोला ना, इसीलिए मैंने कॉन्शियसली मैंने ऐसे किया कि मैं फिल्म नहीं बनाऊंगी क्योंकि लोग तो मुझे कंपेयर करेंगे ही ना पिताजी से, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए फिल्म। तो एक डोमेस्टिक वायलेंस पे था, वो मुझे करना ही था क्योंकि उसके लिए मेरे फंडिंग मिली, गवर्नमेंट फंडिंग।
1: अच्छा।
0: हाँ, फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, तो इसीलिए मुझे पैसा भी मिला था बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने बनाया। और नहीं तो मैं फिल्म के लिए मैं कुछ आग्रही नहीं थी इतना। मैं कॉन्शियसली पिताजी का जो आइडियल्स है, उनका जो ये है फिलोसफी है, उसको फॉलो करने का मैं कोशिश करती हूँ।

0: अगर आपको अपनी पूरी रचनात्मक यात्रा, जिसमें पत्रकारिता है, किताबें हैं, सिनेमा है और बिमल रॉय की विरासत है, को एक वाक्य में देखना हो तो आप क्या कहेंगे कि आप वास्तव में किसकी आवाज दर्ज कर रही हैं? फिल्म की, स्त्रियों की, परिवार की, या उन लोगों की जिनकी आवाज को दबा दिया जाता है?
1: आपने जो कहा ये बहुत सही बात है, जो जिसका आवाज दबा दिया गया है, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट देम, जो वॉइसलेस है उनके बारे में मेरा ये हमेशा कोशिश रहा कि मैं उसी को ये करूं।
0: जी, और उसमें आप लगी हुई हैं आज भी। उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी आप लगातार अपनी इस यात्रा को बनाए हुए हैं। रिंकी भट्टाचार्य जी, आपने अपना अमूल्य वक्त हमारे लिए दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इंटरव्यूइंग मी।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिल्मकार बिमल रॉय के सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। उजाले उनकी यादों के अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: उजाले

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
5: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध।

इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी

विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, बुद्धि और समृद्धि के देवता भगवान गणेश को नमन करते हुए हमने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की है इस गीत के साथ। फिल्म का नाम था दर्द का रिश्ता, आवाजें ए हरिहरन और साथियों की थी। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा था और धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने। आज का ये रंग तरंग कार्यक्रम गणपति बप्पा बोरिया मोरिया के नाम। कहते हैं जहां गणपति का स्मरण होता है वहां शुभता अपने आप चली आती है, और हर नई शुरुआत से पहले जिनका नाम लिया जाता है वे हैं हमारे प्रिय गणपति बप्पा। तो आइए भक्ति और श्रद्धा से भरे इस सफर में अब सुनते हैं कार्यक्रम का ही अगला गीत।

गाने वाले कलाकार हैं शंकर महादेवन और साथी। गीतकार और संगीतकार डॉक्टर विजय भावे।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ये आवाजें थी तृप्ति शाकिया और साथियों की। आपने इनकी आवाज में ये गणेश वंदना सुनी। आइए सुनते हैं अगला गीत।

समूह स्वरों में अभी आप सुन रहे थे ये स्तुति, गणेश स्तुति। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला भक्ति गीत। आवाजें हैं अभिजीत सावंत और राहुल वैद्य की।

समूह स्वरों में अभी आप सुन रहे थे ये स्तुति, गणेश स्तुति। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला भक्ति गीत। आवाजें हैं अभिजीत सावंत और राहुल वैद्य की।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

सुरेश वाडेकर और साथियों की आवाजों में अभी आपने ये गणपति वंदना सुनी। इसे चंद्रशेखर पांडे ने लिखा और धुन बनाई थी श्याम सागर ने। आइए सुनते हैं ये अगला भक्ति गीत, आवाजें जोनिता गांधी और साथियों की।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम में अब सुनिए अगला भक्ति गीत, आवाजें दिव्या कुमार और साथियों की। इसे मुकेश मिश्रा ने लिखा है और तर्ज बनाई है काशी कश्यप ने।

रंग तरंग कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं महेंद्र कपूर, सुरेश वाडेकर, शब्बीर कुमार और हेमलता की आवाजों में फिल्म मरते दम तक का गीत।

0: इस गाने के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम गणपति बप्पा मोरिया को समर्पित था।
1: रंग तरंग,
0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी सदस्य देशों का आभार व्यक्त किया है। शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने तिरुकुरल के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की है। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तिरुकुरल के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एधनॉम घेब्रियासिस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में कई भाषाओं का होना देश की सबसे बड़ी ताकत है। हिंदी दिवस पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा किसी दूसरी भाषा की प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि ढाका अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारत।

रहती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं फिल्मकार जीपी सिप्पी को। आज इस कार्यक्रम में हमने चुने हैं उन्हीं की फिल्मों के कुछ गीत। ये पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है सजा। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार सचिन देव बर्मन।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म का नाम था सजा। और आइए अब सुनते हैं ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत, आवाजें मोहम्मद रफी और गीता दत्त की, फिल्म का नाम 12 o'clock।

0: la la la la la la la la la la la la la la la.
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर. सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा.
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी. मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई. उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं. बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ.
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज इस कार्यक्रम में हम आपको फिल्मकार जीपी सिप्पी के कुछ फिल्मों से गीत सुनवा रहे हैं। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और साथियों को। फिल्म का नाम है मरीन ड्राइव, गीतकार कमर जलालाबादी और संगीतकार एन दत्ता।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मोहम्मद रफी की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राज का गीत। शब्दकार शमीम जयपुरी और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने फिल्म राज का ये गीत सुना। आइए सुनते हैं एन दत्ता के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा ये दो गाना। स्वर मोहम्मद रफी और गीता दत्त के। फिल्म का नाम है भाई बहन।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म ब्रह्मचारी से युगल स्वर मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के।

ऐसे में होले से पास कभी आई के जो बिछवा पर जाई दे गोरी छम से कसम से बिन

0: मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर, सुषमा श्रेष्ठ और प्रतिभा को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था अंदाज। इसे हसरत जयपुरी ने लिखा था और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। इससे पहले आपने मुकेश की आवाज में फिल्म बंधन का गीत सुना था। शब्द अनजान के थे और धुन कल्याण जी आनंद जी की थी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनिए राहुल देव बर्मन की संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर के बोल, आवाज किशोर कुमार की और फिल्म का नाम सागर।

आशा भोसले की आवाज में अभी आपने फिल्म शान का ये गीत सुना। इसे आनंद बख्शी ने लिखा था और धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने।

और ये है इस कार्यक्रम का आखिरी गीत। फिल्म का नाम है पत्थर के फूल, आवाजें लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की।

इस युगल गान के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको फिल्मकार जीपी सिप्पी की फिल्मों से कुछ गीत सुनवाए।

तो प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी तो आज तो हमारे श्रोताओं ने हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी और हिंदी दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं हमें भेजी है। आप सबको भी हमारी तरफ से इन सभी खास पर्वों की ढेरों शुभकामनाएं। हाँ, हमें उम्मीद है आज आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन ये भी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और अपनी व्यस्तता के साथ साथ हमारे साथ इस सुरीला सफर पर भी आप निकलने के लिए तैयार हैं, क्यों है ना? चलिए तो आज के सफर में हम संगीत के लिए क्या लेकर जाने वाले हैं बताइए। जब सफर पर निकले हैं तो गीत तो गाएंगे ही, गीत सुनेंगे भी, लेकिन संगीत के लिए हमारे पास जरूरी नहीं कि सितार हो, तबला हो या बांसुरी ही हो। कभी कभी एक गिलास और एक चम्मच भी आपके गीत की धुन बना देते हैं। कभी घड़ी की टिक टिक, आपकी कदम ताल, आपकी चाल, आपकी हंसी, ट्रेन की छुक छुक या जो पास पड़ोस में या आसपास में पेड़ पौधों की आवाजें हैं, पशु पक्षियों की आवाजें हैं, हवाओं की आवाजें हैं, वो भी हमारे संगीत का हिस्सा बन जाती हैं। तो आज के सुरीला सफर में सुनिए ऐसे ही कुछ गीत जहां आवाजें सिर्फ आवाजें नहीं रही बल्कि वे खुद संगीत बन गई है ना। तो हम तैयार हैं इस तरह के संगीत के लिए, क्यों आप भी तैयार हैं ना? तो आज की इबारत है हमारी कि क्या कभी आपने गौर किया कि कुछ गीतों में कभी घड़ी की टिक टिक, कभी किसी खेल की आवाज, कभी कदमों की आहट और कभी कोई साधारण सी ध्वनि भी उस गीत की धड़कन बन जाती है। फिल्मी गीतों के संगीतकारों ने अपनी कल्पनाशीलता से ऐसी ही आवाजों और बीट्स को गीत का हिस्सा बनाया और उन्हें संगीत में इस तरह ढाला कि वे उससे अलग महसूस ही नहीं होती, क्यों है ना? तो कहीं टिक टिक मेरा दिल बोले मैं आपको टिक टिक सुनाई देती है, तो कहीं ढल गया दिल में आपको रैकेट और शटल की आवाज गीत संगीत के साथ घुलकर एक अनोखा रंग भरती हुई दिखाई देती है, सुनाई देती है। यानी संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, कभी कभी वो हमारे आसपास की आवाजों में भी छुपा होता है। तो आज के सुरीला सफर में होगा ऐसे ही चुनिंदा गीतों का जिक्र जहां धुन के साथ साथ किसी खास आवाज को भी संगीत का हिस्सा बनाया गया उस संगीतकार के द्वारा जो गीतों को और भी यादगार बना गया। तो ये था हमारा आज का टेक्स्ट उन सभी लोगों के लिए जो हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि हमारे वो श्रोता जो फेसबुक पेज से जुड़ गए हैं उन्होंने हमारे टेक्स्ट को पढ़कर बहुत सारे गीतों का जिक्र यहां पर किया है, क्योंकि हमने उन्हें दो उदाहरण ऐसे गीतों के दे दिए थे जहां वो इस बात से वाकिफ हो गए कि आज किस तरह के गीत हम इस कार्यक्रम में लेकर आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी के बोल से, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम आराधना। आपको पता है इस गाने में हमें क्या सुनने को मिलने वाला है? ट्रेन की आवाज़।

जी हाँ, इस गाने में राजेश खन्ना खुली जीप में चलते हैं और अभिनेत्री यानी शर्मिला टैगोर दार्जिलिंग की जो खूबसूरत टॉय ट्रेन है जो बहुत ही प्रसिद्ध है उसकी खिड़की से उन्हें देखती है। क्यों, याद है ना आपको ये सीन? और गाने की धुन और ताल कुछ इस तरह बनाई गई है जो टॉय ट्रेन की गति और उसकी पटरियों की आवाज के साथ बिल्कुल मेल खाती है और पूरा गाना जो पर्वतीय वादियां हैं और चलती ट्रेन का जो सफर है उसका एहसास हमें इस पूरे गाने में मिलता है सुनने को, है ना? और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, लेकिन उससे पहले आपके संदेश आप तक पहुंचाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि संगीत केवल सुरों और शब्दों का नाम नहीं, वो तो हमारे आसपास बिखरी उन छोटी छोटी आवाजों में भी छुपा होता है जो अनायास ही मन की किसी कोने को छू जाती है। जब ये ध्वनियां किसी गीत का हिस्सा बनती हैं तो गीत केवल सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस होने लगता है। शायद इसीलिए कुछ आवाजें कानों से नहीं सीधे दिल से सुनी जाती हैं। वे हमारे मन की स्थिति को बदल देती हैं। उदासी में उम्मीद, अकेलेपन में साथ और खामोशी में संवाद तो कभी कोई मधुर आवाज बीते हुए प्रेम और यादों के दरवाजे भी खोल देती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कभी घड़ी की सुइयों की टिक-टिक, कभी मैदान में किसी खेल की गूंज, तो कभी सन्नाटे को चीरती कदमों की आहट, ये सब केवल ध्वनियां नहीं है बल्कि जीवन की लय हैं। भारतीय सिनेमा के जादुई दौर में फिल्मी गीतों के संगीतकारों ने अपनी अनूठी कल्पनाशीलता से इन्हीं साधारण आवाजों और बीट्स को गीतों का अहम हिस्सा बनाया। उन्होंने उन ध्वनियों को संगीत के ताने बाने में इस तरह पिरोया कि वे गीत में अलग महसूस ही नहीं होती बल्कि उनकी आत्मा बन जाती है। इन प्रयोगों से ये साफ होता है कि संगीत केवल बंद कमरों या स्टूडियो में तैयार नहीं होता बल्कि यह हमारे जीवन के हर हिस्से में सांस लेता है, कदमों की आहट से लेकर

हवा की सरसराहट तक हर ध्वनि में एक लय है। जरूरत है तो बस संगीतकारों जैसी एक संवेदनशील सोच और पारखी कान की, जो शोर के बीच से भी एक सुरीली धुन को खींच लाए और उसे हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दे। कितनी खूबसूरती से आपने अपनी बात रखी है। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत फिल्म अलबेला से, जिसका जिक्र हमने अपनी इबारत में किया था। आवाजें लता मंगेशकर और चितलकर यानी सी रामचंद्र की, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, सी रामचंद्र का संगीत है। और इस गाने में क्या सुनाई देता है? हाँ, घड़ी की टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक, जो हमारे घर में भी हमें सुनाई देती है। और एक मधुर संगीत, खासतौर से रात के सन्नाटे में बहुत ही खूबसूरत संगीत हमें देती भी है ये घड़ी की टिक टिक।

लता मंगेशकर और चितलकर की आवाजें थी, फिल्म का नाम था अलबेला। गाने के आरंभ में आपने घड़ियों की टिक टिक टिक टिक सुनी थी ना, सुनाई दी आपको। हाँ, कभी कभी इस संगीत को बहुत गहराई के साथ सुनना पड़ता है क्योंकि कुछ इफेक्ट्स बहुत ही हल्के से इस्तेमाल किए गए हैं। हाँ, कुछ का इस्तेमाल ज्यादा

किया गया है तो शायद उसे इतने गौर से सुनने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ इफेक्ट्स बहुत ही गौर से सुनने पर पता चलते हैं कि हाँ ये इफेक्ट हमने सुना। और अब दो सवाल हमेशा की तरह आपसे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी पसंद के वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं। हो सकता है आप वाद्य यंत्र नहीं बजाते हों या नहीं शौक रखते हों, लेकिन फिर भी जब आप कोई गीत सुनते हैं, आपने कोई गीत सुना होगा तो आपको लगा होगा कि यहाँ सितार का प्रयोग बहुत अच्छा हुआ, तबले का प्रयोग हुआ, या गिटार बहुत अच्छा लगा, या जल तरंग बहुत अच्छा लगा, या जैसे कि आज हम विषय लेकर आए हैं कुछ ऐसे वाद्य यंत्र जो तबला, सितार, ढोलक इनसे अलग होकर बजाए जा रहे हैं। तो ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र आपको पसंद है, बांसुरी, हारमोनियम, जो आप बजाते भी हैं या पसंद करते हैं? कभी कभी ये होता है कि जब हम घर में गाना गाते हैं ना या बाथरूम सिंगर बन जाते हैं तो टीन, कनस्तर, बाल्टी, झाड़ू और भी न जाने क्या क्या चीजों को हम अपना वाद्य यंत्र बना लेते हैं, है ना? होता है ना ऐसा आपके साथ भी? कभी हुआ होगा जरूर। याद कीजिए वो दिन जब आपने टीन, कनस्तर, बाल्टी या किसी भी ऐसी चीज को, मेज को ही अपना वाद्य यंत्र बना लिया और गाना गाना शुरू कर दिया। और हमारा दूसरा सवाल कि आपको अपने आसपास की कौन सी ध्वनियां प्रभावित करती हैं जो प्रकृति में हैं, या यूं कहूं कि ऐसी कौन सी ध्वनियां हैं जो आपको पसंद आती हैं या परेशान कर देती हैं? कम से कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं को हम शामिल कर सकें उनके विचारों के साथ। और आइए चलते हैं अगले गीत की ओर। फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, शब्दकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन हैं। इस गाने में शंकर जयकिशन ने खास साउंड इफेक्ट्स का बहुत ही अनोखा और खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। आपने सुना है ना ये गीत, जब बिजली कड़कने की आवाज आती है तो वो सिर्फ एक इफेक्ट नहीं लगती बल्कि गाने के जो शुरुआती बोल हैं जहां रफी साहब कहते हैं कि बिजली गिरा के आप खुद बिजली से डर गई, और उसके साथ ही बिजली कड़कने की और तेज बारिश की आवाज आती है और लगभग ये आवाज पूरे गाने में हमें महसूस होती भी है। तो आप भी महसूस कीजिए इस आवाज को।

0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम,
0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम,
0: वो दिल तेरे

एक श्रोता ने लिखा है कि संगीत जो हमें एक दैवीय शक्ति से बांधता सा लगता है, जैसे ही किसी जंगल में आप प्रवेश करते हैं जंगल की आवाज अलग अलग संगीत पैदा करती है। नदियों के पानी में अलग संगीत होता है, कलकल का संगीत बहुत मीठी मीठी है। संगीत बनने की कहानी, रात के बहते हुए खामोश दरिया में चांद की किरणें खिलती रहती हैं और मन के बियाबान तारों में कुछ धुन यूं ही बजने लगती है। जो कोई हुक हो जी मैं तो गूंज उठेंगे, ये विरही सुर कोशिशों साधे नहीं जाते। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है, आज गीत की धुन के साथ विविध आवाजें भी अपने अस्तित्व का परिचय करवाएंगी। इस अनोखी सुंदर थीम को आज गणपति बप्पा का आशीर्वाद भी है, गणराज रंगी नाच। तो इस मराठी गीत में बाल गणेश जी ने पैरों में पहनी यानी घुंघरू की रुनझुन रुनझुन, ये बेहद सुरीली आवाजें दिल को मोह लेती है। और आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र भी किया है, हो सकता है आपकी पसंद हमारी आज की लिस्ट में शामिल हो। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय बिल्कुल नवीन है लेकिन बहुत ही रोचक है। गीतों में संगीतकारों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयोग, उनकी कल्पनाशीलता जिससे गीत शानदार हो गए, तरह तरह की बीट्स के प्रयोग ने गीत को कर्णप्रिय बना दिया है। ऐसे ही बहुत सारे गीतों का जिक्र आपने भी किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे चिड़िया या कोई भी गीत में पक्षियों की आवाज बहुत प्यारी लगती है, जैसे कोयल बोली दिल कहीं रुक जा रे रुक जा, पंछियों की आवाजें

और चुन चुन करती आई चिड़िया, इस तरह की आवाजें इन्हें बहुत पसंद आती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत में सभी तरह के वाद्य यंत्रों के साथ ही आसपास मौजूद आवाज का प्रयोग कर गीतों की प्रस्तुति को लाजवाब बनाया गया है। पंख होते तो उड़ाती रे गीत में पंछी की मधुर आवाज के साथ पंछी की तरह उड़ते हुए पंख फैलाते हुए किया गया नृत्य बहुत ही आकर्षक भी लगता है। साथ ही संगीत का लाजवाब धुन आसपास के वातावरण को गुंजायमान भी कर देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सफर में आज गीतों में छुपे एहसास और

दुख, हंसना, रोना, डरना, सहम जाना आदि सभी नवरसों जो जीवन में समाहित है वो सभी हमारे साथ है और ये सभी हमें प्रभावित करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और इन गीतों के साथ हम भी खो जाते हैं उन खास संगीत की ओर जो हमारे संगीतकारों ने प्रयोग के तौर पर डाले होते हैं। जैसे कि अगला गीत हम सुनने वाले हैं फिल्म शोले से किशोर कुमार की आवाज में, और इनका साथ दे रही हैं हेमा मालिनी जब वो कहती हैं चल धन्नो। तो अब आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और राहुल देव बर्मन का संगीत है। इस गाने में आपको चाबुक की आवाज, घोड़े की टापों की आवाज, धर्मेंद्र के गिरने पर साइकिल की आवाज, साइकिल की घंटी की आवाज, बहुत सारे प्रयोग इस गीत में किए गए हैं और आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी इन गीतों में ये सभी धुनें सुनाई देंगी।

जाना है कहीं और आप भागते दौड़ते स्टेशन पहुंचे हैं और आपके सामने से ट्रेन निकल गई है, और वही हुआ जो इस गाने में कहा जा रहा है कि एक दो तीन हो जाती है। हमारे सवाल एक बार फिर से, हमने आपसे पूछा था कि आपकी पसंद के वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, जो रूटीन के वाद्य यंत्र हैं, जैसे कि अगर आप हारमोनियम, तबला और बांसुरी, बहुत सारे माउथ ऑर्गन, सितार, गिटार, बांसुरी, क्या क्या पसंद करते हैं, अगर आप बजाते हैं या बजाना पसंद करते हैं, संगीत के शौकीन हैं तो। लेकिन इसके अलावा कई बार हर आदमी अपने जीवन में जब कोई गाना गाना पसंद करता है, बाथरूम में, कमरे में, एकांत में, तो टीन कनस्तर, जो हाथ में आता है बाल्टी, झाड़ू, उसे भी वाद्य यंत्र बनाकर हम गाना गाने लगते हैं। भाई हमने तो ऐसा कई बार किया है कि टीन कनस्तर बजाकर ही ताल मिला ली है और गाना गा दिया है। तो आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा, याद कीजिए उन पलों को। या आपके बच्चे अगर ऐसा करते हैं तो वो बात हमें बताइए, कम से कम शब्दों में लेकिन रोचक तरीके से। और हाँ, जब बात चली है ध्वनियों की, तो आपको अपने आसपास की कौन सी ध्वनियां प्रभावित करती हैं, यानी कौन सी ध्वनियां जो पसंद आती हैं और कौन सी ध्वनियां आपको परेशान करती हैं आपके घर के आसपास की। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपने बहुत ही खूबसूरत विषय उठाया है, संगीत में आवाजों की मौजूदगी को महसूस करने का। गीत की दुनिया में सुर और साज की अपनी खूबसूरती है, लेकिन कभी कभी कोई अनगढ़ सी जानी पहचानी आवाज भी गीत को ऐसी आत्मीयता दे जाती है कि वो बरसों तक दिल में बसी रहती है। कदमों की आहट हो, घोड़े की टाप हो, या रेल की चुक चुक, घड़ी की टिक टिक हो, या पायल की रुनझुन, जब ये ध्वनियां किसी धुन में शामिल होती हैं तो गीत सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। हर आवाज अपने साथ कोई दृश्य, कोई मौसम, कोई स्मृति ले आती है। संगीत केवल वाद्य यंत्रों से नहीं बनता, वो तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के शोर में भी कहीं चुपचाप सुर तलाशता रहता है, बस उसे पहचानने के लिए कान नहीं एक संवेदनशील दिल चाहिए। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारतीय सिनेमा के संगीतकारों की ये सबसे बड़ी खूबी रही है कि उन्होंने स्टूडियो की चारदीवारी से बाहर निकलकर हमारे दैनिक जीवन के शोर को सुर में तब्दील कर दिया। जब किसी गीत में कोई सहज आवाज, चाहे वो खेल की हो, रसोई की हो, किसी वस्तु की हो, शामिल होती है तो वो केवल एक धुन नहीं रहती बल्कि दृश्य को श्रोता के जहन में जीवंत कर देती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी शॉप रोड टच है, तो पूरा दिन वाहनों की आवाजाही रहती है, तो आवाजें आती है, अच्छा भी लगता है। हमें रेडियो सुनने का शौक नहीं है तो पूरा दिन वाहनों की आवाज से हम तंग आ जाते हैं। और अच्छा, आपका कहना है कि आपके आसपास जो ये शोर आता है उससे आप परेशान हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल होते हैं इस शोर से हम परेशान। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गीत संगीत केवल सुरों का संगम नहीं बल्कि हमारे आसपास की जीवंत ध्वनियों का खूबसूरत विस्तार है। फिल्मों में संगीतकारों ने अपनी अद्भुत कल्पनाशीलता से घड़ी की टिक टिक, खेल के मैदान की हलचल या कदमों की आहट जैसी रोजमर्रा की आवाजों को धुनों में ऐसा पिरोया कि वे गीत की धड़कन बन गई। चाहे वो टिक टिक टिक मेरा दिल बोले हो या दिल की धड़कन बना हुआ कोई गीत, घड़ी की आवाज हो या ढल गया दिन, हो गई शाम में बैडमिंटन की रैकेट शटल की लय, ये ध्वनियां संगीत से अलग नहीं बल्कि उसका प्राण महसूस होती हैं। सच ये कि संगीत सिर्फ वाद्य यंत्रों से नहीं, हमारे परिवेश की हर धड़कन में छुपा है, बस उसे महसूस करने वाले कान और सुनने वाले बुनने वाले दिल की जरूरत है। बहुत सुंदर इबारत हमारे श्रोताओं ने लिखी है, तो चलिए सुनते हैं ऐसा ही गीत जिसका जिक्र हमने भी अपनी इबारत में किया था और अभी अभी इन श्रोता ने भी किया है। फिल्म हम जोली का गीत है, मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन है, और इस गीत में क्या है ये आप जानते हैं। रैकेट और शटल की आवाज, टिक, है ना, सुना है आपने कितने तरीके से संगीतकार ने इस गाने में इस धुन को पिरोया है।

जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है कि जब स्टेशन से गाड़ी छूट जाती है तो फिर 1-2-3 हो ही जाती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको

हमारे श्रोता ने लिखा है कि संगीत में साज तो कई तरह के होते हैं, लेकिन जब रोजमर्रा की कोई साधारण सी आवाज किसी गीत में ताल बन जाती है तो गीत यादगार बन जाते हैं। आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है और वही बात आपने भी कही है कि पूरा दृश्य चलने लगता है और सच्ची धुनें बाहर से नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की रोजमर्रा के टिक टिक, छुक छुक और छम छम से ही छुपी होती है। बस उन्हें सुनने और महसूस करने के लिए एक संगीत प्रेमी दिल और दिमाग चाहिए होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि नित्य नवीन विषय की निर्मात्री का नवीनतम अध्याय प्रशंसनीय, उल्लेखनीय और विचारणीय है। सुरीला सफर मंदाकिनी जी के निर्देशन में नई ऊर्जा से संचालित हो रहा है। नियमित श्रोताओं को स्फूर्तिवान रखने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। चित्र विचित्र वस्तुओं के ध्वनियों से गूंजती आज की सुरीला सफर का संगीतमय आनंद बना रहेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारतीय हिंदी फिल्मों के संगीत में अलग अलग संगीतकारों ने पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों के अलावा दूसरी अलग अलग चीजों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को अपनी संगीत रचनाओं में इस तरह पिरोकर ऐसा तिलिस्म रचा जो कि कालजी रचनाओं में शामिल हो गया। आपने

भी कुछ गानों का जिक्र किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी ये पंक्तियां संगीत को देखने का एक बेहद जादुई और अलौकिक नजरिया देती हैं। ये इबारत हमें एहसास कराती है कि महान संगीतकार केवल वाद्य यंत्रों के मोहताज नहीं थे, बल्कि वे हमारे आसपास बिखरी रोजमर्रा की आम आवाजों में भी संगीत ढूंढ लिया करते थे। घड़ी की सुइयों के टिक टिक को दिल की धड़कन बना लेना या खेल के मैदान की टुक टुक को धुन में ढाल देना उनकी अद्भुत कल्पनाशीलता और रचनात्मकता की पराकाष्ठा है। संगीत सिर्फ कानों से सुना नहीं जाता, बल्कि वो हमारी जिंदगी की हर हलचल में छुपा होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि महान संगीतकार ओपी नैयर साहब ने अपने बनाए बहुत से गीतों में घोड़ों की टापों की आवाजों को शामिल किया और वो प्रयोग भी कामयाब रहा। और आरडी बर्मन साहब ने तो कंगी, टिन का डिब्बा, शीशे का गिलास, झाड़ू सभी बजाकर मधुर संगीत का निर्माण किया और वो भी सफल हुए। जितना हमें पता है वो सब आप सभी से साझा किया। अब देखना यह है कि आप अपने पिटारे में से कौन सी जानकारियां लेकर आती हैं। भाई हमारी भी जानकारी वही है जो आपकी है, लेकिन हाँ हम इधर से आप तक पहुंचा रहे हैं और आप उधर से हम तक पहुंचा रहे हैं। तो चलते हैं अगले गीत की ओर। मन्ना डे की आवाज, फिल्म का नाम सफर, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन। और यहाँ पर आपने देखा होगा चप्पू की आवाज आती है, पानी की आवाज, किस तरह से नाव चल रही है और ये आवाज हमें साफ साफ सुनाई देती है इस गीत के जरिए।

श्रोता लिख रहे हैं कि आज की उद्घोषिका मंदाकिनी जी और सभी को नमस्कार। आज का विषय बिल्कुल नवीन लेकिन बहुत ही रोचक है, हमें पसंद आ रहा है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमने बचपन में परात को डफली बनाकर डफली वाले डफली बजा गीत की नकल की जब मम्मी घर में नहीं होती थी, बस एक प्यारी सी दोस्त और हम होते थे। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही होता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि डीजे की आवाज मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। अच्छा, एक श्रोता कहते हैं हमारे घर के पास ही दुर्गा मंदिर है, सुबह सोकर उठने से पहले ही मंदिर की घंटियां हमें जगा देती हैं। बहुत ही मधुर स्वर में घंटियों की आवाज आती है और हम उठते ही ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। बहुत सुंदर, यानी हमारे सवालों का जवाब हमारे श्रोता दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि चाय के होटल पर पहले बैठते थे तो चाय आने में समय लगता था, तो टेबल बजाना चालू कर देते थे और उसके साथ गीत भी गाना शुरू हो जाता था। बिल्कुल ये होता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो दो डब्बे रखकर तबला बजा लेते हैं, वीणा के तंतुओं द्वारा उत्सव उत्पन्न झंकृत ब्रह्मांडनीय नाद अति सुंदर। एक श्रोता ने लिखा है कि ढोलक बजाना आए या न आए, पर ढोलक देखने के बाद तो दो चार थाप हम भी लगा ही लेते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पूरब और पश्चिम फिल्मों में ओम जय जगदीश हरे आरती में घंटी और शंख ध्वनि, ये आवाज हमें बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बांसुरी की आवाज मुझे हमेशा से बहुत अच्छी लगती है, उसमें न जाने कैसी सादगी और मिठास है कि मन को बिना कुछ कहे छू जाती है। जब बांसुरी बजती है तो लगता है जैसे हवा भी कोई मीठी सी धुन लेकर हमारे पास से गुजर गई हो। उसकी आवाज में एक अपनापन सा है, न कोई शोर न कोई बनावट, बस कुछ सुर और ढेर सारा सुकून है। शायद इसलिए बांसुरी की धुन सुनते ही मन कुछ पल के लिए ठहर जाता है और चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। बहुत सुंदर बात आपने अपने मन की हम तक पहुंचाई है। एक श्रोता लिखते हैं कि पियानो अकॉर्डियन विशेषकर इन्हें पसंद आता है, माउथ ऑर्गन भी, और ये बजाते भी हैं। मैंडोलिन इन्हें पसंद है, सुरजीत और कई सारे वाद्ययंत्रों का आपने जिक्र किया है और आपने विविध भारती के कार्यक्रमों में इन वाद्ययंत्रों को बजाया भी है, इसका भी जिक्र आपने किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के प्रोग्राम में बहुत ही कर्णप्रिय गाने जो अलग अलग वाद्ययंत्रों का प्रयोग मन को आह्लादित करने वाले हैं सुनाई दे रहे हैं। राहुल देव बर्मन साहब ने तो बहुत ज्यादा प्रयोग किए, कहीं चम्मच से भी लाजवाब संगीत उन्होंने बनाया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि हमें थाली चम्मच और मेज, ये वाद्ययंत्र बहुत पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट बहुत अच्छी लगती है, स्वाभाविक भी है, ये चहचहाट तो सभी को मधुर लगती है, लेकिन ये मधुरता कब तक हमें मिलेगी पता नहीं, जब तक मिले भगवान जी को समर्पित और नमन करूंगी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गली मोहल्ले के छोटे मोटे फंक्शन में ढोलक एक आम बात हुआ करती है और कुछ लेडीज एक इकट्ठी होकर भजन कीर्तन या अन्य किसी प्रकार का कार्यक्रम करती हैं, ढोलक उसमें जरूर बजती है, उसमें मन भी लग जाता है और ढोलक बजाने की प्रैक्टिस भी हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही हमारे रोजमर्रा के वाद्य यंत्र भी होते हैं। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप अपनी बाइक पर गए हो या गाड़ी में गए हो, दोपहिया वाहन पर गए हो या साइकिल पर गए हो और टायर पंचर। तो ऐसा ही गीत आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं फिल्म टैक्सी ड्राइवर से, जहां किशोर कुमार और साथियों ने इस गीत को गाया है। साहिर लुधियानवी के बोल हैं, सचिदेव बर्मन की धुन है और इसमें यही होता है कि टायर पंचर होता है और फिर उसमें हवा भरी जाती है। बहुत ही ध्यान से जब आप इस गीत को सुनेंगे तो ये संगीत भी आपको सुनाई देगा।

0: करने की हवा निकल गई।
1: जैक लगाओ,
2: किक किक किक किक,
1: डेपनिंग पहिया, अरे पंपिंग,

जी तो ये मस्ती भरा गीत अभी आपने सुना। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि वैसे तो हमें प्रॉपर ढोलक बजाना नहीं आता, लेकिन फिर भी हम तबला और डोर बजा लेते हैं, ढोलक बजा लेते हैं। इसके अतिरिक्त कुकर की जब सीटी आती है या टॉवल से भी गिटार बजाने का अभिनय कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि इन्हें गिटार और बांसुरी जो है बहुत पसंद आती है। वही एक श्रोता को हारमोनियम, ढोलक, तबला, मजीरा मंदिर में सत्संग में बहुत साल तक बजाया है। अभी ही 2 महीने पहले रामकथा का आयोजन किया था, तब स्टेज पर पूरे 9 दिन पखावज मंजीरे बजाई, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे बांसुरी और सैक्सोफोन वाद्य यंत्र बहुत पसंद है। और एक श्रोता को मुझे सभी वाद्य यंत्र पसंद है, लेकिन सैक्सोफोन और सितार को जिस तरह हमारे फिल्मी गानों में बजाया गया है तो वो कालजयी बन गए हैं और सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे गानों में बांसुरी की आवाज बहुत अच्छी लगती है। पक्षियों का कलरव बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जब ज्यादा चींची करती है तो गुस्सा भी आने लगता है, अरे क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं हारमोनियम बजाता हूं, चूंकि ये रीड वाला वाद्य यंत्र है अतः इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड भी बजाता हूं। वैसे मुझे संतूर की आवाज भाती है, दिल दिमाग को झंकृत कर देती है। वहीं एक श्रोता को घोड़े की टापों की आवाज अच्छी लगती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बांसुरी की आवाज और टेबल को बजा के हम यूं तो गीत गा लेते हैं और कभी कभी ढोलक की आवाज के साथ भजन भी हम गाते हैं जो कि अच्छे लगते हैं। एक श्रोता को प्रकृति को सुकून देने वाला संगीत सुनना है तो सुबह 5 बजे उठकर बाहर चले जाइए, वहां बहुत सारे पेड़ और चारों तरफ हरियाली होगी, पानी से भरा तालाब फिर नदी होगी, तो आपके मन को कितनी शांति मिलेगी ऐसा जानते हुए जब आप संगीत सुनेंगे तो उस संगीत का तो कहीं उदाहरण दूसरा मिलेगा ही नहीं, ऐसा आप लिखती हैं। और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम पाकीज़ा, गीतकार कैफी आजमी हैं, संगीतकार गुलाम मोहम्मद साहब हैं। इस गाने के अंत में जो गाड़ी की आवाज है यानी सीटी जो बजती है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है और दिल को एक अलग ही भाव पैदा कर देती है हमारे दिल में।

दोस्तों, समय अभाव के कारण ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पाए और इसी कारण गाने के अंत में जो ट्रेन की आवाज़ हमें सुनाई देती है वो आपको नहीं सुनवा पा रही हैं। फिलहाल सुरीला सफर कार्यक्रम का अब वक्त खत्म हो चला है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

सभी साथियों को सलमा का सप्रेम नमस्कार। कोटि कोटि कंठों की भाषा, जन जन की अभिलाषा, हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी हम सबकी परिभाषा। आज संसार में करीब 7,000 भाषाएं और अनगिनत बोलियां हैं, जिसमें हिंदी संसार की दूसरी बड़ी भाषा है जिसका उपयोग हम सब करते हैं। हिंदी अपने विपुल वैभव और

समृद्ध शब्दकोश के कारण राजभाषा के पद पर सुशोभित है। इसमें अपनेपन की सुगंध, सरलता और मधुरता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। साथियों, जयशंकर प्रसाद का हिंदी भाषा और साहित्य में अतुलनीय योगदान है। उन्होंने हिंदी को किताबी रूप से मुक्त कर आम आदमी की भाषा बनाया। आइए सुनते हैं जयशंकर प्रसाद की लिखी एक रचना।

भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं होती, वो हमारी भावनाओं की आवाज होती है। किसी भाषा का विस्तार तभी होता है जब वो लोगों के दिलों तक पहुंचती है। हिंदी भी ऐसी ही भाषा है, सरल, सहज और अपनापन लिए हुए। देश में बोली जाने वाली अनेक भाषाओं और बोलियों के बीच हिंदी संवाद का एक सुंदर सेतु बनकर सामने आती है, और जब कोई भाषा सहजता से हमारे मन की बात कह देती है तो वो अपनी सी लगती है। दिलों को जोड़ने वाली सरल भाषा हिंदी का प्रचार प्रसार किसी दूसरी भाषा को पीछे करना नहीं, बल्कि भारतीय भाषाओं की समृद्ध परंपरा के साथ हिंदी को भी आगे बढ़ाना है। भारत अनेकताओं का

है, यहाँ भाषाएं, बोलियां, पहनावे अलग अलग हैं, लेकिन इन विविधताओं के बीच एकता की जो डोर हमें बांधती है उसमें भाषाओं की भूमिका बहुत अहम है। हिंदी ने देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों को एक दूसरे से संवाद करने का अवसर दिया है। ये संवाद आगे चलकर अपनापन बनता है और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। साथियों, अमृता प्रीतम की प्रसिद्ध कविता अंबर की एक पाक सुराही उनकी अत्यंत भावपूर्ण और रोमानी रचनाओं में से एक है। तो आइए सुनते हैं यही सुंदर गीत।

हिंदी को संविधान ने राजभाषा के रूप में स्थान दिया है। साथ ही भारत की हर भाषा हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। हिंदी का सम्मान तभी पूरा होगा जब हम भारत की सभी भाषाओं का सम्मान करें, क्योंकि देश की असली सुंदरता यही तो है, अनेक स्वर लेकिन भावना एक। हिंदी की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी सहजता है। उसमें संस्कृत की गरिमा, उर्दू की चाशनी, लोक भाषाओं की मिट्टी की खुशबू और बोलचाल की आत्मीयता है। यही कारण है कि हिंदी में प्रेम भी बड़ी सुंदरता से व्यक्त होता है और जीवन दर्शन भी। हिंदी को केवल बोलने की भाषा नहीं बल्कि जोड़ने, समझने और दिल से दिल तक पहुंचने वाली भाषा बनाएं। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का एक विशेष स्थान है। आइए सुनते हैं उनकी एक रचना।

हिंदी की सरलता को अपनाएं, उसकी सुंदरता को महसूस करें और हिंदी भाषा के माध्यम से भारत की एकता के स्वर को और मधुर बनाएं। अब आज की त्रिवेणी होती है संपन्न। अब दीजिए सलमा को आज्ञा। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान। देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में आयोजित दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करके और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह को बरकरार रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की

0: जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। एक रिपोर्ट।
1: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान लोगों के विकास और ग्लोबल साउथ के हितों को विशेष महत्व दिया। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि सम्मेलन के पहले ही दिन सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना था। पश्चिम एशिया की स्थिति पर ब्रिक्स नेताओं ने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समस्या का समाधान करने की अपील की। वहीं आम लोगों और नागरिक सुविधाओं की सुरक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा सभी नेताओं ने हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने पर भी सहमति बनी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने त्रिकुरल के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तिरुकुरल के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। विदेश मंत्रालय ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन में सहयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है। मंत्रालय ने उन सभी राज्य सरकारों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने ब्रिक्स की विभिन्न बैठकों की मेजबानी की। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन का आयोजन जटिल कार्य था जिसके लिए सरकार और देश के सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास जरूरी थे। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि सेना के अथक प्रयासों के चलते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। रक्षा मंत्रालय ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है। विरोध प्रदर्शनों में भी गिरावट आई है और पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई है। रिपोर्ट में चीन के साथ समग्र स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है। वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। वास्तविक नियंत्रण रेखा LSC और पारंपरिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में 10 संयुक्त शस्त्र ब्रिगेड के आकार के बल तैनात किए गए हैं। भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर सकारात्मक विकास हुआ है जिससे स्थिरता आई है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2025-26 प्रदान किए। श्री शाह ने हिंदी दिवस के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया।
2: हिंदी शब्द संसाधन, हिंदी टंकन अंशुलिपि, इसके प्रशिक्षण का भी शुभारंभ हुआ है। राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार का भी सबको सम्मानित करने का काम हुआ है। जिन जिन लोगों को राजभाषा कीर्ति सम्मान और राजभाषा गौरव पुरस्कार मिला है, वो सभी को मैं मन

0: बहुत बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
1: गृह मंत्री ने वंदे मातरम को देश का गौरव बताया।
0: वंदे मातरम की उद्घोषणा के साथ न केवल आजादी की उत्कंठता को, आजादी प्राप्त करने की तीव्र भावना को जागृत किया, इसके साथ साथ भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डालने का काम भी बंकिम चंद्र जी ने किया था। आजादी के बाद भी इसको पूर्ण स्वरूप से स्वीकार करते करते 80 साल हो गए। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने वंदे मातरम को फिर से बार पूर्ण स्वरूप गौरव के साथ सरकारी समारोह में गाने का काम किया।
1: दो दिन के अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से नवी मुंबई में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हिंदी और महाराष्ट्र के समृद्ध भाषाई, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परंपराओं के बीच संबंध को उजागर करना है। सम्मेलन में विभिन्न संस्थानों, संगठनों, बैंकों और मंत्रालयों की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है।
2: हिंदी दिवस वो दिन है जब हम सिर्फ एक भाषा का उत्सव नहीं मनाते, बल्कि उस भाव को नमन करते हैं जो हमें शब्दों के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ता है। संत कबीर ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारे संस्कारों की भी पहचान है। हिंदी ने सदियों से भावनाओं को शब्द दिए हैं। भाषा का वास्तविक गौरव तभी है जब वो ज्ञान को सबके लिए सहज बनाए और समाज को जोड़े। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। इस हिंदी दिवस पर आइए हिंदी को केवल सिर्फ एक दिन के रूप में न याद करें बल्कि इसे बोलें, पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ाएं। साथ ही दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करें क्योंकि भाषा में जितनी स्वीकार्यता होगी वो उतनी ही आगे बढ़ेगी। आकाशवाणी की ओर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2020 के बाद से 9 राज्य में 147 कोयला खंडों की नीलामी की गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि इससे लगभग 47,500 करोड़ रुपए का राजस्व और 4,90,000 नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित वाणिज्यिक खदानों से लगभग 3,090 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। भारत के विद्युत मंत्रालय ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को 13 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में आई बाढ़ से नेपाल के जल विद्युत अवसंरचना को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे नेपाल के घरेलू बिजली उत्पादन क्षमता में कमी आई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता उत्पन्न हुई है। राजस्थान में 309 शहरी स्थानीय निकायों के लिए हुए चुनावों की वोटों की गिनती जारी है। अब तक मिले रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। राज्य के 10 नगर निगमों में से भाजपा जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा और उदयपुर सहित 6 में आगे है, जबकि कांग्रेस पाली और बीकानेर में बढ़त बनाए हुए है। भरतपुर में निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार भूमि मालिकों की जानकारी के बिना किए जाने वाले फर्जी भूमि पंजीकरणों को रोकने के लिए एक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली शुरू कर रही है। यह संपत्ति पंजीकरण को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। केंद्रीय विद्युत और आवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका पहुंच गए हैं। ऊर्जा प्रचुरता पर G20 मंत्री स्तरीय बैठक 14 से 16 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात

0: गुजरात के अनेक जिलों में आज तेज बारिश और आंधी तूफान की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, नवसारी और वलसाड़, इन पांच तटीय और अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कच्छ, जामनगर, देवभूमि द्वारका, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, बोटाद, अमरेली, भावनगर और सूरत समेत 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट प्रभावी है। इन दौरान 41 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई।

0: का येलो अलर्ट प्रभावी है। इन दौरान 41 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। वहीं राज्य में मॉनसून की नई बारिश से फसलों को संजीवनी मिली है, जिससे किसानों में खुशी की लहर छाई है। राज्य के 35 बांध अपनी पूरी क्षमता से भरने के कारण हाई अलर्ट पर है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा और बिहार में भी तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले दो दिन तक बारिश जारी रह सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में भगवान गणेश की पूजा की।
2: गणेश चतुर्थी की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री गणेश सबके जीवन में हमेशा शुभ करें, हर व्यक्ति के जीवन में खुशी, उत्साह, उत्सव रहे, इसकी कामना करता हूँ। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद बना रहे।
1: गणेश चतुर्थी की वजह से आज घरेलू शेयर बाजार बंद हैं। कमोडिटी बाजार में आज सुबह के सत्र में कोई कामकाज नहीं हुआ, लेकिन शाम 5 बजे से कारोबार फिर शुरू हो जाएगा। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में ज्वेरेव ने अमरीका के बेन शेल्टन को हराया। ये 2026 में ज्वेरेव का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने जून में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृह मंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान और देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है।

0: शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में अभी आपने हसरत जयपुरी का लिखा गीत सुना। स्वर मोहम्मद रफी का था, फिल्म आरजू के लिए। यह आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीत शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है।
1: आंखें ना डालो मुझे कुछ होता है, आंखों में आंखें ना डालो मुझे कुछ होता है, बाहों में बाहें ना डालो मुझे कुछ होता है, बाहों में बाहें ना डालो मुझे कुछ होता है। आंखों में आंखें ना डालो मुझे कुछ होता है, आंखों में आंखें ना डालो।

लू मुझे कुछ होता है, आंखों में आंखें ना डालो मुझे कुछ होता है। आंखों में आंखें ना डालो।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में हम आपको शैलेंद्र का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम संगम, आवाज मुकेश की।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

कार्यक्रम का अगला गीत राजा मेहदी अली खां का लिखा हुआ, संगीत में डाला है मदन मोहन ने, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है आपकी परछाइयां।

0: la la la la la la la la la la la la.
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर.
2: सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन.
1: सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा.
3: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही

0: उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

कार्यक्रम का अगला गाना मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म आरती से हमने लिया है। इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और धुन रोशन की है।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का आप सुनिए ये आखिरी गीत। शंकर जयकिशन का संगीत है, शैलेंद्र के बोल हैं, मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म का नाम है एन इवनिंग इन पेरिस।

0: बन के रहेगा।
1: इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार, और दीपा आपको भी नमस्कार और बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ।
1: जी बिल्कुल, आपकी शुभकामनाएं स्वीकारते हैं और अपनी सभी सखियों को, श्रोता भाइयों को और चंचल आपको भी नमस्कार, हेल्दी नमस्कार और
0: हाँ
1: बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत खास दिन है आज।
0: बिल्कुल, मुझे इंतजार था कि आपका हेल्दी नमस्कार क्यों नहीं आया।
1: वो कैसे छूट सकता है, वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। सब चीज चलती रहेंगी, मतलब हर चीज, परिस्थितियां आएंगी जाएंगी,
0: जी
1: कभी खुशी वाले दिन होंगे जैसे आज का दिन है,
0: हाँ,
1: त्योहार आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन
0: और इनमें सेहत बड़ी जरूरी है, इसीलिए
1: बिल्कुल
0: आपके हेल्दी नमस्कार का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। तो
1: चलिए
0: चलिए
1: आप
0: विषय बताते हैं
1: जी।
0: आज के। आज कथा सुधा में हमारी सखियां और सखा सुनेंगे कहानी बड़े भाई साहब, इसका पहला भाग।
1: जी
0: इसके अलावा आज प्रादेशिक व्यंजनों में हम कश्मीरी व्यंजन की बात करेंगे। नदरी यखनू यानी कमल ककड़ी, उसे कश्मीरी भाषा में नदरी यखनी, नदरू यखनी कहा जाता है। तो इससे क्या क्या बन सकता है, इसके क्या क्या व्यंजन बनते हैं, हमारी सखियां हमारे साथ जरूर साझा करेंगी। और खुशी का दिन है भाई, स्पेशल दिन है, खास दिन है, वो
1: बिल्कुल।
0: क्या है ये आप बताइए।
1: देखिए आज है हिंदी दिवस। और सुबह से हमारे सभी श्रोता सुन भी रहे हैं कुछ खास हिंदी के, हिंदी से, शुद्ध हिंदी से भरपूर वाले जी, शब्दों से भरपूर वाले गीत हम भी यहाँ पर कुछ आपके लिए प्रस्तुत करेंगे और जानेंगे कि क्या इसकी विशेषता है।
0: जी
1: और साथ में और भी एक खास बात है जो सारी दुनिया,
0: भाई
1: मतलब
0: पूरा
1: आज तो सारा
0: देश,
1: देश मना रहा
0: हाँ,
1: है।
0: क्योंकि आज बहुत खास दिन है ना दीपा, और ये मेहमान तो हम सबके घर में आते हैं, लेकिन आज जो आने वाले हैं वो सबसे खास मेहमान हैं, क्योंकि वो हैं विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति, हमारे गणपति बप्पा। आज उनके आगमन का दिन है।
1: बिल्कुल। और चंचल सच कहूँ तो गणपति उत्सव सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये वो पल है जब हम अपने घर में सिर्फ बप्पा की मूर्ति नहीं लाते हैं, हम लाते हैं खुशहाली। तो वो जो हंसी पूरे साल घर में गूंजती रहती है, हम लाते हैं मंगल कामनाएं कि हमारा घर, हमारे अपने, हमारे खुश रहें, सलामत रहें। गणपति उत्सव में हम खुशहाली और मंगल कामनाएं घर पर लेकर आते हैं।
0: बिल्कुल, महाराष्ट्र में जो एक रीति रिवाज जिसे हम कहें कि सब लोग छोटी छोटी सी मूर्तियां अपने घर में लेकर आते हैं,
1: जी जी
0: और बप्पा आते हैं तो सिर्फ उनकी एक मूर्ति नहीं आती है, घर में खुशियों की रोशनी आती है, भरोसा आता है कि अब जो होगा सब ठीक होगा, बप्पा सारी, कहते ना कि तकलीफों को, परेशानियों को हर लेंगे।
1: बिल्कुल,
0: आंगन में रोशनी आती है, दिल में एक अजीब सा सुकून आ जाता है बप्पा के आने से।
1: ये बात तो
0: बच्चों की जो हंसी है वो थोड़ी तेज हो जाती है, और फिर भाई बच्चों की हंसी या खुशी, या हम सब बड़ों की भी, वो इसलिए भी तेज होती है कि रसोई से मोदक की खुशबू आने लगती है, और ये कह सकते हैं कि एक खासियत है इस पर्व की, और असली रोशनी भी है। तो हम सभी बोले ना, दिल दिल से सब मिलकर बोलते हैं ना, गणपति
1: गणपति
0: बप्पा
1: बप्पा
0: मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।
1: और बप्पा के आने का मतलब सिर्फ दिए या लाइटें, मतलब कि घर में रोशनी है, सिर्फ ये नहीं, जब मन रोशन होता है ना चंचल, तब हमारी पुरानी नाराजगी भी हम भूल ही जाते हैं कहीं, है ना, सही बात। और जब पूरा परिवार एक साथ आरती पे खड़ा होता है, या हमारे सोसाइटी में जब सब एक साथ खड़े होते हैं,
0: हाँ,
1: तो सच में ऐसा लगता है पप्पा हमें यही सिखाने आए हैं कि शुरुआत करने से कभी मत डरो और हर नया काम शुभ है अगर आपकी नीयत साफ है तो।
0: तो बस बप्पा के आज का जो दिन है, इसमें हमने घर को तो खूब सजाया ही है, क्यों ना अपने मन का भी कोना हम थोड़ा सा साफ कर लें, उसे सजा लें प्रेम की भावना से, अच्छाई से, और पुराने जितने भी मतभेद हैं उसे भुलाकर हम भी इस खुशी के उत्सव में शामिल हो जाएं। और महाराष्ट्र में तो 11 दिन तक ये उत्सव चलने वाला है, हम भी शामिल होते हैं।

0: पे तो ये तो हुआ गणपति उत्सव के रंग में डूबा हुआ गीत, और अब बारी है कार्यक्रम में कथा सुधा की, तो सुनते हैं कहानी।
1: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
2: कथा सुधा में आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग।
3: मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे

0: आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। एक साल का काम दो साल में करते थे, कभी कभी तीन साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की, वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द का वाक्य 10-20 बार लिख डालते, कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर से नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिनमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वो 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कभी कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर बार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहां थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि रोष मिश्रित शब्दों में मेरा सत्कार करें।
1: अरे इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, एरा गैरा नथु खैरा सभी अंग्रेजी में विद्वान हो जाते हैं। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने घोंगा हो भाई कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तुम अपनी आंखों से देखते हो मगर नहीं देखते जो तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहा हूं। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूं। फिर तुम कैसे आशा कर सकते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो?
0: मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे

0: सूखती बाण चलाती कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों न घर चला जाऊं, जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे दो घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। छटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेलकूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे हाथ मुंह धोकर नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कॉम्पोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वो दांव घात, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में अव्वल आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं, आपकी वो घोर तपस्या कहां गई, मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में प्रथम भी हूं। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हां, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा, भाई साहब का वो रोब मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा, दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया, मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब से ये हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी ससहमत बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े।
1: देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजों को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार

बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया, कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी जो चाहे करे, पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा, उसे यह अनुमान था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशान पड़ जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशान खाली न जाए। मेरे फेल होने पर न जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा, जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं, 8-8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी सातवें की जगह हेनरी आठवां लिखा और सब नंबर गायब, सफाचट, सिर्फ भी ना मिलेगा, सिफर भी। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कौड़ियों चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है, इन अभागों के नाम भी ना जुड़ते। एक ही नाम के पीछे दोयम, तेयम, चहारम, पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता, और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वो तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिरपिर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा? इस रेखा पर वो लंब गिरा तो आधार लंब से दुगना होगा, पूछिए इससे प्रयोजन? दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना तो ये सब खुराफात याद रखनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। और जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्ने में लिखने की जरूरत, मैं तो इसे हिमाकत समझता हूं। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि दुरुपयोग है, व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया। हम जो चाहते हैं, आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपके पन्ने 4 रंगने पड़ेंगे चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? उल्टी बात या नहीं? मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रख

0: करते, इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताएंगे।
1: स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर भी ये तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है।
2: कथा सुधा में आज आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज आपने सुना इस कहानी का पहला भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है।

कथा सुधा में आज आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज आपने सुना इस कहानी का पहला भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है। छोटे भाई जयंत पात्रिकर, बड़े भाई साहब जी श्याम, संकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुष

0: उसका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: इस संदेश से पहले सखियों आपने कथा सुधा में सुना बड़े भाई साहब की पहली कड़ी और अब एक अंतराल का समय हो चुका है।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली, और इस अंतराल से पहले हमने सुनी कहानी, और उससे पहले हमने बात की गणपति उत्सव की। बहुत सारे संदेश हमारी सखियों ने भी भेजे हैं
1: जी, बहुत सारे आए हैं
0: तो उनके संदेश भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक गीत सुन लें।
1: चलिए।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत और वैसे ही खूबसूरत संदेश भी हमें मिले हैं अपनी
1: बहुत सारे
0: सखियों।
1: संदेश, और पुनः हम सभी अपनी सखियों को, श्रोता भाइयों को गणेश चतुर्थी और ये आने वाले 10 दिनों तक जो आप हर्षोल्लास के साथ मनाने वाले हैं इस त्यौहार को, उसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। और ये पहला संदेश हम पढ़ रहे हैं कि गणपति की स्थापना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि घर आंगन में खुशियों, शांति और समृद्धि के आगमन का शुभ अवसर है। बप्पा के स्वागत के साथ वातावरण भक्ति और उल्लास से भर उठता है और साथ में ये भी दिखते हैं कि उनके आगमन से परिवार में प्रेम, एकता, उत्साह की नई रोशनी फैलती है। और आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ बप्पा का हम स्वागत करें। इसी भावनाओं के साथ बहुत सारे संदेश।
0: हाँ, और हमारे एक श्रोता भाई ने या सखी है, उन्होंने ये भी लिखा है कि महाराष्ट्र में ये उत्सव बड़े हर्षोल्लास से, जोरों शोरों से और बहुत बहुत विशाल तरीके से मनाया जाता है। बड़े बड़े पंडालों में गणपति की मूर्ति स्थापित की जाती है, लोग अपने परिवारों के साथ इस मंडप में भी जाते हैं, दर्शन करते हैं और अपने पूरे परिवार के लिए मंगल कामनाएं मांगते हैं। और हमारे एक संदेश में हमारे शोधा बहन लिखती हैं कि हमारे बेटे बहू ने भी गणपति महाराज की स्थापना की है, गणपति भगवान सभी की मनोकामना पूरी करें।
1: बिल्कुल, और इसी तरह की बातों के साथ एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि बहुत जरूरी है कि हम सब इको फ्रेंडली गणपति का इस्तेमाल करें और जितना हो सके इस बार अपने घर को इको फ्रेंडली अपने घर पर लेकर आए उनकी मूर्ति और उसी तरह से सजावट भी करें। तो भाई ये बात पे ध्यान रखने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है।
0: तो आपने बात पर ध्यान देने की बात की, मेरा ध्यान गया एक ऐसे संदेश पर जिसमें लिखा गया कि पिछले कई सालों से गणेश चतुर्थी के दिन हम घर पर ही मिट्टी लाकर गणपति जी की मूर्ति बनाते हैं।
1: क्या बात है।
0: और ये अजमेर के श्रोता भाई हमारे श्रोता हैं और इन्होंने बताया है कि पूजा के रूम में उनको विराजमान करते हैं, 11 दिनों तक उनकी पूजा की जाती है, मोदक का भोग लगाया जाता है और पूरे विधि विधान से अनंत चतुर्दशी के दिन उनका हम घर में ही अपने बगीचे में विसर्जन भी करते हैं।
1: कितनी अच्छी बात है। देखिए हमारे ही बीच में अगर एक कोई बात समाज समझा रहा है तो एक और हमारे घर सखी है या श्रोता है जो हमें उस बात को करके भी दिखा रहे हैं। तो अपना परिवार इसी तरह से सखी सहेली का समृद्ध परिवार है।
0: और लगभग ये मिली जुली बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है कि घर में हर्षोल्लास का माहौल रहता है, सकारात्मकता आती है, नई ऊर्जा आती है। तो इसी ऊर्जा के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की तरफ।

0: कितने अच्छे शब्द थे इस गीत के और बहुत सुंदर हिंदी का लालित्य इसमें देखने को मिला. और आज 14 सितंबर है और ये सिर्फ एक तारीख नहीं होती दीपा कि बस कैलेंडर पे हमने जो तारीख देखी उस तरह से नहीं है, बल्कि अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान को याद करने का भी बहुत सुंदर अवसर होता है. और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं.
1: बिल्कुल, हिंदी यानी एक ऐसी भाषा जिसमें अपनापन है, भावनाओं की गर्माहट है और दिल की बात को सहजता से कह देने की ताकत भी होती
0: बिल्कुल.
1: है. बिल्कुल, कभी ये माँ की लोरी बन जाती है और अपने कानों में उतरती है, कभी कविता बनकर मन को छू जाती है, और कभी किसी कहानी के किरदारों में हमें अपना जीवन दिखाई देने लगता है, या कभी किसी गीत के बोल जैसे सीधे अपने दिल को उतर जाते हैं ना. बस कुछ ऐसी ही है ये भाषा.
0: और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया. इस ऐतिहासिक दिन की याद में ही हर साल 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिवस के रूप में हम मना लेते हैं. और हिंदी बहुत खूबसूरती सिर्फ उसके इतिहास में नहीं है इसकी, बल्कि उसकी क्षमता में है जो अलग अलग लोगों को एक दूसरे से जोड़ देती है.
1: बिल्कुल, और हिंदी ने दूसरी भारतीय भाषाओं से बहुत कुछ ग्रहण भी किया है और बदले में उन्हें भी अपने शब्दों और अभिव्यक्तियों से समृद्ध किया है. यही तो हमारे देश की खूबसूरती है चंचल, कि यहाँ भाषाएं अलग हो सकती है लेकिन भावनाएं हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहती है.
0: और हिंदी का रिश्ता पता है हमारे फिल्मी गीतों से भी बड़ा गहरा था.
1: हाँ.
0: अभी जो हम गीत सुन रहे थे उसमें बड़ा अच्छा लालित्य था कविता का. और रेडियो पर जैसे ही कोई पुराना गाना बजता है, चाहे उसमें प्रेम हो, विरह हो, जीवन की उम्मीद हो, मतलब हर भावना को बहुत खूबसूरती से हमारे सामने परोसा जाता है और बहुत मधुर संगीत होता है. बरसों पुराने गीत जब हम सुनते हैं ना तो हमें हमेशा अपने से लगते हैं.
1: बिल्कुल, ये बात तो
0: क्योंकि मिट्टी से जुड़े हुए लगते हैं ना.
1: बिल्कुल सही कहा आपने. और आज हिंदी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है चंचल, दुनिया के बहुत सारे देशों में हिंदी बोली पढ़ी और समझी जाती है. इंटरनेट हो या सिनेमा, टेलीविजन या सोशल मीडिया ने हिंदी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में एक नई भूमिका इन सब ने निभाई है.
0: तो देखो एक कितना सुंदर संदेश हमें मिला है. हिंदी महज भारत की नहीं बल्कि दुनिया की प्रमुख भाषाओं में से एक है. हिंदी भारत की पहचान भी है और सम्मान भी है. और जो अन्य भारतीय अन्य देशों में बसे हुए हैं उनको जोड़ने का एक काम करती है. वैसे तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन उन्होंने 10 जनवरी गलत तारीख लिखी है. आगे लिखते हैं कि लेकिन भारत में हिंदी दिवस को एक खास दिन तय किया गया है. भारत में 22 भाषाएं और 72,507 लिपि हैं. बहुत बड़ा एक आंकड़ा है उन्होंने लगभग कि हम कह सकते हैं कि ऐसा है. और इतनी सारी भाषाओं की विविधता के बीच हिंदी ऐसी भाषा है जो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ देती है.
1: ये बात तो बिल्कुल सही है. और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि इस दिन हिंदी भाषा के सम्मान, उसके प्रचार प्रसार और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए ये दिन समर्पित है. शिक्षण संस्थाओं में इस दिन हिंदी दिवस पर भाषण होते हैं, निबंध लेखन, वाद विवाद और कविता पाठ जैसी प्रतियोगिताएं ये आयोजित की जाती हैं संस्थानों में. और भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं.
0: और दीपक, कोई भी भाषा तब तक जीवित या समृद्ध रह सकती है तब तक उसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में सम्मान के साथ इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं. दूसरी भाषाएं सीखना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अपनी भाषा से जुड़े रहना यह बहुत जरूरी चीज है.
1: बहुत ज्यादा जरूरी है. हम विदेश की भी कई भाषाएं सीखते हैं क्योंकि काम काज के चलते आजकल वैसे भी जरूरत हो गई है. लेकिन बाहर जो देश के विदेश में रहते हैं हमारे परिवार के कोई जन, तो ये देखा सुना है कि वो लोग घर में हमेशा कहते हैं कि नहीं, हमारी जो भाषा है, जो हमारे घर की जो भाषा है हिंदी भाषा, वो अपने बच्चों को आना बहुत ज्यादा जरूरी है.

0: क्योंकि ये भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं होती, हमारी स्मृतियां होती हैं और हमारे संस्कार होते हैं. और देखिए संदेश भी बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं. कितनी सुंदर दो पंक्तियां लिखी हैं हमारे किसी श्रोता ने, निज भाषा उन्नत अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहिए की सूल. और आगे उन्होंने सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं, बहुत सारे संदेश हैं. लेकिन पहले एक गीत सुन लेते हैं जो इसमें भी हिंदी का बड़ा सुंदर लालित्य देखने को मिलता है.
1: चलिए

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
1: तो भाई अब हम थोड़ी सी व्यंजन की बात कर लें। खाने पीने की बात भाई मोदक की बात अलग हुई लेकिन कुछ अलग व्यंजन भी तो होना चाहिए। और क्योंकि अभी श्रृंखला कश्मीरी व्यंजन की है तो कश्मीर में ना

0: कोमल ककड़ी बहुत होती है,
1: बहुत होती है और बहुत प्रकार से वो बनी जाती है।
0: हाँ,
1: लेकिन आज जो हम बात कर रहे
0: मतलब इसका सूप भी बना सकते हैं, पकौड़े भी बना सकते हैं, इवन सब्जियां भी बहुत सारे तरह से लोग बनाते हैं अपने अपने तरीके से।
1: और खास तौर पे चंचल, जिनको जिनके घर में प्याज और लहसुन नहीं खाया जाता है या नहीं पसंद कर रहे या किसी कारण से कुछ दिनों के लिए बंद है, तो वो नदरू यखनी बना सकते हैं
0: जी।
1: ये जो कश्मीरी का बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है, ये दही की ग्रेवी में बनाया जाता है जो कि बिना प्याज लहसुन के, जैसे अभी हमने आपको बताया। क्या लेना है इसमें, 500 ग्राम आप नदरू यानी कमल ककड़ी लीजिए, दही लेना है 500 ग्राम अच्छा सा फेटा हुआ, घी या तेल ले सकते हैं 3-4 बड़े चम्मच, हींग लेना है थोड़ा सा, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, हरी इलायची, ये सब दो तीन लौंग 4-5, और दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, सौंठ का पाउडर लेना है छोटा सा चम्मच 1, और सौंफ पाउडर अगर आपको पसंद है तो 2 बड़े चम्मच ले लीजिए, बेसन 1 बड़ा चम्मच, दही को फटने से बचाने के लिए, जो दही को हमें फेंटना है ना तो फटे ना, इसलिए हमें उसमें डालना है। अब बनाने की विधि यूं
0: और
1: है,
0: जो भी हम सामग्री हमने बताई है अपने स्वाद के अनुसार अब इसे थोड़ा सा घटा बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल। अब सबसे पहले नदरू को साफ करना होता है क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है, तो इसको छील करके अच्छे से धो लीजिए, और इसे तिरछा या गोल टुकड़ों में अगर काटते हैं ना तो पूरी अंदर तक की मिट्टी,
0: जो उसके छेद में अंदर तक मिट्टी घुस जाती है, चिकनी मिट्टी होती है,
1: तो वो सब बाहर निकल
0: आसानी से निकल जाएगी।
1: अब उबालना है इसे, तो कटे हुए नदरू को पानी में 10 मिनट तक उबाल लें, इसके बाद इन्हें पानी से निकालकर छान लेना है। अब एक कुकर या कढ़ाई में घी गर्म करें, इसमें हींग और सारे खड़े मसाले जो आपके घर में पसंद किए जाते हैं वो सब डाल लीजिए, फिर मसाला मिलाना है, तो उबले हुए नदरू को घी में डालें और 2 मिनट तक भून लीजिए। अब इसमें सॉल्ट पाउडर, सौंफ पाउडर और थोड़ा सा नमक मिलाकर अच्छी तरह चला लीजिए, थोड़ा पानी डालकर कुकर की 2-3 सीटी आने तक बनाएं, पका लीजिए, या तब तक की जब तक की कमल ककड़ी थोड़ी नरम
0: ना हो जाए।
1: जी, जो दही का मिश्रण अब तैयार करना है, 1 कटोरे में फेंटा हुआ दही और बेसन को थोड़ा सा पानी मिलाकर अच्छी तरह फेंट लेना ताकि कोई गांठें उसमें ना पड़े। उसके बाद ग्रेवी बनानी है, तो कुकर का प्रेशर जब खत्म हो जाए तो ढक्कन खोल लीजिए और गैस को धीमा करें या चालू रखें, और लगातार चलाते हुए दही का मिश्रण इसमें धीरे धीरे कढ़ाई में या कुकर में, अगर आप बना रहे हैं तो कुकर में ही डालना है, लगातार चलाते रहना है ताकि दही इसमें फटे ना, और जब ग्रेवी में उबाल आ जाए और ऊपर घी या तेल ऊपर तैरने लगे तब 5-7 मिनट तक धीमी आंच पर और पकने दीजिए, आपकी नदरू यखनी तैयार है।
0: एक और कश्मीरी व्यंजन हमारे पास आई है विधि इसकी, इसमें बताया गया है कि कमल ककड़ी एक
1: इंग्लिश में लोटस स्टेम भी बोलते हैं।
0: हाँ, और वहाँ की ये पारंपरिक शाकाहारी डिश है और इसे दही की ग्रेवी में पकाया जाता है अक्सर। और इसको पकाने के लिए 2 से 3 कप कटी हुई ताज़ी दही, 1 कप सरसों, लगभग उसी तरह की ये विधि इन्होंने बताई है। और इन्होंने बताया है कि मध्यम आकार के टुकड़े काटकर उबाल लें और फिर 10 मिनट तक पानी में उबालें, जैसा कि पिछली रेसिपी में भी था, लेकिन इसमें ये बताया गया कि ये खासतौर पर घी या सरसों के तेल में से पकाया जाता है, उससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और जैसा कि इसमें पहले आपने बताया कि बेसन इसलिए मिलाना है ताकि दही ना फट जाए, तो अगर कमल ककड़ी आपको बनानी है तो इन सब बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा, क्योंकि हमारे पास रेसिपी सिर्फ सब्जी की आई है, आप कमल ककड़ी के बहुत स्वादिष्ट पकौड़े भी बना सकते हैं, इसका कमल ककड़ी का सूप भी बन सकता है। तो ये तो ही कमल ककड़ी के अलग अलग व्यंजन की बात है।
1: कमल ककड़ी और चने की दाल, उसको मिला के दाल भी बनती है।
0: हाँ, तो अलग अलग संयोजन से अलग अलग एक स्वाद तैयार हो जाता है। इसी तरह से हमारी बात, रेसिपी, श्रोताओं के संदेश और गीतों को मिलाकर हमारे जो प्रोग्राम का जायका है वो बन जाता है। तो गीत सुन ले,
1: चलिए।

0: प्रेम पुजारी फिल्म के लिए इस गीत को गाया था किशोर कुमार ने, और इस गीत को लिखा था गोपाल दास नीरज ने। और जब मैं इस गीत को सुन रही थी ना, तो मुझे याद है कि आज हिंदी दिवस है, और हमने भी कोशिश की कि हम कुछ ऐसे गीत बजाएं जिसमें हिंदी का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया, ऐसा ही ये गीत था।
1: बिल्कुल
0: और गोपाल दास नीरज ने बहुत सारे गीत ऐसे लिखे हैं ना जिसमें हिंदी की इतनी सुंदर शब्द रचना है, और बाद में उन शब्द रचनाओं के, यानी कि जो भी उनके लिखे गीत थे या कविताएं थी, उन्हें इतने सुंदर तरीके से गीतों में ढाला गया ना, वो गीत आज भी यादगार बन गए
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: और नीरज जी के साथ और भी फहरिस्त में लंबी लंबी फहरिस्त है, जैसे कि भरत व्यास, पंडित नरेंद्र शर्मा, कवि प्रदीप, शैलेंद्र, वसंत देव, ये सारे वो गीतकार हैं जिन्होंने हमारी हिंदी फिल्मों के लिए सुंदर रचनाएं दी हैं। चंचल,
0: तो भाई इन रचनाओं को तो हमने सुना, और इतना समय नहीं कि बहुत सारी रचनाएं हम सुना सके, लेकिन कुछ चुनिंदा गीत हमने शामिल किए। और बहुत सारी बातें करते, गीत सुनते, कार्यक्रम का समय पूरा हो गया, और घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही हैं कि हमारे जाने का समय हो गया। तो बस लेते हैं विदा,
1: आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
0: और चंचल वर्मा का

0: सखी सहेली।
1: कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: श्रोताओं नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। न्यूट्रिशन अर्थात पोषण, इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत, और इस बातचीत की दूसरी कड़ी लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए सुनते हैं।
1: अदिति जी, ये जो कार्यक्रम है, हमारे बहुत सारे श्रोता सुनते हैं, ग्रामीण श्रोता भी सुनते हैं और शहरी श्रोता भी सुनते हैं। पोषण सप्ताह मनाया जाता है, तो पोषण सप्ताह आप अपने पैमाने पर भी मनाती होंगी, क्या कुछ शामिल करती हैं इसमें, किस तरह से लोगों को जोड़ पाती हैं?
2: पोषण सप्ताह सितंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है, 1 से 7 तारीख के बीच में, और ये कई सालों से चल रहा है
1: जी।
2: और इस सप्ताह में हम बहुत जनहित के लिए प्रचार करते हैं, बहुत ज्यादा रोड स्किट्स होते हैं ग्रामीण लेवल पे या आदिवासियों के लेवल पे, हम जाके वहां पे कैंप्स करते हैं या हेल्थ कैंप्स होते हैं सोसाइटीज में, ऐसे बहुत सारी चीजें चलती है। हर डाइटिशियन अपने तरीके से कुछ ना कुछ करती रहती है, वो चाहे अपने क्लिनिक में थोड़े से छोटे मोटे कैंप हो या कॉलेज में जाके सिखाना हो या कॉरपोरेट जॉब्स हैं जहां पे वहां पे जाके आहार के ऊपर बातें करनी हो, ताकि लोगों को आहार के बारे में और आहार के महत्व के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले और उनको ये पता चले कि कहाँ और किसके पास जाना है।

0: सही जानकारी मिलने के लिए ये इस चीज के लिए हम ये पूरा सप्ताह इस्तेमाल करते हैं। ये हम कई सालों से कर रहे हैं, मगर पिछले कई सालों से पोषण माह ज्यादा करके मनाया जाता है जो कि सितंबर का पूरा महीना होता है। इसका मतलब अब हम एक हफ्ता नहीं पूरा महीने भर हम कुछ करते रहते हैं, जैसे कुछ छोटा मोटा कुछ भी हो जो जनरल पॉपुलेशन या लोगों के लिए फायदेमंद हो, ये हम ज्यादा इसके ऊपर ध्यान देते हैं।
1: जी बिल्कुल, भारत सरकार की ओर से एक मुहिम चलाई जाती है, बहुत सारी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, क्योंकि बहुत सारा वर्ग कुपोषण का शिकार है आज भी, तो उन्हें पोषक तत्व मिले और कुपोषण से रहित अपना देश हो जाए, ये एक मुहिम है। और अब हमें बताइए कि ये जो वर्किंग वुमेन होती है और जो हाउसवाइफ होती है, तो उनके लिए किस तरह के पोषक तत्व जरूरी हैं, किस तरह के न्यूट्रिशन उन्हें लेने चाहिए?
0: अगर हम पोषण के बारे में बात करें और औरतों के बारे में बात करें, तो मेरी हमेशा एक बड़ी शिकायत होती है कि औरतें जो होती है वो सबका करने में इतनी मशरूफ हो जाती है, वो हमेशा खुद को भूल जाती है।
1: हाँ।
0: भले आप हाउसवाइफ हैं या भले आप जॉब करते हैं, दोनों तरीके से आप बहुत ज्यादा काम करते हो।
1: जी जी,
0: कोई भी किसी से कम नहीं होता। बहुत बार हमें लगता है अरे ये कुछ नहीं कर रहे, ये तो हाउसवाइफ है, इनको घर संभालना है। नहीं, अगर आप देखें कई बार हाउसवाइफ जो है पूरे दिन में इतना काम करती है, उनको अलग से वर्कआउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
1: जी बिल्कुल,
0: और दोनों के लिए अपना सही वक्त पे खाना, सही मात्रा में खाना बहुत जरूरी हो जाता है।
1: जी,
0: अगर आप वर्किंग हैं तो अक्सर ये दिक्कत आती है कि सुबह उठे डब्बा बनाया तो अपना नाश्ता भूल गए, तो अपने नाश्ते का समय निकाल के फुर्सत से बैठ के नाश्ता करना जरूरी है। फिर उसके बाद आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा सही है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। और पूरे दिन में पानी के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वैसे ही घर की जो औरतें हैं जो घर संभालती हैं, उनको ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या वो वक्त पे खा रही हैं, या क्योंकि वो किचन में काम करिए बहुत बार छोटा मोटा खाया जा रहा है और उसके वजह से भी तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि हमें चखने की तो बहुत आदत होती है। चलो ये खा लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, इसमें दिक्कत हो जाती है।
1: जी बिल्कुल,
0: तो औरतों को अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है, उनको ये देखना जरूरी है कि क्या उनको 7 से 8 घंटे नींद मिल रही है, 2 से 3 लीटर उनका पानी दिन का जा रहा है, क्या उनका शारीरिक काम हो रहा है, जैसे चलना हो गया, जिम जाना जरूरी नहीं है बट कोई तो एक्सरसाइज होनी चाहिए, वो भले 10-15 मिनट हो मगर खुद के लिए वक्त निकालना उतना जरूरी है। और उसके अलावा सही वक्त पे खाना और संतुलित खाना, जहां पे वो ध्यान दे कि उनके खाने में प्रोटीन हो, फाइबर हो, आयरन युक्त जैसे मोरिंगा हो गया या फिर हलीम या अलीव के बीज हो गए या फिर अनार हो गए, ये थोड़ी सी चीजें आपको खाने में होनी चाहिए, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद ठहरता है।
1: जी, आपने कहा पानी पीना चाहिए प्रचुर मात्रा में, कुछ लोगों को देखा पानी एक साथ गट गट गट गट पी लेते हैं, एक बोतल या 2-3 गिलास पानी, तो ये तरीका सही है? थोड़ा तरीका भी बताइए किस तरह से पीना चाहिए पानी।
0: कुछ लोग बहुत जल्दी में पानी पी लेते हैं, कुछ लोग सुबह उठ के पानी पी लेते हैं और पूरा दिन पानी नहीं पीते। हमारा शरीर इस तरीके से काम नहीं करता।
1: जी सही,
0: उसको सही वक्त पे पानी की जरूरत होती है। आपको प्यास लग रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, मतलब पानी की मात्रा आपके शरीर में कम हो गई है। प्यास लगने तक राह ना देखिए,
1: बिल्कुल
0: धीरे धीरे थोड़े थोड़े वक्त पे थोड़ी थोड़ी घूंटों में पानी पीजिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ पानी हमेशा ग्लास में लेकर पीजिएगा।
1: जी जी,
0: ना बॉटल से, आप बैठकर पियो खड़े रहकर पियो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ग्लास में इसलिए ताकि आपको एक क्षण की क्यों ना हो थोड़ी सी एक पॉज मिल जाए, एक ठहराव मिल जाए, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है भागदौड़ की जिंदगी में, कि आप वो एक 2 सेकंड का काम है कि थोड़ा सा रुक लो, थोड़ा ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दो, आप किस तरीके से पूरे दिन में सांसें अंदर बाहर कर रहे हैं, थोड़ा सा ठहराव आने दो, पानी पी लीजिए और फिर अपने काम पे आगे बढ़ जाइए। कहीं अगर हम देखें तो अगर हम 2-3 लीटर की बात करें पूरे दिन में, तो आपको एक ग्लास 1 घंटे में धीरे धीरे करके पी लेना चाहिए, धीरे धीरे, ये जरूरी है।

0: गर्म पानी पिए ठंडा पानी पिए वो आपके ऊपर है, आप बैठकर पियो खड़े रह के पियो वो आपके ऊपर है, मगर धीरे धीरे पीना बहुत जरूरी है।
1: जी बहुत भ्रांति थी, बहुत बड़ी आपने दूर की। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर।
0: जी।

0: और अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आज एक बहुत बड़ी समस्या और है, डायबिटीज के मरीज बढ़ रहे हैं और थायराइड की समस्या ज्यादातर हो रही है, तो क्या आहार के जरिए, सही न्यूट्रिशन के जरिए क्या इस पर नियंत्रण किया जा सकता है?
1: अगर हम डायबिटीज की बात करें तो अगर आपके फैमिली में या आपके परिवार में माता पिता को, चाचा चाची को, जो इमीडिएट फैमिली होती है, तुरंत आपके माता पिता, भाई बहन, किसी को भी डायबिटीज है, आपको डायबिटीज होने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको ये जानकारी है तो आपको आपके आहार या पोषण का ध्यान पहले से रखना शुरू कर देना चाहिए। आपके खाने में क्या होना चाहिए ये आप समझ गए तो आप अपने ब्लड शुगर को आराम से मैनेज कर पाओगे, आपको डायबिटीज के लेवल पे आप पहुंचोगे नहीं। अगर आप प्री डायबिटीज के लेवल पे किसी वजह से पहुंच गए, सही आहार से आप उसको रिवर्स कर सकते हो। अगर आपका लेवल डायबिटीज में चला गया और आपको डॉक्टर ने डायग्नोस कर लिया कि आपको डायबिटीज है या आपको शक्कर की बीमारी लग गई है, तो उस वक्त के बाद से आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब वो चला जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। उस लेवल के बाद से आप बस वो शक्कर की मात्रा को कंट्रोल में रख सकते।

0: करते हैं, तब भी आपको आहार की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो टाइप का आपको डायबिटीज है, भले वो जेस्टेशनल डायबिटीज जो कि प्रेगनेंसी में होता है, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, उसके हिसाब से और आपको कौन सी दवाई दी जा रही है और आपका करंट ब्लड शुगर कितना है, उस हिसाब से आहार को डिजाइन किया जाता है, ताकि आपका जल्द से जल्द शुगर कंट्रोल में आए, आपको दवाइयां कम लेनी पड़े, या अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो वो अच्छे से आपके ऊपर काम करे कम से कम डोज में। तो आहार इतनी आपकी हेल्प कर सकता है कि आपका 16-15 ऐसा HbA1c है तो वो 7-6 पे भी लेकर आ सकते हैं 3-4 महीने में।
1: जी बिल्कुल।
0: बट लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट दवाई ले लेंगे मगर खाना नहीं छोड़ेंगे, और यहाँ पे दिक्कत आती है। बिना खाने को ठीक किए आपकी दवाई काम नहीं करने वाली है या कम काम करेगी।
1: बिल्कुल सही बात है, मतलब कि हमारे जीवन में सही और संतुलित आहार का बहुत महत्व है।
0: बहुत महत्व है।
1: अदिति जी, हमें बताइए कि सप्लीमेंट की कितनी जरूरत होती है पोषक तत्वों के साथ साथ। कई बार लोग खाना पीना तो ठीक ठाक रखते हैं, उसके बावजूद उन्हें विटामिन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो सप्लीमेंट किस तरह से लेना चाहिए और कितना इसका महत्व है और कितनी हानि है?
0: सप्लीमेंट कुछ लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, कुछ लोगों के लिए वो जरूरी नहीं है। अगर आप संतुलित आहार ले रहे हैं, आपका रहन सहन सही है, नींद ठीक है, पानी ठीक है, आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तो अक्सर आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं या आपके रिपोर्ट्स में आ गया कि आपको कोई विटामिन या मिनरल की कमी है, तो कभी कभार आपको वो लेने पड़ते हैं।
1: जी,
0: जो भी आप सप्लीमेंट ले वो हमेशा डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह से ले, और डाइटिशियन आपको दवाई नहीं दे सकते हैं। डाइटिशियन आपको विटामिन मिनरल के बारे में जरूर बता सकते हैं, मगर ये विटामिन और मिनरल भी एक समय के लिए लेना चाहिए, एक उसका विशिष्ट रूप होता है जिस तरीके से लेना चाहिए। और विटामिन मिनरल्स ऐसी चीज है जिसका कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है सप्लीमेंट में, तो वो पेशेंट की जरूरत के हिसाब से हम देते हैं, बिना किसी की सलाह के, बस इसलिए क्योंकि विटामिन मिनरल मिल रहा है और किसी दोस्त ने या रिश्तेदार ने बता दिया आपको विटामिन ये लेना है, कैल्शियम ये लेना है, आपको वो अवॉइड करना चाहिए। अगर सलाह दी है तब भी ले लीजिए, और उतने वक्त के लिए ही लेना जितना बताया गया है।
1: बिल्कुल,
0: वो सही वक्त पे लेना, सही तरीके से लेना जरूरी है। अभी कौन से विटामिन मिनरल ज्यादातर लगते हैं? अगर आपकी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, मतलब आपके शरीर में कोई भी विटामिन या मिनरल की कमी बहुत ज्यादा है, तब आपको सप्लीमेंट की जरूरत लगती है। उसके साथ साथ आपको आहार को भी आपके ठीक करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो रोज का आहार है वो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी जरूरतें पूरा करेगा। सप्लीमेंट जो कि आपका बैकलॉग है, जो कि आपके शरीर में ऑलरेडी कम है, वो चीजें को भरेगा, तो वो सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। वैसे ही जैसे विटामिन डी की बात करें, तो विटामिन डी का मेन तो धूप से मिलता है, मगर हम आजकल धूप में ज्यादातर जाते नहीं है, या फिर हम पूरे कपड़े पहनते हैं या ऐसे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्रीम्स या कुछ भी शरीर पे, जिससे विटामिन डी अब्सॉर्ब नहीं होता।
1: अच्छा।
0: और खाने में विटामिन डी की मात्रा कम है, तो आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप विटामिन डी बहुत, क्योंकि कम है, सबको कम होता है, हम हर रोज लेंगे या हर हफ्ते लेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी फैट सॉल्युबल है, उससे आपकी बॉडी में विटामिन डी स्टोर हो सकता है और आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है। सो बिना सलाह किए कभी भी उनको नहीं लेना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: दूसरी चीज, आप कोई भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं या कोई डाइटिशियन के पास जा रहे हैं, आप जो भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, एक चिट्ठी पे लिख के उन डॉक्टर को थमा दीजिए कि मैं ये ऑलरेडी ले रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि दिक्कत ये हो जाती है, आप एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने भी कैल्शियम दिया, किसी और ने भी कैल्शियम दिया, और आपने उनको बताया नहीं, तब भी ज्यादा हो सकता है आपके लिए। तो सप्लीमेंट कभी भी कितने भी आसानी से मिले, कितने भी करीबी रिश्तेदार ने आपको बताए हो, बिना जांच पड़ताल या बिना कोई प्रोफेशनल सलाह के नहीं लेने चाहिए।
1: जी बिल्कुल। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर।
0: जी,
1: कौन सा गाना आपके पसंद का?
0: आजकल तेरे मेरे प्यार।
1: जब सेहत सही रहती है तो भाई जाहिर सी बात है मन ठीक रहता है।

0: अदिति जी, हमें बताइए कि कुछ लोगों का ये मानना होता है कि खाने से पहले एक गिलास पानी पी लो, खासतौर से वो लोग जो वजन घटाने की मुहिम चला रहे होते हैं, और कुछ लोगों का ये मानना होता है कि खाने के बीच बीच में पानी पीते जाओ थोड़ा थोड़ा, और कुछ लोग ये मानते हैं कि खाने से पहले ना तो पानी पीना है, ना खाने के दौरान, ना खाने के बाद। ये जरा स्पष्ट कीजिए, क्या करना चाहिए?
1: इस सवाल का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है और मैं वही सोच रही हूँ कि सही अल्फाज क्या है इसके लिए, थोड़ा स्पष्टीकरण देने के लिए, क्योंकि ये सब विचार धारणा है, ये किसी किसी को आप अप्लाई कर सकते हो, हर किसी के लिए नहीं है। सीधी बात है, आपको पानी लगता है आप पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाने के पहले एक गिलास पानी पियोगे, क्या हो जाएगा, आपके खाने पे असर पड़ेगा,
0: भूख कम हो जाएगी।
1: आपकी भूख कम तो हो जाएगी, मगर ऐसा भी हो सकता है आप कम भूख के कारण खाने की कोई विशिष्ट चीज जो आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है, आप उसी को निकाल दो।
0: जी जी,
1: जैसे भूख कम हो गई तो आपने रोटी सब्जी कर ली, दाल छोड़ दी, तो आपको दिक्कत देगा। अगर आप कर रहे हो तो उसके पीछे का शास्त्र समझ लो कि आप पानी पी रहे हो ताकि आपकी थोड़ी भूख कम हो जाए, मगर ऐसा करने के बाद अगर आपको 4 बजे बड़ी जोर की भूख लग रही है तो फिर क्या ही फायदा उस चीज करने का।
0: बिल्कुल,
1: वैसे ही आप पानी आधा घंटे पहले मत पियो, आधा घंटे बाद मत पियो, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। पानी किसको संभाल के पीना चाहिए? कुछ लोग जो होते हैं ना, जो खाना खाने के वक्त पे कम चबाते हैं या उनको चबाना पसंद नहीं आता, तो ऐसे लोग जो है थोड़ा चबा लेते हैं खाना, बाकी पानी पी के उसको थोड़ा सा गटक लेते हैं, मुझे उसका सही अल्फाज नहीं पता, बट उसको पूरा स्वॉलो कर लेते हैं।
0: जी जी जी,
1: तब आपकी खाने की मात्रा बहुत कम हो जाती है और आप पानी से ही आपके खाने को अंदर ढकेल रहे हो, ये आपको तकलीफ देगा और बहुत ज्यादा तकलीफ देगा, आपके डाइजेशन के हिसाब से भी तकलीफ देगा और आपको

0: भूख के हिसाब से भी तकलीफ देगा। ऐसे वक्त पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सिप सिप करके पानी पी रहे, घूट घूट लेके पानी पी रहे खाने के दौर में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
1: जी बिल्कुल। और एक सवाल और है, वो ये कि एक वक्त में दो अनाज खाएं, एक अनाज जैसे कि या तो दाल चावल खाएं या फिर रोटी सब्जी खाएं, रोटी सब्जी शाम को खा लें, दिन में दाल चावल खा लें, ऐसा लोग बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पूरी थाली, जैसे पुराने जमाने में पूरी थाली सजा के खाई जाती थी, तो आपका क्या कहना है
0: इसमें? सीधी सी बात है, धान धान होता है, आपको आखिर में देखना है धान की मात्रा आपकी थाली में कितनी है। आप अगर रोटी भी कर रहे हैं और चावल भी कर रहे हैं और आपकी आधी थाली उसी से भर रही है, तो उसमें दिक्कत है। हमने क्या बात की थी कि थाली में एक चौथाई धान होना चाहिए। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आप रोटी सब्जी अलग करें, दाल चावल अलग करें या साथ में करें। प्रॉब्लम ये आती है या दिक्कत ये आती है जब आप उसका प्रमाण बदल देते हो। अगर आपकी थाली में रोटी सब्जी है मगर आप सब्जी को अचार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, और दाल चावल है मगर आप दाल को अचार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो कम मात्रा में,
1: जी जी,
0: तब आपकी थाली का संतुलन बदल जाता है। और 90% लोगों का यही इशू होता है कि उनकी थाली में आधे से ज्यादा धान होता है, एक छोटी मात्रा में सब्जी होती है और बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है।
1: जी, खाने का सही तरीका बहुत जरूरी है, और जिसको पित्त की समस्या, एसिडिटी की समस्या हो, तो उसे तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत गलत फहमी है लोगों में कि कब क्या खाएं, दो भोजन के बीच में कितना गैप होना चाहिए।
0: इसका कोई एक सरल फॉर्मूला तो है नहीं, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। किसी किसी को दिन में 3 बार खाने की आदत होती है, किसी को 5 बार खाने की आदत होती है। मुझे ऐसे लगता है, और मैं हमेशा पेशेंट्स को भी यही बताती हूँ कि आपकी जो जिंदगी है, आपका जो रूटीन सेट है, आप उस तरीके से काम करो। अगर आप 3 बार खाते हो 3 बार खा लीजिए, मगर ये देखिए कि वो आहार संतुलित हो। अगर हम बात करें भूख की, दिक्कत ये है शहर में आजकल लोगों को यही समझ नहीं आता भूख कब लग रही है और प्यास कब लग रही है। बस 1 बज गया है तो अभी लंच करने जाना है, ये समझ में आता है। तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को समझना जरूरी है कि मुझे भूख कब लग रही है, मुझे प्यास कब लग रही है।
1: तो क्या जब भूख लगे तभी खाना चाहिए?
0: ऐसा जरूरी नहीं है, शरीर को जरूरत है उसकी समझे, और आप अपना रूटीन सेट करें उस हिसाब से। मैं ये कहूंगी पहले तो रूटीन सेट करिए और उस वक्त पे आपके बॉडी को ट्रेन करिए कि आपको उस वक्त पे भूख लगे, मगर भूख लगना उस वक्त पे जरूरी है। बस 1 बजा है इसके लिए मुझे खाना है, ये नहीं होना चाहिए। मुझे 1 बजे भूख लगनी चाहिए क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ये होना चाहिए। जब आपको भूख लगेगी, वही अनाज वही थाली आपको अच्छे से, शरीर आपका उसको एब्जॉर्ब करेगा। आपके 2 खाने के बीच में कितना गैप होना चाहिए ये निर्भर करता है आप कितनी मात्रा में खाते हो। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग क्वांटिटी में ज्यादा खाते हैं, खाने की मात्रा उनकी ज्यादा होती है, और कुछ लोग होते हैं जो एक वक्त पे 1 रोटी या 2 रोटी के ऊपर नहीं खा सकते। जो कम खाते हैं उनको कई बार थोड़े थोड़े अंतर पे खाना जरूरी है। तो 2-3 घंटे के अंतर पे आप थोड़ा थोड़ा खा लेंगे अच्छा रहता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी खाने की मात्रा ज्यादा है तो आप दिन में 3 बार खा लोगे, आप ठीक रहोगे। अगर आपको जैसे एसिडिटी या गैस की दिक्कत है तो आपको थोड़ा थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। आपको ब्लड शुगर की इश्यू है तब भी आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए ताकि आपका शुगर स्टेबल रहे। अगर आप दिन में 3 बार खा रहे हो जस्ट इसलिए कि अभी ट्रेंड चल रहा है दिन में 1 बार खाने का, आप डायरेक्टली 3 से 1 पर आ गए, वो दिक्कत करेगा।
1: जी जी, अभी 2 टाइम का भी
0: बहुत ज्यादा
1: कि सिर्फ 2 टाइम खाना खा रहा है। यहाँ पर एक जरूरी बात जहन में आई है, वो ये कि कई बार लोग एक साथ खाना खाने बैठते हैं तो सलाद भी रख लिया, दही भी रख लिया, फल भी रख लिया काट के, और पूरी थाली भी। तो क्या फल और खाना एक साथ खाना चाहिए या उसे बीच में गैप देना चाहिए?
0: हमेशा मुझे ऐसे लगता है कि फल ऐसी चीज है जो हमारे पूरे खाने में, हम उसे बिना पकाए खाते हैं।
1: जी जी,
0: तो उसे ऐसे वक्त पे खाएं जहां आप उसका मजा अलग से ले पाए।
1: जी,
0: जहां पका हुआ खाना जा रहा है वहां पे वो होना चाहिए। सलाड आपके खाने में जा सकता है, वो कच्चा होता है, मगर सलाड हर किसी को सूट करता है ऐसा नहीं है। इसका मतलब कच्चा खाना सबके लिए है नहीं।
1: जी जी बिल्कुल,
0: आपकी सेहत के हिसाब से, आपके पेट कैसा काम कर रहा है उस हिसाब से आपका सलाड पका हुआ हो या कच्चा

होना चाहिए ये देखना आपको जरूरी होता है। फल आपको हमेशा अलग से ही खाने होते हैं और कभी भी फल के साथ आपके नट्स जाने चाहिए। अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लें कि नॉर्मली लोग 8-9 बजे नाश्ता कर लेते हैं, 1 बजे खाना खाते हैं और जो रात का खाना होता है वो अक्सर 8-10 बजे चला जाता है, तो आपके दोपहर के खाने और रात के खाने में बहुत बड़ी गैप हो जाती है। तो ऐसे वक्त पे इसके बीच में वहां पे फल और आपका जो नट्स है वो

0: गैप हो जाती है. तो ऐसे वक्त पे इसके बीच में वहां पे फल और आपका जो नट्स है वो बहुत आसानी से इस्तेमाल हो सकता है. अभी आपको ये भी देखना है कि 5 से 7 के बीच में ही आपको समोसे चाट की जरूरत पड़ती है. तो वो भूख लगने के पहले और आपके दोस्त आपको बताने के पहले कि चलो हम जाके समोसा खाते हैं, उस वक्त पे आपका फल और नट्स खा लीजिए और आपकी सेहत बढ़िया रहेगी.
1: जी जी. एक गाना सुने
0: जी.
1: कौन सा?
0: क्यों ना ये जीवन है, पिया का घर.
1: जी, इस जीवन का यही है रंग रूप.

0: होना चाहिए क्योंकि वो आपको तकलीफ दे रहा है। बाकियों को गेहूं से दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है, कि आप गेहूं कौन से तरीके का यूज कर रहे हो ये देखिए।
1: जी जी,
0: जिसमें आपके पास खपली गेहूं है जो सबसे बेहतर है, उसके बाद आपके पास अलग अलग तरीके के गेहूं हैं, आप कौन सी वैरायटी यूज कर रहे हो ये भी देखिए, और उसमें आप जो गेहूं के ऊपर का छिलका होता है, ब्रान होता है, वो इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं खाने में, रोटी में, ये देखिए आप सही रहोगे। रोटी गलत नहीं है, रोटी हर किसी को तकलीफ देती है ऐसा भी नहीं है। अगर हम ज्वार बाजरा की बात करें, मिलेट्स बहुत ज्यादा चर्चा में है एक दो सालों से, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मिलेट्स हम पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं अपने देश में, आज उसकी मात्रा बहुत बढ़ गई है, मगर लोगों को उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आज भी नहीं आता। ये जो मिलेट है या मोटे अनाज है, ये बहुत बार आप देखोगे थोड़े सूखे या ड्राई टेंडेंसी के होते हैं, ये कम खाएंगे तब भी आपको एकदम ऐसे लगेगा कि भरा भरा पेट लग रहा है या पेट बहुत टाइट हो रहा है, या आप और एक ज्वार की रोटी के ऊपर नहीं खा सकते। अच्छे हैं मगर वो भी सही मात्रा में आपके दिन में होने चाहिए, ऐसा ना हो कि आपको थायराइड जैसा इशू हो और आप पूरी तरीके से मिलेट्स पे रह जाए, आपको दिक्कत होगी। तो एक संतुलन गेहूं और मिलेट्स के बीच में रखना, चावल के बीच में रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो संतुलन जमा लिया तो आपका पेट सही रहेगा। दूसरी चीज मुझे ये हमेशा दिखती है कि कुछ लोग जो होते ना आंकड़ों के पीछे पड़े रहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि उनकी प्लेट में उनको या थाली में उनको दो रोटी चाहिए होती है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो गेहूं की है, ज्वार की है, बाजरा की है। अभी ये दिक्कत है कि एक फुल्का या एक रोटी जो है 20 से 30 ग्राम आटे की बनती है, और एक ज्वार की रोटी जो है 50 से 60 ग्राम आटे की बनती है।
1: बिल्कुल।
0: तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपने ज्वार बाजरा जो भी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में खा लिया, जहाँ की आप रोटी एकदम हल्के फुल्के में काम चला लेते हैं,
1: तो पाचन पर असर पड़ेगा।
0: जी, तो ये लोग सोचते ही नहीं है क्योंकि ये उन्होंने कभी उस तरीके से सोचा ही नहीं है। तो ये आपको देखना जरूरी है कि आपकी पाचन क्रिया कैसी है, आपका पेट कैसा है, क्या आप मिलेट्स को डाइजेस्ट कर पा रहे हो, और अगर आप मिलेट्स को आपके खाने में रोजमर्रा की जिंदगी में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो या डालना चाहते हो, आप किस तरीके से डाल रहे हो।
1: जी,
0: आप अगर मिलेट्स बिल्कुल भी नहीं खा रहे तो तुरंत से पूरे हफ्ते मिलेट्स ना करें, हफ्ते में एक दो बार करें, फिर तीन चार बार करें, धीरे धीरे मिलेट्स की आदत लगाएं। और ज्वार बाजरा नाचनी के आगे भी हमारे पास धान है, उसका भी इस्तेमाल करें, जैसे कोड़ो हो गया, कांग हो गया, पोर्सो हो गया, महाराष्ट्र में वरी हो गया, ये सारे भी तो धान हैं, वो भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। सूडो मिलेट्स हैं जैसे कि किनुआ हो गया, कुट्टू हो गया, बकवीट जिसे बोला जाता है। किनुआ को तो हिंदी मराठी नाम है नहीं, किनुआ को किनुआ ही बोलते हैं।
1: सावा
0: नहीं, सामा है जो कि होता है महाराष्ट्र में वरी, बानियार्ड मिलेट।
1: जी जी,
0: तो
1: जी।
0: ये सारी चीजें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। हमें सिर्फ रोटी और उसके आगे ज्वार बाजरा नाचने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है, हमें बस कुछ चीजें पता नहीं है और कुछ चीजें हमें इस्तेमाल करनी नहीं आती। तो आप सही तरीका सीख लो तो हो जाएगा। जब भी आप मोटे धान की बात करें और आप अगर अक्खा धान यूज कर रहे हैं तो उसको अच्छे से 4 से 6 घंटे भिगो के रखना बहुत जरूरी है, और सही मात्रा में पानी डाल के उसको पकाना बहुत जरूरी है। उसके साथ आप किस तरीके की सब्जी खा रहे हो, अगर आप मोटा धान इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके साथ जो सब्जियों में पानी का अंश ज्यादा होता है, जैसे दूधी हो गया, कद्दू हो गया, पेठा हो गया, इसका इस्तेमाल ज्यादा करें, तो वो आपका सूखी रोटी और उसके साथ गीली सब्जी, ये थोड़ा सा बैलेंस आपके पेट के लिए बहुत अच्छा ठहरता है।
1: अच्छा, क्या बात है।
0: तो ये थोड़ा संतुलन आपको समझना चाहिए और आपको धीरे धीरे अपने खाने को उस तरीके से बदलना जरूरी है।
1: एक गाना सुने।
0: जी,
1: कौन सा
0: आप भी बता दीजिए कोई गाना।
1: सुनते हैं ये गाना।
2: एक बार

0: और कुछ लोगों का ये भी मानना है रोटी के मामले में कि गेहूं की रोटी नहीं पचती है, देर से पचती है, और मोटा अनाज ज्वार बाजरा और नाचनी, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
1: अगर हम गेहूं की बात करें, एक ट्रेंड चल रहा है जहां पे लोग बोलते हैं कि गेहूं बहुत बुरा है। गेहूं हर किसी के लिए बुरा नहीं है। अगर आपको एलर्जीज हैं या आईबीएस आईबीडी जैसे कोई मेडिकल कंडीशन है तब आपको, या आप गेहूं जब भी खाते हो आपको थोड़ी बहुत डाइजेशन की इश्यू होती है, गैस की इश्यू होती है, तब गेहूं दिक्कत दे रहा है आपको और तब आपको उसको अवॉइड करना चाहिए।
0: तो
1: मतलब आपकी थाली में गेहूं नहीं होना चाहिए या कम मात्रा में।

0: जो आप धान की बात कर रही थी, धान में ये सारी चीजें आती हैं। धान में सिर्फ वो चावल जो हम रोज खाते हैं वो नहीं, हाँ। बल्कि कोदो और जो नाम
1: बहुत ज्यादा है। और आप अगर चावल की ही बात करें तो भारत ऐसा देश है जहाँ हमारे पास 150-200 तरीके के चावल है।
0: बिल्कुल,
1: मगर हम एक ही चीज जानते हैं,
0: खुशबूदार
1: सफेद चावल।
0: बिल्कुल,
1: खुशबूदार चावल, बासमती चावल, इतना ही जानते हैं। थोड़ा हमारे जो चावल के अनाज है जो हमारे पास है, जैसे आंबे मोहर है, मट्टा है केरला का, या असम का ब्लैक राइस है, जो आपके यहाँ है, या कृष्ण कमोद है, आप वो चावल का इस्तेमाल करें। ब्राउन राइस आता है, मगर उससे अच्छा हमारे पास बहुत सारे चावल है। अनपॉलिश्ड वैरायटी का चावल इस्तेमाल करें, या सेमी पॉलिश्ड वैरायटी इस्तेमाल करें। बहुत खुशबूदार, बहुत फ्लेवरफुल चावल आते हैं हमारे पास। सफेद चावल में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं रहता है। अच्छा। उसका सब कुछ निकाला हुआ होता है, बस हल्का सा बी विटामिन आपको मिल जाएगा, बाकी सब वो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट है।
0: क्या बात है, बहुत सही जानकारी आपने दी है। पहले ग्रामीण इलाकों में आज भी
1: वही
0: धान को उबालकर चावल बनाया जाता है, वो उसको उसना चावल कहते हैं।
1: हाँ, हमारे यहाँ उकड़ा तांदूल बोलते हैं। हाँ। महाराष्ट्र में जहाँ हम वही राइस को यूज करते
0: जी,
1: हैं
0: जी, जी।
1: जिसमें अच्छा ब्रान भी होता है, वाइटामिन भी होते हैं। हाँ। वो मोटा होता है तो आप कम भी खाते हो।
0: अदिति जी, बहुत जरूरी मुद्दा है आजकल तेल के बारे में, कि पुराने जमाने में तो हम सबको याद है कि सरसों का तेल सब्जियों में इस्तेमाल होता था, और कुछ जगहों पर नारियल का तेल, साउथ में खासतौर से अलग अलग जगहों पर, और आजकल तरह तरह के तेल हैं, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सनफ्लावर, राइस ब्रॉन। तो बताइए कि कौन सा तेल सब्जियों के लिए सही होता है इस्तेमाल करना।
1: आप जिस जगह रहते हो उस जगह आपके आजू बाजू में कौन से पेड़ ज्यादा है, उस हिसाब से उस इलाके में वो तेल ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट की बारे में बात करें तो वहां पे आपको सरसों का इस्तेमाल ज्यादा मिलेगा। महाराष्ट्र की बात करें या साउथ की बात करें तो नारियल का तेल ज्यादा मिलेगा। आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है तो ये सारे तेल अभी हम सबको मिल रहे हैं। कोई तेल बुरा हम नहीं बोल सकते, हर तेल अपने तरीके से सही है। किसी के लिए वो अच्छा हो सकता है, किसी के लिए वो बुरा हो सकता है। मुख्य क्या होता है कि आपके खाने में तेल की मात्रा कितनी है। आप अगर आपके खाने में, जैसे एक इंसान को पूरे दिन में तेल की मात्रा 3 से 4 चम्मच रखनी चाहिए।
0: ओहो,
1: छोटे चम्मच, 5 ml के चम्मच, उसके ऊपर नहीं
0: जी।
1: मगर हम कभी गिन के थोड़ी ना तेल इस्तेमाल करते, अंदाजे से। भिंडी की सब्जी को थोड़ा ज्यादा तेल डाल दिया।

0: कोई पत्ते की सब्जी है तो उसमें कम तेल डाल दिया, हम स्वाद अनुसार तेल इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। अगर हम तेलों की बात करें कि कौन सा सबसे अच्छा होता है, सबसे पहले आप देखिए कि आपको मेडिकल इश्यूज है या नहीं। कुछ मेडिकल इश्यूज में कुछ तेल हम मना कर देते हैं, बाकी केस में अगर आपको कोई इश्यूज नहीं है, आप सेहतमंद है, आपको बस आपकी तबीयत का ख्याल रखना है, तो इसका सिंपल तरीका यह है कि आप पारंपरिक तौर से आप जो तेल खा रहे हो उसका इस्तेमाल करें, बाकी तेल भी अपने रूटीन में रखिए, उसको थोड़ा सा साइकिल करें। मतलब अगर एक महीना आप सरसों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा फिर राइस ब्रैन को लेकर आए, फिर आप सरसों पे चले जाए, फिर सनफ्लावर का इस्तेमाल करें, ऐसे थोड़े आप बदलाव लेकर आ सकते हैं। आखिर में आपकी तेल की मात्रा कितनी है ये मायने रखता है
1: जी।
0: कुछ तेल होते हैं जिनको बहुत बुरा नाम पड़ा है, जैसे पाम ऑयल है, क्योंकि ये ज्यादा करके पैकेज फूड बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो हाँ, ये बुरा है क्योंकि उसकी जो गुणधर्म है वो आपको तकलीफ दे सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप पैकेज फूड और प्रोसेस फूड कितना खा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: आखिर में गिन के आप पूरे दिन में तेल कितना खा रहे हो, और तेल भी दो तरीके से हम देखते हैं। नॉर्मल लोग सिर्फ तेल को गिनते हैं, हम डाइटिशियंस दो तरीके से देखेंगे, विजिबल सोर्सेस जो कि दिखते हैं, मतलब आपका तेल, घी, बटर, चीज, और दूसरा होता है इनविजिबल सोर्सेस, मतलब दूध में से आने वाला फैट, आपके नट्स में से आने वाला फैट, ये भी तो जरूरी है।
1: जी जी।
0: तो अगर आप पूरे दिन में दो मुट्ठी ड्राई फ्रूट ही खा रहे और आपकी सब्जी तेल में तैर रहे हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो आप ज्यादा तेल खा रहे हो, आपको तकलीफ होने ही वाली है। आखिर में तेल की मात्रा कितनी है वो ज्यादा मायने रखती है, और अपने तेल को बदलते रहिए। कौन सा तेल अच्छा है, क्या केमिकली रिफाइंड तेल अच्छा है, फिजिकली रिफाइंड अच्छा है, वुड प्रेस्ड अच्छा है, कोल्ड प्रेस अच्छा है, तो फिजिकली रिफाइंड या घानी, वुड प्रेस, कोल्ड प्रेस, ये अच्छे हैं। जितना हो सके केमिकल जो फिल्टर्ड होता है वो थोड़ा सा दूर रखें। अगर शहर में रह रहे हैं या आपको दिक्कत है, आपको एक्सेसिबिलिटी या फाइनेंस का इश्यू है, तो आप जो भी तेल मिल रहा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियली अफोर्डेबल है तो घानी का तेल, कोल्ड प्रेस ऑयल, वुड प्रेस ऑयल, इसकी तरफ थोड़ा सा मुड़ जाइए। वो तेल थोड़ा सा गाढ़ा भी होता है, तबीयत के लिए भी अच्छा होता है, और उसमें गुणधर्म भी अच्छे खासे होते हैं।
1: जी जी।
0: तो
1: जी,
0: वो इस्तेमाल आप कर सकते हो।
1: जी बिल्कुल। घानी का तेल, यानी जो कोल्हू के बैल से निकाला जाता है ताजा तेल, सरसों का तेल खास तौर से होता है। एक गाना सुनते हैं यहाँ पर
0: जी।

0: और घी के बारे में भी बताइए। घी के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां, लोग चुपड़ के घी खाते हैं कुछ लोग कहते हैं कि अरे इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, घी खाते ही नहीं। तो घी क्या है बताइए।
1: घी भी फैट का एक ही रूप है। आप तेल खाओ, घी खाओ, बटर खाओ, चीज खाओ, उसके रूप अनेक है।
0: अच्छा।
1: आखिर में मात्रा आपकी मैटर करती है, जो कि मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि दिन में आपकी 3 से 4 चम्मच तेल होना चाहिए, उसमें घी भी आता है। आप 4 चम्मच घी इस्तेमाल करना चाहते हो या उसमें से 1 चम्मच घी इस्तेमाल करना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। क्या घी खाने से फायदा है? हाँ, पेट के लिए अच्छा है, तबीयत के लिए अच्छा है। आप वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हो तब भी आपको फायदेमंद ठहरेगा। अगर आपको ब्लॉकेज इश्यूज है, हार्ट इश्यूज है, या आपको कोई मेडिकल बाकी के कंडीशन है, तो आपको घी को थोड़ा कंट्रोल में रखना जरूरी है। अगर आप घी नहीं खाते हो, क्या आपको कोई नुकसान है? नहीं, बिना घी खाए भी आप अच्छे खासी जिंदगी निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको घी खाना जरूरी है जिंदगी में। तो आखिर में आप कितनी मात्रा में खा रहे हो, ये महत्वपूर्ण है।
0: जला हुआ घी नहीं खाना चाहिए पराठे के रूप में
1: जी,
0: पूड़ी और पराठे के रूप में
1: बहुत ज्यादा।
0: अदिति जी, घी तेल सब कुछ शामिल हो गया और हर खाने में मिठाई भी शामिल होता है। कुछ लोगों के साथ तो ये दिक्कत है कि हर खाने के बाद उनको मीठा चाहिए, तलब होती है। तो ये मिठाई के खाने के बारे में बताइए कि खाने के बाद, खाने के साथ खाना जरूरी है, खाने से पहले या बाद में, या नहीं खाना चाहिए?
1: अगर आप मिठाई खाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिठाई की जरूरत नहीं है। शक्कर कम खाने से आपकी शक्कर कम नहीं होने वाली। मिठाई भी शक्कर का ही एक अलग रूप है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं। अगर आपके पूरे दिन में आपके आहार में कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण बहुत ज्यादा है तो मिठाई उसे और बढ़ाएगा। और मिठाई जो है छोटा बम बड़ा धमाका है।
0: तो
1: छोटे से बाइट में बहुत ज्यादा कैलोरीज होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फैट भी होता है और उतनी ज्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाते हैं। तो क्या मिठाई जरूरी है? नहीं। अगर आप मिठाई हर खाने के बाद खाना चाहते हो तो ये आपको कम करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आपकी तबीयत के हिसाब से। तो एकदम से अचानक से अगर आप बंद नहीं करना चाहते, पहले तो दिन में एक ही बार कर लीजिए और फिर उसी मिठाई के थोड़े से हेल्दी रूप थोड़े से देख लीजिए। जैसे आपको खजूर मिल जाएगा, या आपने थोड़ा चना और गुड़ ले लिया, या आपने छोटा चिक्की का टुकड़ा ले लिया, आप इसका इस्तेमाल करें, ना कि गुलाब जामुन या और कोई तली हुई मिठाई, मावा जलेबी, इसका इस्तेमाल करें। जैसे मैंने कहा, आखिर में पूरे दिन में आपने कार्बोहाइड्रेट कितने खाए हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग जो है खाने में भी शक्कर और गुड़ का इस्तेमाल बहुत करते हैं, तो मतलब आप चाय में शक्कर गुड़ खा रहे हैं, आपके खाने में गुड़ और शक्कर जा रहा है, और फिर आपकी मिठाई में भी शक्कर है। तो आपने यहाँ फॉर्मूला बना लिया आपका ब्लड शुगर बढ़ाने का।
0: जी जी।
1: इससे आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा क्योंकि आप हर जगह पे मिठाई खा रहे हो। अभी कुछ लोग बोलेंगे हमें तो ब्लड शुगर नहीं है।

0: हम तो जिंदगी भर खा रहे, अच्छी बात है, हो गए, आपकी तबीयत उतनी अच्छी है, हो गया, मगर क्या ये हर कोई कर सकता है? नहीं, वो हर किसी को तकलीफ दे सकता है
1: जी।
0: तो मिठाई भी आखिर में आपको ये देखनी है कि क्या ये मेरे को फायदा देने वाली है। आज के टाइम में हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मिठाई आ रही है जो कि आपकी तबीयत को भी संभाल सकती है और मीठे की क्रेविंग को भी संभाल सकती है, जैसे डार्क चॉकलेट हो गया, या आप छेना इस्तेमाल करो, रसगुल्ले का छेना वो आप यूज करो,
1: खीर घर में बना के।
0: खीर भी आखिर में दूध और शक्कर ही आई, और उसमें अगर आपने साबुदाना डाल दिया तो खत्म, तो आपने एकदम एकदम ऐसा फॉर्मूला बना दिया जहाँ पे शुगर बढ़ जाएगा। तो ये कितने मात्रा में खा रहे, पूरे दिन में कितनी शक्कर गुड़ जा रही है, और ओवरऑल आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कितना है, इस पे निर्भर करेगा कि क्या आप मिठाई खा सकते हो या नहीं। दूसरी चीज ये होती है कि बहुत ज्यादा मीठा खाने से ना कुछ लोग कई सालों तक उनको आदत होती है मीठा मीठा खाने की, कार्बोहाइड्रेट खाने की, इसकी वजह से उनकी टेस्ट बड्स जो है ना वो भी थोड़े चेंज हो गए, उनको हर चीज उस तरीके से टेस्ट नहीं आती, तो जब वो मिठाई थोड़े दिन के लिए निकाल लेते हैं तब उनको वही मिठाई कितनी मीठी है वो पता चलेगी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो मिठाई बिल्कुल नहीं खाते हैं, वो फटक से बोलेंगे आपकी एक चम्मच शक्कर भी बहुत ज्यादा है, वो क्यों बता पा रहे हैं? क्योंकि उनके टेस्ट बड अभी वापस ट्रेन हो गए कि जो निसर्ग में जो चीजें जैसी हैं वो उनके फ्लेवर्स का मजा उस तरीके से ले ले, तो हमें उस चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है।
1: मतलब ये भी है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम खाना कम खा लें, मिठाई ज्यादा खा लें,
0: हाँ,
1: तो वो भी ठीक नहीं है।
0: ठीक नहीं है
1: क्योंकि मीठा तत्व तो आपके हाँ, शरीर में जा रहा है।
0: कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, डाइट भी कर रही हूँ, मगर वेट लॉस नहीं हो रहा है या मेरी शक्कर कम नहीं हो रही है, तभी भी अक्सर गुनहगार वो मिठाई ही होती है।
1: बिल्कुल। तो अब इस मिठाई के साथ ही मीठी मीठी बातों को हम विराम दे रहे हैं। अदिति जी, बड़ी ढेर सारी जानकारी आपने साझा की हमारे श्रोताओं के साथ, एक गाना सुने
0: जी। चीनी

पोषण माह के उपलक्ष्य में सेहतनामा कार्यक्रम में आज आपने सुना न्यूट्रिशन अर्थात पोषण। इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और

न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग मिला मंगेश सांगले से। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
3: मेरा साया साथ होगा।
0: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

छाया गीत में आज मैं लेकर आया हूँ ऐसे नगमे जिनके दो संस्करण हैं, एक पुरुष आवाज में, दूसरा महिला आवाज में। हमने इन दोनों संस्करणों को किसी मोड़ पर आपस में जोड़ दिया है। नमस्कार, यूनुस खान की ओर से। अंधेरा, घना अंधेरा, आंसू, सर्द आंसू, तन्हाई, बेपनाह तन्हाई, एक सजा है तन्हाई, एक जुल्म, एक मुश्किल।

उदास नगमे। क्यों अच्छे लगते हैं सबको ये उदास नगमे? क्यों मुकेश की उदास आवाज हमारी तन्हाइयों की साथी है? क्यों हम तन्हाई में थाम लेना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज का दामन? दो उदास नगमे, दो उदास मौसम।

एक चेहरा, एक मिजाज, एक शख्सियत कैसे बयां करें कुछ अल्फाज में। शब्दों के मायने छोटे लगने लगते हैं और हर बार हमें लगता है पूरी तरह हम नहीं कह पा रहे अपनी बात।

दुनिया की दो अलग अलग छोर, इन अलग अलग हिस्सों में पले लोग बने होते हैं एक दूसरे के लिए। कितनी अजीब बात है, कहते हैं जिंदगी में इत्तेफाक होते हैं और बहुत खुशनुमा इत्तेफाक होते हैं।

छाया गीत में आज थे दो संस्करणों वाले गाने। इन गानों को हमने किसी मोड़ पर आपस में जोड़ दिया था। फिल्मों के नाम आपको बता दें।

0: दूल्हा दुल्हन इंदीवर कल्याण जी आनंद जी
1: चंदन सबदन चंचल चितवन
0: सरस्वती चंद्र इंदीवर कल्याण जी आनंद जी
1: कभी कभी मेरे दिल
2: ख्याल आता है
0: कभी कभी साहिर लुधियानवी खयाम आज का छाया गीत इतना ही इजाजत दीजिए यूनुस खान को नमस्कार।

0: प्रस्तुति कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।
0: श्रोताओं, आप सभी को विविध भारती परिवार की ओर से गणेश उत्सव, हिंदी दिवस और हरितालिका तीज, इन सभी पावन पर्वों की अनंत शुभकामनाएं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गणेश जी के भजन से। भगवान गणपति आपके जीवन में सुख समृद्धि और सफलता लाएं।

अभी आपने अजय अतुल के संगीत निर्देशन में विरुद्ध फिल्म का गीत सुना, आवाज थी शंकर महादेवन की। अब सुनिए बलमा फिल्म का गीत आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज में, बोल समीर के संगीत नदीम श्रवण का।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सीता और गीता। अब सुनिए इस फिल्म का गीत किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वर में। धुन बनाई है आडिबामन ने, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

अंग प्रति अंग शुभांग सुहावे नैन अधर कटि नृत्य दिखावे।

अभी आपने मोहम्मद रफी को मृग तृष्णा फिल्म में सुना। गीत संगीत शंभू सेन का था। श्रोताओं, हमें खेद है कि समय अभाव के कारण हम आपको ये गीत पूरा नहीं सुनवा पाए। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
1: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं। किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
0: श्री शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: इस अवसर पर राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने मिजो संस्कृति को संरक्षित रखते हुए हिंदी सीखने का आह्वान किया है। उन्होंने आज आइजोल में हिंदी दिवस समारोह में ये बात कही। अमेरिका के एक विश्लेषक ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणापत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कोगेलमैन ने कहा कि ये घोषणापत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करने और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा का निर्बाध प्रवाह बनाए रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। रक्षा मंत्रालय ने वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर स्थिरता आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सेना के अथक प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया

0: भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता बढ़ सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: तराने नए पुराने कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तुम मिले, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। प्रीतम के संगीत निर्देशन में गीत की रचना की है सैयद कादरी ने, आवाज़ के की।

0: la la la la la la la la la la la la la la.
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: अभी आपने लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का गाया आए दिन बहार के फिल्म का गीत सुना। रचनाकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार।

0: एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: अभी आपने जावेद अख्तर का लिखा और आरडी बर्मन का संगीतबद्ध किया सागर फिल्म का गीत सुना। स्वर दे रहे थे किशोर कुमार और एसपी बाला सुब्रमण्यम। इसी के साथ ही तराने नए पुराने कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने।

0: कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने।

भजनों पर आधारित संध्या रंजन कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:35 पर। 7 बजे फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम लेकर आएंगे। इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज की फिल्म है वजूद। रात 8 बजे हवा महल में गिरीश की लिखी नाटिका सुनिएगा दीप शिखा, निर्देशन डॉक्टर अचला नागर का होगा।

रात 10 बजे छाया गीत प्रस्तुत करेंगी सलमा सैयद। 10:30 पर ढलती जाए रात और रात 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल के मुख्य कार्यक्रमों पर। सुबह 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम जागो सुबह हो गई। संगीत संहिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। कलाकार होंगी गायिका डॉक्टर शकुंतला भरने। कल आप सुनेंगे इसका 15वां भाग। समय सुबह और शाम 6:45 पर। पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे सुबह 7 बजे हम है राही प्यार के 7:30 पर। त्रिवेणी का प्रसारण समय होता है सुबह 8:15 पर और पुनः प्रसारण दोपहर 2 बजे। नए फिल्मी गाने आप सुनते हैं सुबह 8:30 पर और रात 8:15 पर। आज के फनकार कल ही कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार प्रसून जोशी पर। इसे आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर और पुनः प्रसारण रात 9:30 पर। रंग तरंग आप रोजाना सुनते हैं दिन में 11 बजे। यादों की महफिल सजेगी दिन में 12:05 पर। आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर आएंगे दिन में 1 बजे। सदाबहार नगमे सुनिएगा दोपहर 2:30 पर। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे में अभिनेता कवलजीत से सविता बजाज की बातचीत सुनवाई जाएगी। तराने नए पुराने कार्यक्रम होगा शाम 5:30 पर। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस कार्यक्रम होगा। रात 8 बजे हवा महल में मोहम्मद शफी की लिखी झलकी सुनिएगा बेढब पड़ोसी। रात 10 बजे छाया गीत प्रस्तुत करेंगी ममता सिंह।

अभी आपने दिव्य कुमार का गाया भक्ति गीत सुना, संगीत काशी कश्यप का था, बोल मुकेश मिश्रा के। अब सुनिए अग्निपथ फिल्म में अजय का गाया गीत, भक्ति गीत है ये, संगीत है अजय अतुल का, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के।

अभी आपने अजय अतुल का संगीतबद्ध किया गीत सुना, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के थे, फिल्म का नाम था अग्निपथ। संध्या रंजन कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए अब सुनते हैं इस श्रृंखला की 14वीं कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना श्रृंखला की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। और स्टूडियो में हमारे साथ हैं जानी मानी शास्त्रीय गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे जी। शकुंतला जी, किराना घराने के बहुत से गायकों ने सुबद्ध संगीत या उपशास्त्रीय संगीत जिसे कहते हैं लोकप्रिय किया है गा करके, तो खासतौर से ठुमरी और दादरा जो हम सुनते अलग अलग गायकों की आवाज में, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे।
2: जयंत जी,
1: जी
2: किराना घराने की ठुमरी है
1: जी,
2: जो ठुमरी बाकी नॉर्मल ठुमरी से थोड़ी अलग है।
1: अच्छा,
2: वैसे डायरेक्ट ठुमरी अगर आपने बोला तो उपशास्त्रीय अथवा सुगम शास्त्रीय संगीत में राग और शब्द को समान महत्व आता है। और इस घाट में विशिष्ट स्वर वाक्य में बंदिश के शब्दों में सौंदर्यपूर्ण गुम्फन करके शब्द का अर्थ और उसका भाव अधिक स्पष्ट करना और उसका जो गान प्रकार है उसका यही उद्देश्य है।
1: हाँ।
2: और राग तो दिखाई देता है लेकिन कभी कभी उसके अर्थ के कारण राग का नियम एकदम काटेकोर ऐसा पाला नहीं जाता है,
1: सटीक तरीके से उसका पालन नहीं होता।
2: शब्दों का भावनिक आशय समृद्ध करने के लिए
1: जी, जी।
2: राग के बाहर के स्वर लाए तो उसमें कुछ हमने गैर किया ऐसा नहीं होता है।
1: अच्छा,
2: उपशास्त्रीय गान में शब्दों को भी महत्व है उतना ही जितना स्वर को भी है
1: जी।
2: स्वर वाक्य शब्दों का हाथ पकड़ के ही आता है। बोल बनाओ और बोल बाट
1: जी,
2: ये इस स्वर वाक्य का एक अलग विशिष्टता है। बोल बाट यानी क्या, लय के अंग से जो आती है ठुमरी वो बोल बाट।
1: हाँ।
2: बोल बनाओ यानी स्वर के अंग से आती है ये ठुमरी।
1: अच्छा,
2: ठुमरी है तो थोड़ी संत गति भारदस्त उसका स्वर लगाओ, और दादरा अगर है तो थोड़ा सा चंचल और खेल करी ऐसा होता है
1: जी। जी,
2: इस घाट के एक प्रस्तुति में आलाप के माध्यम से शब्दों को पकड़ के
1: जी,
2: उसको पकड़ के आने वाले स्वर वाक्य और इस्तेमाल हम करते हैं, इसके कारण तान सरगम इत्यादि प्रकार को यहाँ कुछ भी वाव नहीं है।
1: अच्छा,
2: राग जब दूसरा स्वर ठुमरी में आता है राग का अलग का स्वर
1: जी,
2: तो हम धीरे से इसको अंदर आने देते हैं।
1: अच्छा,
2: और उसको हम मिश्र कहते हैं, मिश्र गारा।
1: हाँ।
2: ऐसा करके वो उसको अंदर लेता है और
1: जी, जी, जी, जी।
2: उस अंग से अंदर आता है। सुगम और शास्त्रीय प्रकार सादर करते समय आवाज का जो पोत ढंग जो हमें बदलना पड़ता है
1: जी, जी।
2: शब्द फेंक विशिष्ट पद्धति में करनी पड़ती है। स्वरोच्चार और स्वर बांधनी ये भी अलग ढंग से करनी पड़ती है। इसीलिए आलाप ख्याल का और ठुमरी का ये बात सुनने वाले के समझ में आते है, ठुमरी है या आलाप है। ये नॉर्मल ठुमरी का ये जो हो गया
1: जी, जी, जी।
2: अभी किराना वाली ठुमरी और इसमें क्या फर्क है ऐसा आप अगर पूछे, भाव प्रधानता स्वर प्रधानता ये किराने घराने की ठुमरी की एक अभिव्यक्ति दिखाने की विशेषता है।
1: जी, जी।
2: शुद्ध मधुर और सुरीले स्वरों का प्रयोग जो होता है इसी घराने के प्रमुख विशेषता से ये भाव आया हुआ है।
1: अच्छा,
2: धीमी गति से प्रस्तुत की

0: गई ठुमरी
1: जी,
0: उसका गायन अपेक्षाकृत शांत संयमित शैली में किया जाता है, जिससे भाव स्पष्ट रूप से उभरते हैं। कर्ण स्वरों का प्रयोग, मेंड स्वर, कर्ण स्वर, मुरकी तथा सूक्ष्म स्वर लगाओ, जो सब हमारे किराने घराने की शैली है
1: जी।
0: किराना घराने में मुख्यतः बोल बनाओ की ठुमरी, यानी गायन के साथ, जिसका अर्थ के साथ, भाव के साथ इसका विस्तार होता है
1: जी।
0: और ठुमरी में गीत के बोलों का भाव जो विस्तार पूर्वक और भावपूर्ण प्रस्तुतिकरण किया जाता है। अभी हम खास ठुमरी सुनेंगे खान साहब अब्दुल करीम खान की, और ये बहुत ही गारा राग में है
1: जी।
0: जादू भरे नैन वो बहुत पॉपुलर है और बहुत ही अच्छी ढंग से गाई है।

0: जयंत जी
1: जी,
0: ठुमरी की प्रस्तुति अत्यंत मधुर, कोमल और भावपूर्ण होती है। आपने तो अभी सुन ली
1: जी।
0: इस घराने की ठुमरी में मुख्यतः श्रृंगार और भक्ति रस की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है, वो किराना घराना है।
1: वाह।
0: प्रमुख कलाकार उस्ताद अब्दुल करीम खां, पंडित भीमसेन जोशी, डॉक्टर प्रभात रे, विदुषी माणिक वर्मा, पंडित फिरोज दस्तूर, पंडित सवाई गंधर्व आदि कलाकारों ने किराना घराने की ठुमरी और उसकी विशिष्ट पहचान लोगों तक पहुंचाई है। विशेष रूप से डॉक्टर प्रभा अत्रे ने ठुमरी के सौंदर्य और भाव पक्ष को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्हीं ने गाया हुआ एक बहुत ही अच्छा दादरा है, लेकिन उसका थोड़ा ढंग बदल के मैं गाती हूँ।

0: किराना घराने की ठुमरी में
1: जी
0: तकनीकी चमत्कारी की अपेक्षा स्वर सौंदर्य, भाव अभिव्यक्ति और मधुरता को अधिक महत्व दिया जाता है।
1: जी जी जी,
0: ये तो इसका थोड़ा अनुभव अगर आपको अभी इस दादरा में आया तो पावन हो गई मैं।
2: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, आज आपने सुनी इस श्रृंखला की 14वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

अभी आपने इरफान सिद्दीकी का लिखा और सलीम सुलेमान का संगीत बद्ध किया इकबाल फिल्म का गीत सुना। अब सुनिए अमित मिश्रा का गाया लिखा और संगीत बद्ध किया अतिथि तुम कब आओगे इस फिल्म का गीत।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सपने साजन के लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत मुकुल अग्रवाल और अलका याग्निक के स्वर में। धुन बनाई है नदीम श्रवण ने, बोल लिखे हैं समीर ने।

0: और फिर म्यूजिक डायरेक्टर, पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: इस समय फौजी भाई सुन रहे हैं जयमाला कार्यक्रम। अब सुनिए लता मंगेशकर और शैलेंद्र के युगल आवाजों में बॉबी फिल्म का गीत। तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, बोल विट्ठल भाई पटेल के।

ये थे शैलेंद्र और लता मंगेशकर फिल्म बॉबी में। अब आपको सुनवा रहे हैं उत्तम सिंह का संगीतबद्ध किया और आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज लता मंगेशकर और उदित नारायण की फिल्म का नाम दिल तो पागल है।

दिल तो पागल है। अभी आपने इस फिल्म में लता मंगेशकर और उदित नारायण को सुना। जयमाला कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से अंतराल का।

जयमाला कार्यक्रम में अब सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी कली का गीत, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम राम लखन।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम की अंतिम पेशकश शान फिल्म से गीत संगीत आनंद बख्शी और आडी बर्मन का, आवाज दे रहे हैं मोहम्मद रफी, आडी बर्मन और साथी।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। इंद्रधनुष के अंतर्गत प्रस्तुत है एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है 1998 में प्रदर्शित हुई फिल्म वजूद। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे नाना पाटेकर और माधुरी दीक्षित। इसका निर्देशन, कहानी लेखन और निर्माण एन चंद्रा ने किया था। संगीत अनु मलिक का।

इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज की फिल्म थी 1998 में रिलीज हुई फिल्म वजूद। इस गीत के साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

0: दोस्तों, आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं नाटिका दीपशिखा। लेखक हैं गिरीश।
1: धन्य है देवी ऋषि, धन्य है। तुम्हारी कला ने हमें चकित कर दिया। जी चाहता है देखता ही रहूं तुम्हारा नृत्य, किंतु समय बहुत हो गया है। रात्रि अपने पिछले पहर की तरफ दौड़ रही है। तुम भी थक गई हो, अब जाओ विश्राम करो।
2: जो आज्ञा।

0: कौन है?
1: मैं हूँ उर्वशी, द्वार खोलो सारंग।
2: उर्वशी, तुम इतनी रात को?
1: हाँ, तुम अब तक जाग रहे हो?
2: हाँ, क्या करता, मध्य रात्रि तक तो नदी तट पर बैठा तुम्हारी बाट देखता रहा, लेकिन तुम्हारी तरफ से निराश हो गया तो कुटिया पर आ गया।
1: मैं जानती हूँ कि मेरी प्रतीक्षा में तुम्हें कितना कष्ट उठाना पड़ा होगा। परंतु करूं भी क्या सारंग, मैं एक नर्तकी हूँ, एक ऐसी नर्तकी जिसे दूसरों को प्रसन्न करने के लिए अपनी प्रसन्नता, आकांक्षा और सुख का बलिदान करना पड़ता है, दूसरों का मनोरंजन करने के लिए अपनी इच्छाओं का गला घोटना पड़ता है।
2: क्यों, ऐसी क्या बात थी?
1: हस्तिनापुर के राजकुमार जो वल्लभीपुर युवराज के मित्र हैं, वल्लभीपुर आए हुए हैं। उनका मनोरंजन करने मुझे राजसभा में नृत्य के लिए बुलाया था। मध्य रात्रि तक तो नृत्य ही होता रहा और उसके बाद कहीं जाके मुझे छुट्टी मिली। वहां से मुक्त होते ही रात्रि के पिछले पहर तुमसे मिलने आई हूं।
2: परंतु देवी, तुम राज्यसभा की नर्तकी हो, वल्लभीपुर के असंख्य युवक तुम्हारी मुस्कुराहट पर अपना सर्वस्व निछावर करने को प्रस्तुत है। राज्य की सुख समृद्धि तुम्हारे पैरों में लौट रही है, उसे ठुकराकर तुमने मुझ में ऐसा क्या पाया जो
1: मैंने पाई है? जीवन की साधना सारंग, जीवन का सुख और मेरी दहकती हुई आत्मा को शांत करने वाली तृप्ति। मैं अपने जीवन से तंग आ गई हूँ सारंग। मैं नहीं चाहती कि मेरा सब कुछ सबके लिए हो, मैं चाहती हूँ मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारे लिए।
2: उर्वशी, उर्वशी, भावनाओं के झंझावात में उड़ने से पहले एक बार फिर सोच लो। मैं अकिंचन हूँ, दरिद्र हूँ, संसार में अकेला हूँ।
1: कुछ भी हो, मैं अपना जीवन तुम्हें समर्पण कर रही हूँ सारंग।
2: उर्वशी।
1: हाँ, मेरी कला आज से तुम्हारी है। जहाँ तुम्हारा संगीत होगा वही मेरी कला होगी सारंग।
2: उर्वशी, तब तो इस दरिद्र कलाकार की एक घास फूस की कुटिया राजमहल बन जाएगी
1: सारंग।
2: परंतु देवी, ये सुवर्ण के आभूषण यहाँ नहीं पहन सकोगी।
1: स्वीकार है सारंग।
2: चांद और सूरज के हथ फूल, तारों की गर्दनी, ओढ़ने के लिए कोहरे की चादर, खाने के लिए धान की बालें, गन्ने और सिंघाड़े, कलाकार की यही तो संपत्ति है उर्वशी। इसी संपत्ति को लेकर जीवन बिताना होगा। बोलो, स्वीकार है?
1: मुझे सब कुछ स्वीकार है सारंग।
2: तो जाओ, एक बार जाकर अपने प्रासाद को नमस्कार करो। वो तुम्हारी कला का मंदिर है, उसी मंदिर में तुम्हारी कला ने जन्म लिया, वहां उसका विकास हुआ और वहीं उसका श्रृंगार हुआ। कल प्रातः सूरज की किरणों पर चढ़कर यहां आना, मैं कुटिया के द्वार पर खड़ा तुम्हारा स्वागत करूंगा।

0: महामात्य।
1: आज्ञा देव।
0: उर्वशी कहाँ है?
1: अपराग क्षमा हो देव, वो आज नहीं आई।
0: नहीं आई? क्या उसे ज्ञात नहीं कि हमारे मित्र यशोवर्मन अभी उसकी कला से तृप्त नहीं हुए? जाओ, उसे तत्काल हमारे

0: उर्वशी।
1: हाँ।
0: आज हम दोनों एक हैं।
1: हाँ, हम दोनों प्रेम कुंज के पंछी हैं सारंग।
0: लेकिन उर्वशी, क्या ये संसार ये सब सहन कर सकेगा?
1: सहन नहीं कर सकेगा। कारण?
0: युवराज का कोप। जब युवराज को ये पता चलेगा कि उर्वशी ने अपनी कला, अपना व्यवहार, अपना जीवन बदल दिया है, तो संभव है कि हम दोनों पर मुसीबतें टूट पड़ेंगी।
2: संभव ही नहीं।
0: महामात्य, आप यहाँ?
2: हाँ, देवी उर्वशी के लिए आना हो।
1: मेरे लिए?
2: युवराज के मित्र हस्तिनापुर के राजकुमार ने तुम्हें अपने निवास स्थान पर बुलाया है, अब भी इसी समय।
1: लेकिन क्यों?
2: वे आज अकेले ही तुम्हारी कला का रसपान करना चाहते हैं।
1: उनसे कह दो कि मेरी कला मर चुकी है, मैं अब राज सभा की नर्तकी नहीं हूँ, उर्वशी हूँ, केवल उर्वशी।
2: उसका परिणाम क्या होगा पता है?
1: मैं जानती हूँ, मैं अमर नहीं हूँ।
2: मैं एक बार फिर कहता हूँ कि हट न करो, वरना तुम और तुम्हारा ये सारंग दोनों
0: बंदी बना दिए जाएंगे, यही ना? पर ये कोई अनहोनी बात नहीं है महामात्य, बंदी तो हम पहले ही बन चुके हैं। हम दोनों आपस में एक दूसरे के बंदी हैं, और प्रेम का बंदी घर वल्लभीपुर के बंदी घर से बहुत विशाल है।
2: अगर ऐसा है तो सैनिकों, बांध लो इन दोनों को।

0: नर्तकी, तुम्हें हमारे मित्र के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करना ही होगा।
1: मैं कह चुकी हूँ महाराज, मैं अपनी कला को सारंग पर भेंट कर चुकी हूँ। जब तक सारंग का संगीत नहीं होगा, तब तक उर्वशी नहीं नाचेगी।
0: तुम्हें नाचना ही होगा उर्वशी। तुम ये न भूलो कि तुम राज रानी नहीं, राज नर्तकी हो, राज नर्तकी, वरना तुम्हें अपना सारा जीवन बंदी घर में बिताना होगा।
2: मान जाओ उर्वशी, अपनी कला को बंदी घर में घुट घुट कर मर जाने से बचाओ। हस्तिनापुर के राजकुमार तुम्हारी कला की पूजा करना चाहते हैं। वो तुम्हारी रूप राज के भी पुजारी बन चुके हैं।
3: आपने ठीक कहा मामात्य देवी, हमें अपनी पूजा करने का अधिकार दो।
1: जो स्वयं किसी की पुजारिन बन चुकी हो, उसकी पूजा? राजकुमार, जिस वस्तु का मैं समर्पण कर चुकी हूँ, उस पर मेरा अब क्या अधिकार?
3: मैं तुमसे प्रेम भी करने लगा हूँ।
1: वो प्रेम नहीं, वासना है। मैं उसे धिक्कारती हूँ। मैं अब उर्वशी या राजसभा की नर्तकी नहीं, एक साधारण बंदिनी हूँ, चिरबंदिनी। मेरे पास आपको कुछ नहीं मिलेगा।
0: मिलेगा, और सब कुछ मिलेगा।
2: मान जाओ उर्वशी, पाषाण हृदय न बनो।
1: निसंदेह मेरा हृदय निर्मल जल का बना हुआ नहीं, जो सभी देखने वाले अपना मुख उसमें देख सके। ये तो पाषाण है पाषाण, और पाषाण पर जो रेखा खिंच गई वो खिंच गई। इस पर जो चित्र अंकित हो गया वो कभी नहीं मिट सकता।
0: वो चित्र शायद सारंग का है। क्यों क्यों है ना?
1: हाँ,
0: तो हम पहले सारंग को ही देखते हैं, हम उसी के चित्र को मिटाते हैं। चित्र क्या, सारंग के अस्तित्व को ही मिटाए देते हैं।

0: मौत से खेलने का प्रयास कर रहे हो सारंग?
1: संसार में कोई अमर नहीं है महामात्य।
0: लेकिन जानते हो तुम्हारी मृत्यु के बाद उर्वशी को कितना दुख होगा?
1: नहीं।
0: अगर तुम अपना भला नहीं कर सकते तो न करो, परस बेचारी उर्वशी के जीवन को क्यों नष्ट कर रहे हो?
1: बहुत अच्छा, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो यही होगा।

कला उन्मुक्त है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गंगा की धारा जिसे कोई नहीं बांध सकता। ठीक है, मुझे उर्वशी से मिलवा दीजिए, मैं उसे समझाता हूं।

0: उर्वशी, तुम लोह श्रृंखलाओं में लिपटी हुई,
1: ये लोह श्रृंखलाएं नहीं सारंग, ये तो फूल मालाएं हैं।
0: नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। अच्छा होता कि तुम्हें इस हाल में देखने से पहले ही राज्याज्ञा से मेरा मस्तक उड़ा दिया जाता।
1: सारंग,
0: उर्वशी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। उर्वशी, कला उन्मुक्त है, स्वतंत्र है और सारे संसार की संपत्ति है। वो कला ही क्या जो दूसरों के हृदय तंत्री के ताल न छेड़ सके। कला किसी एक की संतुष्टि के लिए नहीं, चराचर की तुष्टि के लिए होती है।
1: मैं जानती हूँ सारंग, लेकिन लेकिन मेरी कला पर अब मेरा अधिकार नहीं, तुम्हारा है।
0: कला पर किसी का अधिकार नहीं होता, वो प्रकृति की संपत्ति है।
1: तुम कहना क्या चाहते हो?
0: यही कि अपनी दी हुई भेंट वापस ले लो।
1: क्या कहा?
0: हाँ,
1: दी हुई भेंट वापस ले लो।
0: मैं स्वयं ही तुम्हें वो भेंट कर रहा हूँ।
1: तो मैं कहूंगी कि तुमने मुझे हिमालय की चोटी से गिरा दिया। सारे
0: जो चढ़ता है वही तो गिरता है। उर्वशी, मान जाओ, मान जाओ। अगर राजकुमार का हट यही है तो उनका हट पूरा करो।
1: समझी, मुझे नहीं मालूम था सारंग कि तुम इतने भीरु हो। आज मुझे पता चला कि तुम्हारे लिए संसार में जीवन ही सबसे बड़ी वस्तु है। जीवन के लिए जीने वाले और जीने के लिए कला को बेचने वाले दोनों जा मेरे साथ
0: में। तुमने मुझे समझने में भूल की है उर्वशी। समय बदल सकता है मगर सारंग का हृदय, सारंग की अनुभूति कभी नहीं बदल सकती, कभी नहीं बदल सकती। महामात्य, आपका काम हो गया। मुझे जो कुछ कहना था कह दिया उर्वशी से। उर्वशी अवश्य नृत्य करेगी।
1: ठीक है, आज मैं हस्तिनापुर के युवराज के सामने दीप शिखा लूंगी।

0: वशिनी,
1: जो कुछ किया राज सत्ता ने, उर्वशी की कला जो असंख्य दीपकों में मुस्कुरा रही थी वो आज अमर हो रही है। आज वो जलती हुई दीप शिखाओं में अट्टहास करती हुई राज सत्ता को चुनौती दे रही है कि कला उन्मुक्त है, उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बांध सकता।

हवा महल कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गिरीश की लिखी नाटिका दीपशिखा, निर्देशन अचला नागर का। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सुखविंदर सिंह के गाए गीत से। फिल्म का नाम है बाजीराव मस्तानी। गीतकार प्रशांत इंगोले, संगीतकार श्रेयस पुराणिक और जैकी बंजारी।

ये थे सुखविंदर सिंह फिल्म बाजीराव मस्तानी में। अब आपको सुनवा रहे हैं राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में नासिर फराज का लिखा गीत। फिल्म का नाम है केके। काइट्स फिल्म का गीत है और इसे गाया है केके ने।

अभी आपने कबीर सिंह फिल्म का गीत सुना, गीत और संगीत था मिथुन का। और अब चित्रलोक कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

पति पत्नी और वो, अभी आप सुन रहे हैं इस फिल्म का गीत। आवाजें रोचक अरिजीत सिंह और नेहा कक्कड़ की, संगीत रोहन रोचक कोहली का और बोल कुमार के।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए उर्मिला ढंगर का गाया गीत, तर्ज बनाई है प्रीतम ने, बोल लिखे हैं गुरु ठाकुर ने। फिल्म का नाम फिरारी की सवारी।

फेरारी की सवारी अभी आपने इस फिल्म में उर्मिला ढंगर को सुना, तर्ज बनाई थी प्रीतम ने, वो लिखे थे गुरु ठाकुर ने। इस गीत के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की। कहा, भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। अमरीकी विश्लेषक ने कहा, दिल्ली घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता को दर्शाता है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत

0: प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की और देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा था जब दो बड़े संघर्ष जारी हैं, गहरे मतभेद हैं और विभिन्न देशों के विचारों तथा हितों में काफी टकराव है। इसके बावजूद हम ऐसे वक्तव्य पर सहमति बनाने में सफल रहे जिस पर सभी ने सहमति जताई। इस वक्तव्य में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, दीर्घकालिक आपसी समझ, वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुचारू प्रवाह, ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति तथा नागरिकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का आह्वान किया गया है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
1: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
0: नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल समापन के बाद समूह में भारत के नेतृत्व की कई सदस्य देशों ने तारीफ की है। भारत की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित 2 दिन का सम्मेलन कल संपन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स में 11 बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं जो दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40% हिस्सा है। ब्रिक्स देशों ने शनिवार को सम्मेलन में एकमत से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित दुनिया नेता शामिल हुए। नई दिल्ली घोषणा पत्र में भारत की अध्यक्षता की तारीफ की गई और सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत सरकार और लोगों की प्रशंसा की गई। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पर भारत के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने बेहद सफल सम्मेलन आयोजित किया है। चीन की सरकारी मीडिया और नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को ग्लोबल साउथ देशों के बीच बेहतर गुणवत्ता के सहयोग और एकजुटता के लिए सकारात्मक कदम बताया। रूस ने ब्रिक्स सहयोगी देशों के साथ समावेशी विकास उन्मुखी साझेदारी के लिए मॉस्को के समर्पण की फिर से पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सचिव अंतोनियो गुतरश ने भी भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की तारीफ की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी नई दिल्ली घोषणा पत्र की तारीफ की है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सहअध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति को स्वीकृति दी गई है। एक रिपोर्ट।
3: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच गरीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
3: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर ये सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
2: श्री अमित शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
4: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
2: इस अवसर पर राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल कर ली है। आज राज्य के 10,245 वार्डों के लिए मतगणना हुई। इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं। भाजपा ने जयपुर, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा नगर निगमों में बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि अलवर में वो आगे चल रही है। बीकानेर में कांग्रेस को बहुमत मिला है और अजमेर तथा पाली में पार्टी आगे है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेनदेन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेनदेन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रुपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेत्किन ने भारत और मर्कोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति प्रकट की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। एक रिपोर्ट।
6: परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाग जिला परिषद के

0: सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता प्रकट की। परिषद ने कहा है कि सार्वजनिक अधिकारों से संबंधित मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से उठाना मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार है। परिषद ने आरिफ अब्बासी पर किसी भी आरोप को पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निपटाने का आह्वान किया और कहा कि यदि उनकी हिरासत के लिए कोई स्पष्ट कानूनी आधार नहीं है तो उन्हें बिना किसी देरी के रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि गुजरात ने मिष्टी योजना के अंतर्गत कच्छ में 27,000 हेक्टेयर में मैंग्रोव पौधे लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पर्यावरण मंत्री ने जाखो स्थित वैज्ञानिक नर्सरी का भी दौरा किया। इस अवसर पर वन्यजीव संरक्षण और चीता परियोजना के अंतर्गत वन विभाग के लिए 33 निगरानी और बचाव वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और अब बात मौसम की। गुजरात में आज तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
2: राज्य में भावनगर के वल्लभीपुर में आज 6 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि आनंद के बोरसद में 5.5 इंच और अहमदाबाद में 3.5 इंच बारिश से आम जनजीवन पर असर पड़ा। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया। इस बीच वाहन चालकों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण राज्य में सीजन की औसत 80% बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कारण राज्य के 35 डैम हाई अलर्ट पर है। दूसरी ओर बारिश के कारण लंबे ब्रेक के बाद खरीफ की फसल को नया जीवन मिला है। मनोज सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कल तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में भी कल इसी तरह के मौसम की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से गणेशोत्सव पारंपरिक तरीके से मनाने और प्रदूषण कम से कम करने की अपील की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ। भक्तों ने प्रार्थना, आरती, भक्ति गीतों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ भगवान गणेश का स्वागत किया। मुंबई में लालबाग साराजा, गणेश गली, तेजुकाया और जीएसबी जैसी मशहूर मूर्तियों के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ और ट्रैफिक को संभालने के लिए पुलिस, रेलवे और बेस्ट ने खास इंतजाम किए हैं। कई जिलों में एक गांव एक गणपति पहल को अपनाया गया। इस साल शोर शराबे वाले प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की। कहा, भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अनामिका फिल्म के गीत से, जिसे गाया है आशा भोसले ने, बोल लिखे मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत तैयार किया है आरटी बर्मन ने।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: la la la la la la la la la la la la la la la.
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर।

अभी आपने खानदान फिल्म में लता मंगेशकर को सुना, धुन बनाई थी खयाम ने, बोल लिखे थे नक्शलाल पुरी ने। अब सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म है घर, गुलजार के लिखे इस गीत की तर्ज बनाई है आर डी बर्मन ने।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उसमें।

0: माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपके लिए लीजिए इस कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर का गाया और आडे बर्मन का संगीतबद्ध किया गीत। इस गीत को लिखा है निदा फाजली ने, फिल्म का नाम है हर चाई।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

प्रेम कहानी। अभी आपने इस फिल्म में लता मंगेशकर और किशोर कुमार को सुना। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? यशोदा एक लड़का आया है कलकत्ते से गाना।

0: सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
1: संगीतकार रविंद्र जैन।
0: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गई सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
2: कभी इस पग में

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज के फनकार।

0: ये सच है कि हमारी और आपकी दोस्ती इतनी पक्की है कि जिसे हम कभी तोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन ये गाना हमारी दोस्ती के नाम नहीं है, बल्कि उस शख्सियत के नाम है जिस पर केंद्रित है आज के फनकार कार्यक्रम। जरा ये संवाद सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
1: कितने आदमी थे?
2: सरदार,
1: दो आदमी थे। दो आदमी। सुअर के बच्चों, वो दो थे और तुम तीन, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों, धिक्कार है। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर?
3: पूरे 50,000।
1: सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहां से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो मां कहती है, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और ये तीन हरामजादे, ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिलाए दिए, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी।
2: कितनी गोली है इसके अंदर?
1: कितनी गोली है?
2: छह सरदार,
1: छह।

छह गोली, छह गोली है इसके अंदर, छह गोली और आदमी थी, बहुत बेइंसाफी है ये। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। अब इसके तीन खानों में गोली है, तीन खाली। अब हम इसको घुमा दिए। अब कहां गोली है कहां नहीं हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। इस पिस्तौल में तीन जिंदगी तीन मौत बंद है, देखें किसे क्या मिलता है। बच गया साला।

0: क्या होगा कालिया?
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब गोली खा। कमाल हो गया।
2: तीनों बच गए, ये तीनों आराम जादों को गोली नहीं।

अब आपको लग रहा होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज उस शख्सियत पर केंद्रित है जिसका फिल्म शोले से कुछ न कुछ तो ताल्लुक है। सोचते रहिए, आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: भाई आज के फनकार कार्यक्रम में अगर कोई पहेलियां बुझाए तो जाहिर है कि आप पसोपेश में पड़ जाएंगे, आप चक्कर में पड़ जाएंगे, आप सोच में भी पड़ जाएंगे। तो अब मुझे लग रहा है कि बहुत देर हो गई, पहेली को सुलझा लिया जाए और आपको बता दिया जाए कि आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है एक बहुत बड़े और बहुत ही कामयाब निर्माता निर्देशक पर, जिनका नाम है GP Sippy।
1: हवा के साथ साथ,
2: अरे रे रे।
1: घटा के संग संग,
2: संभालना।
1: हवा के साथ साथ, घटा के संग संग,

0: अपनी रेशमी जुल्फे लहराने दे ला ला ला ला ला ला ला ला।
1: जीपी सिप्पी का नाम हिंदी सिनेमा उद्योग के इतिहास में केवल एक फिल्म के लिए याद किया जाएगा, लेकिन उस फिल्म का पता तो आपको भी है और वो फिल्म है 70 mm वाली शोले। लेकिन जीपी सिप्पी ने सिर्फ शोले ही नहीं बनाई और वो सिर्फ प्रोड्यूसर ही नहीं थे, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में उनकी शुरुआत बतौर डायरेक्टर हुई थी और वो भी साल 1955 में। फिल्म थी मरीन ड्राइव।

उसके बाद उन्होंने एक बड़ी ही कामयाब फिल्म का निर्देशन किया। इस फिल्म के गाने आज तक संगीत के कदरदान गुनगुनाते हैं। ये फिल्म थी अदले जहांगीर।

साल 1956 में जीपी सिप्पी की निर्देशित फिल्म आई श्रीमती 420। साल 1959 में उन्होंने बनाई भाई बहन, इस फिल्म के निर्देशक थे वो। अब जरा आपको ये भी बता दिया जाए कि जीपी सिप्पी प्रोड्यूसर बने थे सन 1951 में फिल्म सजा के जरिए। फिल्म सजा के गाने हम आज भी गुनगुनाते हैं।

सन 1958 में उन्होंने एक सस्पेंस फिल्म बनाई 12 o'clock। उसके बाद सन 1955 में आई गुनगुनाती हुई कामयाब फिल्म मेरे सनम के प्रोड्यूसर भी जीपी सिप्पी ही थे।

आज के फनकार कार्यक्रम में हम आज आपको निर्माता निर्देशक जीपी सिप्पी के बारे में बता रहे हैं, जिनका जन्म 14 सितंबर 1914 को हुआ था और वो दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में बतौर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जाने जाते हैं। ज्यादातर लोगों को उनकी फिल्म शोले का पता है, इससे आगे या पीछे की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। फिल्म शोले के निर्देशक तो थे उनके बेटे रमेश सिप्पी, लेकिन जीपी सिप्पी ने शोले के पहले और बाद में कई नामी फिल्में बनाई हैं। शोले से पहले ही वो सन 1968 में ब्रह्मचारी जैसी कामयाब फिल्म बना चुके थे।

दूसरी तरफ सन 1971 में उन्होंने बनाई थी फिल्म अंदाज, सन 1975 फिल्म शोले, और शोले के ठीक बाद सन 1980 में आई थी फिल्म शान। सन 1985 में रमेश सिप्पी के निर्देशन में जीपी सिप्पी की प्रोड्यूस फिल्म आई थी सागर।

सन 1985 के बाद से जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस का ग्राफ थोड़ा सा नीचे हुआ था। दरअसल इसके बाद आने वाली फिल्में कामयाबी की वो कहानी नहीं रच पाई जो शोले या उसके पहले और बाद की फिल्मों ने रची थीं, और जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस को फिल्म संसार का एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस बनाया था। सन 1991 में सलमान खान के अभिनय वाली पत्थर के फूल फिल्म आई।

सन 1992 में आई राजू बन गए जेंटलमैन, यहाँ से शाहरुख खान की कामयाबी की कहानी शुरू होती है। संघर्ष के दौर में शाहरुख खान जीपीसीपी के दफ्तर में अपनी तस्वीरें लेकर बैठे हुए थे और राजू बन गया जेंटलमैन के निर्देशक अजीज मिर्जा ने जीपीसीपी से कह रखा था कि इस लड़के में हीरो बनने का जबरदस्त पोटेंशियल है। जब जीपीसीपी ने शाहरुख खान को देखा तो उन्होंने फौरन ये फैसला किया कि उनकी इस अगली फिल्म में राजू शाहरुख खान ही बनेंगे।

इसके बाद आई आतिश। सन 1997 में जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस की आखिरी बड़ी फिल्म आई थी हमेशा। आपको बता दें कि जीपी सिप्पी के बेटे रमेश सिप्पी एक कामयाब निर्देशक के बाद एक कामयाब प्रोड्यूसर भी बन चुके हैं। रमेश सिप्पी के बेटे रोहन सिप्पी परिवार में सिनेमा की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये फिल्म है दम मारो दम।

0: की सेवा में जनहित में जा रही है।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अजीमुशान निर्माता निर्देशक जीपी सिप्पी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मुझे तुमसे बेहतर की ख्वाहिश ना थी ना रहेगी। तुम्हारी जरूरत थी, जरूरत है और रहेगी। दुनिया लाख हसीन चेहरे दिखाए, दिल ने तुम्हें चुना, तो फिर किसी और की ख्वाहिश कहाँ रहेगी। एक ही शख्स में सब कुछ पा लिया, इश्क भी मोहब्बत भी, प्यार दोस्ती रूह का सुकून दिल का करार भी। तू मेरा अपना भी है और मेरी दुनिया भी, मैंने खुद को तुझ में पा लिया। अब अगर कोई पूछे कहाँ है मोहब्बत, जवाब होगा सिर्फ तुम।

और तुम्हारी याद जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। ये मोहब्बत मेरे दिल की किस्मत बन गई। तुझे गले से लगाकर बताऊं कितनी रातें तेरी याद में जागकर गुजर गईं। तुझसे दूरी में कितनी बेचैनी, तन्हाई में कितने लम्हे तेरा नाम लेते हुए ठहर गए। काश तू एक बार करीब आ बैठे। मैं लफ्जों के बगैर अपनी कैफियत सुना दूं कि तुम दूर होते हो तो जिंदगी सूनी बेनूर सी लगती है मुझे।

मुझे शौक नहीं था मोहब्बत का, तुझे एक नजर क्या देखा, दिल बगावत कर बैठा, फिर ना अक्ल ने साथ दिया, ना दिल ने कोई दलील मानी, बस एक तुम

हम खामोश रहे और तुम बात समझते गए, हम नजरें चुराते रहे और तुम हाल पढ़ते गए, हम हाले दिल छुपाते रहे और तुम करीब आते गए, फिर बेपनाह इश्क हुआ और तुम दिल के मालिक बन गए। तेरे होने से जिंदगी में कोई सवाल नहीं, तेरा हाथ थामा तो सफर में कोई मलाल नहीं, तुझे पाकर अब किसी खुशी का इंतजार नहीं, राहे मोहब्बत में तू मिला तो दिल पे अब कोई अख्तियार

0: बिछड़ेंगे हम कारवां पालिया है तुम्हें पाके हम।
1: पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ, उसने मुझे छूकर नहीं देखा। छाया गीत कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। पलकों के किनारे जो हमने कभी भिगोए नहीं, उन्हें ये लगता है कि हम कभी रोए नहीं। पूछते हैं किसे देखती हो ख्वाबों में, उन्हें क्या खबर के हम बरसों से सोए नहीं। दिल में छुपा है जो जुबां से कहें कैसे, मोहब्बत है तुमसे अब ये बताएं कैसे। जज्बाए इश्क सच्चा ना होता तो रास्ता बदल लेते, मेरे रास्तों का गुजर तुमसे तुम तक है, सांसों का सफर तुमसे तुम तक है। हाँ मेरी मोहब्बत भी तुमसे तुम तक है, दिल जिसे भूल नहीं सकता वो धड़कन हो तुम। तुमसे है मेरी दुनिया हसीन, मेरी पहली मोहब्बत हो।

तुमसे मिलने की ख्वाहिश भी अजीब ख्वाहिश है। दिल ने हर ख्वाब में तुमको पुकारा है। तुम आओ करीब तो वक्त ठहरने लगता है। तुमसे बिछड़ना दिल को कहाँ गवारा है। ना तुमसे दूर रहने की ख्वाहिश, ना भूलने का हुनर। तुमसे जुड़ी मेरी हर बात।

अब किसी बात की तमन्ना नहीं दिल में। तुम मिले तो मुकम्मल हुई मेरी तन्हाई, तुम मिले तो मुझे खुद से भी हुई मोहब्बत। तुम्हारा जिक्र हुआ तो महक गई तन्हाई, जैसे खामोश फिजा में उतर गई रानाई। तेरी आवाज में कुछ पाया ऐसा सुकून, जैसे धड़कते हुए दिल को मिले अपनी गहराई। तुम्हें सोचा तो लगा वक्त भी ठहरने, दिल ने इश्क की एक नई दुनिया बसाई।

दिल से उतर कर दिल में ही रहा करते हैं, कुछ ताल्लुक भी अजीब हुआ करते हैं। लोग चेहरों से मोहब्बत का सबक पढ़ते हैं, अपने दर्द को दिल में ही छुपाए रखते हैं। किसी ने पूछा मुस्कुरा के हाल हमारा, दिलों में तूफान लपे खामोशी रखते हैं। वफा के नाम पे ये जो जख्म मिल गए हमको, उन्हें दिल में तुम्हारी अमानत बनाए रखते हैं।

तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का, तो आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार। विविध भारती से छाया गीत कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है राघवेंद्र सिंह ने।

विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, बुद्धि और समृद्धि के देवता भगवान गणेश को नमन करते हुए हमने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की है इस गीत के साथ। फिल्म का नाम था दर्द का रिश्ता, आवाजें ए हरिहरन और साथियों की थी। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा था और धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने। आज का ये रंग

तरंग कार्यक्रम गणपति बप्पा बोरिया मोरिया के नाम। कहते हैं जहां गणपति का स्मरण होता है वहां शुभता अपने आप चली आती है, और हर नई शुरुआत से पहले जिनका नाम लिया जाता है वे हैं हमारे प्रिय गणपति बप्पा। तो आइए भक्ति और श्रद्धा से भरे इस सफर में अब सुनते हैं कार्यक्रम का ही अगला गीत।

गाने वाले कलाकार हैं शंकर महादेवन और साथी। गीतकार और संगीतकार डॉक्टर विजय भावे। गणेश

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ये आवाजें थी तृप्ति शाकिया और साथियों की। आपने इनकी आवाज में ये गणेश वंदना सुनी। आइए सुनते हैं अगला गीत।

समूह स्वरों में अभी आप सुन रहे थे ये स्तुति, गणेश स्तुति। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला भक्ति गीत। आवाजें हैं अभिजीत सावंत और राहुल वैद्य की।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

सुरेश वाडेकर और साथियों की आवाजों में अभी आपने ये गणपति वंदना सुनी। इसे चंद्रशेखर पांडे ने लिखा और धुन बनाई थी श्याम सागर ने। आइए सुनते हैं ये अगला भक्ति गीत, आवाजें जोनिता गांधी और साथियों की।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम में अब सुनिए अगला भक्ति गीत, आवाजें दिव्या कुमार और साथियों की। इसे मुकेश मिश्रा ने लिखा है और तर्ज बनाई है काशी कश्यप ने।

रंग तरंग कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं महेंद्र कपूर, सुरेश वाडेकर, शब्बीर कुमार और हेमलता की आवाजों में फिल्म मरते दम तक का ये गीत। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

0: इस गाने के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम गणपति बप्पा मोरिया को समर्पित था।
1: रंग तरंग।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं फिल्मकार जीपी सिप्पी को। आज इस कार्यक्रम में हमने चुने हैं उन्हीं की फिल्मों के कुछ गीत। ये पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है सजा। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार सचिन देव बर्मन।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म का नाम था सजा। और आइए अब सुनते हैं ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत, आवाजें मोहम्मद रफी और गीता दत्त की, फिल्म का नाम 12 o'clock।

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर.
2: सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन.
1: सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा.
3: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी. मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई. उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं. बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ.
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज इस कार्यक्रम में हम आपको फिल्मकार जीपी सिप्पी के कुछ फिल्मों से गीत सुनवा रहे हैं। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और साथियों को। फिल्म का नाम है मरीन ड्राइव, गीतकार कमर जलालाबादी और संगीतकार एन दत्ता।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर के स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: मोहम्मद रफी की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राज का गीत। शब्दकार शमीम जयपुरी और संगीत दिया है कल्याण जी।

पर आपका गम, ये तन्हाई का आलम और इस पर

मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने फिल्म राज का ये गीत सुना। आइए सुनते हैं एन दत्ता के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा ये दो गाना। स्वर मोहम्मद रफी और गीता दत्त के। फिल्म का नाम है भाई बहन।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
2: बिल्कुल।
0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म ब्रह्मचारी से युगल स्वर मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के।

0: ना तो आज बरसात का मौसम, ना कहीं छाई बदरिया, फिर भी मोरे जिया रम चमके, अरे थम थम कोई बिझुरिया।
1: वाह वाह वाह, तो हर जवाब नहीं,

मोहल्ले से पास कभी आई के जो बिछवा पर जाई दे गोरी छम से कसम से बिना।

0: मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर, सुषमा श्रेष्ठ और प्रतिभा को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था अंदाज। इसे हसरत जयपुरी ने लिखा था और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। इससे पहले आपने मुकेश की आवाज में फिल्म बंधन का गीत सुना था। शब्द अनजान के थे और धुन कल्याण जी आनंद जी की थी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर।

0: और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनिए राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर के बोल, आवाज किशोर कुमार की और फिल्म का नाम सागर।

आशा भोसले की आवाज में अभी आपने फिल्म शान का ये गीत सुना। इसे आनंद बख्शी ने लिखा था और धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने।

तो प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी तो आज तो हमारे श्रोताओं ने हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी और हिंदी दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं हमें भेजी है। आप सबको भी हमारी तरफ से इन सभी खास पर्वों की ढेरों शुभकामनाएं। हाँ, हमें उम्मीद है आज आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन ये भी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और अपनी व्यस्तता के साथ साथ हमारे साथ इस सुरीला सफर पर भी आप निकलने के लिए तैयार हैं, क्यों है ना? चलिए तो आज के सफर में हम संगीत के लिए क्या लेकर जाने वाले हैं बताइए। जब सफर पर निकले हैं तो गीत तो गाएंगे ही, गीत सुनेंगे भी, लेकिन संगीत के लिए हमारे पास जरूरी नहीं कि सितार हो, तबला हो या बांसुरी ही हो। कभी कभी एक गिलास और एक चम्मच भी आपके गीत की धुन बना देते हैं। कभी घड़ी की टिक टिक, आपकी कदम ताल, आपकी चाल, आपकी हंसी, ट्रेन की छुक छुक, या जो पास पड़ोस में या आसपास में पेड़ पौधों की आवाजें हैं, पशु पक्षियों की आवाजें हैं, हवाओं की आवाजें हैं, वो भी हमारे संगीत का हिस्सा बन जाती हैं। तो आज के सुरीला सफर में सुनिए ऐसे ही कुछ गीत जहां आवाजें सिर्फ आवाजें नहीं रही बल्कि वे खुद संगीत बन गई है ना? तो हम तैयार हैं इस तरह के संगीत के लिए, क्यों आप भी तैयार हैं ना? तो आज की इबारत है हमारी कि क्या कभी आपने गौर किया कि कुछ गीतों में कभी घड़ी की टिक टिक, कभी किसी खेल की आवाज, कभी कदमों की आहट और कभी कोई साधारण सी ध्वनि भी उस गीत की धड़कन बन जाती है। फिल्मी गीतों के संगीतकारों ने अपनी कल्पनाशीलता से ऐसी ही आवाजों और बीट्स को गीत का हिस्सा बनाया और उन्हें संगीत में इस तरह ढाला कि वे उससे अलग महसूस ही नहीं होती, क्यों?

है ना। तो कहीं टिक टिक मेरा दिल बोले मैं आपको टिक टिक सुनाई देती है, तो कहीं ढल गया दिन में आपको रैकेट और शटल की आवाज गीत संगीत के साथ घुलकर एक अनोखा रंग भरती हुई दिखाई देती है, सुनाई देती है। यानी संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, कभी कभी वो हमारे आसपास की आवाजों में भी छुपा होता है। तो आज के सुरीला सफर में होगा ऐसे ही चुनिंदा गीतों का जिक्र, जहां धुन के साथ साथ किसी खास आवाज को भी संगीत का हिस्सा बनाया गया उस संगीतकार के द्वारा, जो गीतों को और भी यादगार बना गया। तो ये था हमारा आज का टेक्स्ट उन सभी लोगों के लिए जो हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि हमारे वो श्रोता जो फेसबुक पेज से जुड़ गए हैं उन्होंने हमारे टेक्स्ट को पढ़कर बहुत सारे गीतों का जिक्र यहां पर किया है, क्योंकि हमने उन्हें दो उदाहरण ऐसे गीतों के दे दिए थे जहां वो इस बात से वाकिफ हो गए कि आज किस तरह के गीत हम इस कार्यक्रम में लेकर आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी के बोल से, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम आराधना। आपको पता है इस गाने में हमें क्या सुनने को मिलने वाला है? ट्रेन की आवाज।

जी हाँ, इस गाने में राजेश खन्ना खुली जीप में चलते हैं और अभिनेत्री यानी शर्मिला टैगोर दार्जिलिंग की जो खूबसूरत टॉय ट्रेन है जो बहुत ही प्रसिद्ध है उसकी खिड़की से उन्हें देखती है। क्यों, याद है ना आपको ये सीन? और गाने की धुन और ताल कुछ इस तरह बनाई गई है जो टॉय ट्रेन की गति और उसकी पटरियों की आवाज के साथ बिल्कुल मेल खाती है और पूरा गाना जो पर्वतीय वादियां हैं और चलती ट्रेन का जो सफर है उसका एहसास हमें इस पूरे गाने में मिलता है सुनने को, है ना? और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, लेकिन उससे पहले आपके संदेश आप तक पहुंचाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि संगीत केवल सुरों और शब्दों का नाम नहीं, वो तो हमारे आसपास बिखरी उन छोटी छोटी आवाजों में भी छुपा होता है जो अनायास ही मन के किसी कोने को छू जाती है। जब ये ध्वनियां किसी गीत का हिस्सा बनती हैं तो गीत केवल सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस होने लगता है। शायद इसीलिए कुछ आवाजें कानों से नहीं सीधे दिल से सुनी जाती हैं। वे हमारे मन की स्थिति को बदल देती हैं। उदासी में उम्मीद, अकेलेपन में साथ और खामोशी में संवाद तो कभी कोई मधुर आवाज बीते हुए प्रेम और यादों के दरवाजे भी खोल देती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कभी घड़ी की सुइयों की टिक-टिक, कभी मैदान में किसी खेल की गूंज तो कभी सन्नाटे को चीरती कदमों की आहट, ये सब केवल ध्वनियां नहीं है बल्कि जीवन की लय हैं। भारतीय सिनेमा के जादुई दौर में फिल्मी गीतों के संगीतकारों ने अपनी अनूठी कल्पनाशीलता से इन्हीं साधारण आवाजों और बीट्स को गीतों का अहम हिस्सा बनाया। उन्होंने उन ध्वनियों को संगीत के ताने बाने में इस तरह पिरोया कि वे गीत में अलग महसूस ही नहीं होती बल्कि उनकी आत्मा बन जाती है। इन प्रयोगों से ये साफ होता है कि संगीत केवल बंद कमरों या स्टूडियो में तैयार नहीं होता बल्कि यह हमारे जीवन के हर हिस्से में सांस लेता है। कदमों की आहट से लेकर हवा की सरसराहट तक हर ध्वनि में एक लय है। जरूरत है तो बस संगीतकारों जैसी एक संवेदनशील सोच और पारखी कान की जो शोर के बीच से भी एक सुरीली धुन को खींच लाए और उसे हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दे। कितनी खूबसूरती से आपने अपनी बात रखी है। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत फिल्म अलबेला से जिसका जिक्र हमने अपनी इबारत में किया था। आवाजें लता मंगेशकर और चितलकर यानी सी रामचंद्र की, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, सी रामचंद्र का संगीत है और इस गाने में क्या सुनाई देता है? हाँ, घड़ी की टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक जो हमारे घर में भी हमें सुनाई देती है और एक मधुर संगीत खासतौर से रात के सन्नाटे में बहुत ही खूबसूरत संगीत हमें देती भी है ये घड़ी की टिक टिक।

लता मंगेशकर और चितलकर की आवाजें थी। फिल्म का नाम था अलबेला। गाने के आरंभ में आपने घड़ियों की टिक टिक टिक टिक सुनी थी ना? सुनाई दी आपको? हाँ, कभी कभी इस संगीत को बहुत गहराई के साथ सुनना पड़ता है क्योंकि कुछ इफेक्ट्स बहुत ही हल्के से इस्तेमाल किए गए हैं। हाँ, कुछ का इस्तेमाल ज्यादा किया गया है तो शायद उसे इतने गौर से सुनने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ इफेक्ट्स बहुत ही गौर से सुनने पर पता चलते हैं कि हाँ, ये इफेक्ट हमने सुना। और अब दो सवाल हमेशा की तरह आपसे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी पसंद के वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं। हो सकता है आप वाद्य यंत्र नहीं बजाते हो या नहीं शौक रखते हो, लेकिन फिर भी जब आप कोई गीत सुनते हैं, आपने कोई गीत सुना होगा तो आपको लगा होगा कि यहां सितार का प्रयोग बहुत अच्छा हुआ, तबले का प्रयोग हुआ, या गिटार बहुत अच्छा लगा, या जल तरंग बहुत अच्छा लगा, या जैसे कि आज हम विषय लेकर आए हैं कुछ ऐसे वाद्य यंत्र जो तबला, सितार, ढोलक इनसे अलग होकर बजाए जा रहे हैं। तो ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र आपको पसंद है, बांसुरी, हारमोनियम, जो आप बजाते भी हैं या पसंद करते हैं? कभी कभी ये होता है कि जब हम घर में गाना गाते हैं ना, या बाथरूम सिंगर बन जाते हैं, तो टीन, कनस्तर, बाल्टी, झाड़ू और भी न जाने क्या क्या चीजों को हम अपना वाद्य यंत्र बना लेते हैं, है ना? होता है ना ऐसा आपके साथ भी? कभी हुआ होगा जरूर। याद कीजिए वो दिन जब आपने टीन, कनस्तर, बाल्टी या किसी भी ऐसी चीज को, मेज को ही अपना वाद्य यंत्र बना लिया और गाना गाना शुरू कर दिया। और हमारा दूसरा सवाल कि आपको अपने आसपास की कौन सी ध्वनियां प्रभावित करती हैं जो प्रकृति में हैं, या यूं कहूं कि ऐसी कौन सी ध्वनियां हैं जो आपको पसंद आती हैं या परेशान कर देती हैं? कम से कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं को हम शामिल कर सकें उनके विचारों के साथ। और आइए चलते हैं अगले गीत की ओर। फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, शब्दकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन हैं। इस गाने में शंकर जयकिशन ने खास साउंड इफेक्ट्स का बहुत ही अनोखा और खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। आपने सुना है ना ये गीत, जब बिजली कड़कने की आवाज आती है तो वो सिर्फ एक इफेक्ट नहीं लगती, बल्कि गाने के जो शुरुआती बोल हैं जहां रफी साहब कहते हैं कि बिजली गिरा के आप खुद बिजली से डर गई, और उसके साथ ही बिजली कड़कने की और तेज बारिश की आवाज आती है, और लगभग ये आवाज पूरे गाने में हमें महसूस होती भी है। तो आप भी महसूस कीजिए इस आवाज को।

0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम,
0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम,
0: वो दिल तेरा दीवाना है सनम।

एक श्रोता ने लिखा है कि संगीत जो हमें एक दैवीय शक्ति से बांधता सा लगता है, जैसे ही किसी जंगल में आप प्रवेश करते हैं जंगल की आवाज अलग अलग संगीत पैदा करती है। नदियों के पानी में अलग संगीत होता है, कलकल का संगीत बहुत मीठी मीठी है। संगीत बनने की कहानी, रात के बहते हुए खामोश दरिया में चांद की किरणें खेलती रहती हैं और मन के बियाबान तारों में कुछ धुन यूं ही बजने लगती है। जो कोई हुक हो जी मैं तो गूंज उठेंगे, ये विरही सुर कोशिशों साधे नहीं जाते। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है, आज गीत की धुन के साथ विविध आवाजें भी अपने अस्तित्व का परिचय करवाएंगी। इस अनोखी सुंदर थीम को आज गणपति बप्पा का आशीर्वाद भी है, गणराज रंगी नाच। तो इस मराठी गीत में बाल गणेश जी ने पैरों में पहनी यानी घुंघरू की रुनझुन रुनझुन, ये बेहद सुरीली आवाजें दिल को मोह लेती है। और आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र भी किया है, हो सकता है आपकी पसंद हमारी आज की लिस्ट में शामिल हो। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय बिल्कुल नवीन है लेकिन बहुत ही रोचक है। गीतों में संगीतकारों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयोग, उनकी कल्पनाशीलता जिससे गीत शानदार हो गए। तरह तरह की बीट्स के प्रयोग ने गीत को कर्णप्रिय बना दिया है। ऐसे ही बहुत सारे गीतों का जिक्र आपने भी किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मुझे चिड़िया या कोई भी गीत में पक्षियों की आवाज बहुत प्यारी लगती है, जैसे कोयल बोली, दिल कहीं रुक जा रे रुक जा, पंछियों की आवाजें और चुन चुन करती आई चिड़िया, इस तरह की आवाजें इन्हें बहुत पसंद आती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत में सभी तरह के वाद्य यंत्रों के साथ ही आसपास मौजूद आवाज का प्रयोग कर गीतों की प्रस्तुति को लाजवाब बनाया गया है। पंख होते तो उड़ाती रे गीत में पंछी की मधुर आवाज के साथ पंछी की तरह उड़ते हुए पंख फैलाते हुए किया गया नृत्य बहुत ही आकर्षक भी लगता है। साथ ही संगीत का लाजवाब धुन आसपास के वातावरण को गुंजायमान भी कर देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सफर में आज गीतों में छुपे एहसास और दिल में भावों को जगाते हुए उन आवाज को सुनना, जैसे हवा की सरसराहट, दरवाजे की आवाजें, सांसों की धड़कन, कुछ मंदिरों की घंटियां, बांसुरी की, समुद्र की डरावनी लहरों की आवाजें और धीरे धीरे गुनगुनाने की आवाजें, ये सभी आवाजें मन के हर भाव को जीवंत कर देती हैं। जीवन का सुख दुख, हंसना रोना, डरना सहम जाना आदि सभी नवरसों जो जीवन में समाहित है वो सभी हमारे साथ है और ये सभी हमें प्रभावित करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और इन गीतों के साथ हम भी खो जाते हैं उन खास संगीत की ओर जो हमारे संगीतकारों ने प्रयोग के तौर पर डाले होते हैं। जैसे कि अगला गीत हम सुनने वाले हैं फिल्म शोले से किशोर कुमार की आवाज में, और इनका साथ दे रही हैं हेमा मालिनी, जब वो कहती हैं चल धन्नो। तो अब आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और राहुल देव बर्मन का संगीत है। इस गाने में आपको चाबुक की आवाज, घोड़े की टापों की आवाज, धर्मेंद्र के गिरने पर साइकिल की आवाज, साइकिल की घंटी की आवाज, बहुत सारे प्रयोग इस गीत में किए गए हैं और आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी इन गीतों में ये सभी धुनें सुनाई देंगी।

जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है कि जब स्टेशन से गाड़ी छूट जाती है तो फिर 1, 2, 3 हो ही जाती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको जाना है कहीं और आप भागते दौड़ते स्टेशन पहुंचे हैं और आपके सामने से ट्रेन निकल गई है? और वही हुआ जो इस गाने में कहा जा रहा है कि 1, 2, 3 हो जाती है। हमारे सवाल एक बार फिर से, हमने आपसे पूछा था कि आपकी पसंद के वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, जो रूटीन के वाद्य यंत्र हैं, जैसे कि अगर आप हारमोनियम, तबला और बांसुरी, बहुत सारे माउथ ऑर्गन, सितार, गिटार, बांसुरी, क्या क्या पसंद करते हैं, अगर आप बजाते हैं या बजाना पसंद करते हैं, संगीत के शौकीन हैं तो। लेकिन इसके अलावा कई बार हर आदमी अपने जीवन में जब कोई गाना गाना पसंद करता है, बाथरूम में, कमरे में, एकांत में, तो टीन कनस्तर, जो हाथ में आता है बाल्टी, झाड़ू, उसे भी वाद्य यंत्र बनाकर हम गाना गाने लगते हैं। भाई हमने तो ऐसा कई बार किया है कि टीन कनस्तर बजाकर ही ताल मिला ली है और गाना गा दिया है। तो आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा। याद कीजिए उन पलों को, या आपके बच्चे अगर ऐसा करते हैं तो वो बात हमें बताइए, कम से कम शब्दों में लेकिन रोचक तरीके से। और हाँ, जब बात चली है ध्वनियों की, तो आपको अपने आसपास की कौन सी ध्वनियां प्रभावित करती हैं, यानी कौन सी ध्वनियां जो पसंद आती हैं और कौन सी ध्वनियां आपको परेशान करती हैं आपके घर के आसपास की? हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपने बहुत ही खूबसूरत विषय उठाया है, संगीत में आवाजों की मौजूदगी को महसूस करने का। गीत की दुनिया में सुर और साज की अपनी खूबसूरती है, लेकिन कभी कभी कोई अनघट सी जानी पहचानी आवाज भी गीत को ऐसी आत्मीयता दे जाती है कि वो बरसों तक दिल में बसी रहती है। कदमों की आहट हो, घोड़े की टाप हो, या रेल की चुक चुक, घड़ी की टिक टिक हो, या पायल की रुनझुन, जब ये ध्वनियां किसी धुन में शामिल होती हैं तो गीत सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता है। हर आवाज अपने साथ कोई दृश्य, कोई मौसम, कोई बीती हुई स्मृति ले आती है। संगीत केवल वाद्य यंत्रों से नहीं बनता, वो तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के शोर में भी कहीं चुपचाप सुर तलाशता रहता है, बस उसे

जानने के लिए कान नहीं एक संवेदनशील दिल चाहिए। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारतीय सिनेमा के संगीतकारों की सबसे बड़ी खूबी रही है कि उन्होंने स्टूडियो की चारदीवारी से बाहर निकलकर हमारे दैनिक जीवन के शोर को सुर में तब्दील कर दिया। जब किसी गीत में कोई सहज आवाज, चाहे वो खेल की हो, रसोई की हो, किसी वस्तु की हो, शामिल होती है तो वो केवल एक धुन नहीं रहती बल्कि दृश्य को श्रोता के जहन में जीवंत कर देती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी शॉप रोड टच है तो पूरा दिन वाहनों की आवाजाही

बिल्कुल होते हैं इस शोर से हम परेशान। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गीत संगीत केवल सुरों का संगम नहीं बल्कि हमारे आसपास की जीवंत ध्वनियों का खूबसूरत विस्तार है। फिल्मों में संगीतकारों ने अपनी अद्भुत कल्पनाशीलता से घड़ी की टिक टिक, खेल के मैदान की हलचल या कदमों की आहट जैसी रोजमर्रा की आवाजों को धुनों में ऐसा पिरोया कि वे गीत की धड़कन बन गई। चाहे वो टिक टिक टिक मेरा दिल बोले हो या दिल की धड़कन बना हुआ कोई गीत, घड़ी की आवाज हो या ढल गया दिन, हो गई शाम में बैडमिंटन की रैकेट शटल की लय, ये ध्वनियां संगीत से अलग नहीं बल्कि उसका प्राण महसूस होती हैं। सच ये कि संगीत सिर्फ वाद्य यंत्रों से नहीं हमारे परिवेश की हर धड़कन में छुपा है, बस उसे महसूस करने वाले कान और सुनने वाले बुनने वाले दिल की जरूरत है। बहुत सुंदर इबारत हमारे श्रोताओं ने लिखी है, तो चलिए सुनते हैं ऐसा ही गीत जिसका जिक्र हमने भी अपनी इबारत में किया था और अभी भी इन श्रोता ने भी किया है। फिल्म हम जोली का गीत है, मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन है और इस गीत में क्या है ये आप जानते हैं। रैकेट और शटल की आवाज, टिक, है ना, सुना है आपने कितने तरीके से संगीतकार ने इस गाने में इस धुन को पिरोया है।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि संगीत में साज तो कई तरह के होते हैं, लेकिन जब रोजमर्रा की कोई साधारण सी आवाज किसी गीत में ताल बन जाती है तो गीत यादगार बन जाते हैं। आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है और वही बात आपने भी कही है कि पूरा दृश्य चलने लगता है और सच्ची धुनें बाहर से नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की रोजमर्रा की टिक टिक, छुक छुक और छम छम से ही छुपी होती है। बस उन्हें सुनने और महसूस करने के लिए एक संगीत प्रेमी दिल और दिमाग चाहिए होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि नित्य नवीन विषय निर्मात्री का नवीनतम अध्याय प्रशंसनीय, उल्लेखनीय और विचारणीय है। सुरीला सफर मंदाकिनी जी के निर्देशन में नई ऊर्जा से संचालित हो रहा है। नियमित श्रोताओं को स्फूर्तिवान रखने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। चित्र विचित्र वस्तुओं के ध्वनियों से गूंजती आज की सुरीला सफर का संगीतमय आनंद बना रहेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारतीय हिंदी फिल्मों के संगीत में अलग अलग संगीतकारों ने पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों के अलावा दूसरी अलग अलग चीजों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को अपनी संगीत रचनाओं में इस तरह पिरोकर ऐसा तिलिस्म रचा जो कि कालजी रचनाओं में शामिल हो गया। आपने भी कुछ गानों का जिक्र किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी ये पंक्तियां संगीत को देखने का एक बेहद जादुई और अलौकिक नजरिया देती हैं। ये इबारत हमें एहसास कराती है कि महान संगीतकार केवल वाद्य यंत्रों के मोहताज नहीं थे बल्कि वे हमारे आसपास बिखरी रोजमर्रा की आम आवाजों में भी संगीत ढूंढ लिया करते थे। घड़ी की सुइयों के टिक टिक को दिल की धड़कन बना लेना या खेल के मैदान की टुक टुक को धुन में ढाल देना उनकी अद्भुत कल्पनाशीलता और रचनात्मकता की पराकाष्ठा है। संगीत सिर्फ कानों से सुना नहीं जाता बल्कि वो हमारी जिंदगी की हर हलचल में छुपा होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि महान संगीतकार ओपी नैयर साहब ने अपने बनाए बहुत से गीतों में घोड़ों की टापों की आवाजों को शामिल किया और वो प्रयोग भी कामयाब रहा। और आरडी बर्मन साहब ने तो कंगी, टिन का डिब्बा, शीशे का गिलास, झाड़ू सभी बजाकर मधुर संगीत का निर्माण किया और वो भी सफल हुए। जितना हमें पता है वो सब आप सभी से साझा किया। अब देखना यह है कि आप अपने पिटारे में से कौन सी जानकारियां लेकर आती हैं। भाई हमारी भी जानकारी वही है जो आपकी है, लेकिन हाँ हम इधर से आप तक पहुंचा रहे हैं और आप उधर से हम तक पहुंचा रहे हैं। तो चलते हैं अगले गीत की ओर। मन्ना डे की आवाज, फिल्म का नाम सफर, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन और यहां पर आपने देखा होगा चप्पू की आवाज आती है, पानी की आवाज, किस तरह से नाव चल रही है और ये आवाज हमें साफ साफ सुनाई देती है इस गीत के जरिए।

श्रोता लिख रहे हैं कि आज की उद्घोषिका मंदाकिनी जी और सभी को नमस्कार। आज का विषय बिल्कुल नवीन लेकिन बहुत ही रोचक है, हमें पसंद आ रहा है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमने बचपन में परात को डफली बनाकर डफली वाले डफली बजा गीत की नकल की जब मम्मी घर में नहीं होती थी, बस एक प्यारी सी दोस्त और हम होते थे। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही होता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि डीजे की आवाज मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। अच्छा, एक श्रोता कहते हैं हमारे घर के पास ही दुर्गा मंदिर है, सुबह सोकर उठने से पहले ही मंदिर की घंटियां हमें जगा देती हैं। बहुत ही मधुर स्वर में घंटियों की आवाज आती है और हम उठते ही ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। बहुत सुंदर, यानी हमारे सवालों का जवाब हमारे श्रोता दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि चाय के होटल पर पहले बैठते थे तो चाय आने में समय लगता था, तो टेबल बजाना चालू कर देते थे और उसके साथ गीत भी गाना शुरू हो जाता था। बिल्कुल ये होता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो दो डब्बे रखकर तबला बजा लेते हैं, वीणा के तंतुओं द्वारा उत्सव उत्पन्न झंकृत ब्रह्मांडनीय नाद अति सुंदर। एक श्रोता ने लिखा है कि ढोलक बजाना आए या न आए पर ढोलक देखने के बाद तो दो चार थाप हम भी लगा ही लेते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पूरब और पश्चिम फिल्मों में ओम जय जगदीश हरे आरती में घंटी और शंख ध्वनि, ये आवाज हमें बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बांसुरी की आवाज मुझे हमेशा से बहुत अच्छी लगती है, उसमें न जाने कैसी सादगी और मिठास है कि मन को बिना कुछ कहे छू जाती है। जब बांसुरी बजती है तो लगता है जैसे हवा भी कोई मीठी सी धुन लेकर हमारे पास से गुजर गई हो। उसकी आवाज में एक अपनापन सा है, न कोई शोर न कोई बनावट, बस कुछ सुर और ढेर सारा सुकून है। शायद इसलिए बांसुरी की धुन सुनते ही मन कुछ पल के लिए ठहर जाता है और चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। बहुत सुंदर बात आपने अपने मन की हम तक पहुंचाई है। एक श्रोता लिखते हैं कि पियानो अकॉर्डियन विशेषकर इन्हें पसंद आता है, माउथ ऑर्गन भी और ये बजाते भी हैं, मैंडोलिन इन्हें पसंद है, सुरजीत और कई सारे वाद्ययंत्रों का आपने जिक्र किया है और आपने विविध भारती के कार्यक्रमों में इन वाद्ययंत्रों को बजाया भी है, इसका भी जिक्र आपने किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के प्रोग्राम में बहुत ही कर्णप्रिय गाने जो अलग अलग वाद्ययंत्रों का प्रयोग मन को आह्लादित करने वाले हैं सुनाई दे रहे हैं। राहुल देव बर्मन साहब ने तो बहुत ज्यादा प्रयोग किए, कहीं चम्मच से भी लाजवाब संगीत उन्होंने बनाया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि हमें थाली

मच और मेज ये वाद्य यंत्र बहुत पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट बहुत अच्छी लगती है। स्वाभाविक भी है, ये चहचहाट तो सभी को मधुर लगती है, लेकिन ये मधुरता कब तक हमें मिलेगी पता नहीं, जब तक मिले भगवान जी को समर्पित और नमन करूंगी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गली मोहल्ले के छोटे मोटे फंक्शन में ढोलक एक आम बात हुआ करती है और कुछ लेडीज एक इकट्ठी होकर भजन कीर्तन या अन्य किसी प्रकार का कार्यक्रम करती है। ढोलक उसमें जरूर बजती है, उसमें मन भी लग जाता है और ढोलक बजाने की प्रैक्टिस भी हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही हमारे रोजमर्रा के वाद्य यंत्र भी होते हैं। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप अपनी बाइक पर गए हो या गाड़ी में गए हो, दोपहिया वाहन पर गए हो या साइकिल पर गए हो और टायर पंचर। तो ऐसा ही गीत आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं फिल्म टैक्सी ड्राइवर से, जहां किशोर कुमार और साथियों ने इस गीत को गाया है। साहिर लुधियानवी के बोल हैं, सचिदेव बर्मन की धुन है, और इसमें यही होता है कि टायर पंचर होता है और फिर उसमें हवा भरी जाती है। बहुत ही ध्यान से जब आप इस गीत को सुनेंगे तो ये संगीत भी आपको सुनाई देगा।

0: चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे,
1: अरे मास्टर राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे।
2: दांत लीक करो तो मुझको जेल भेज दो, ढूंढने में क्या है ये जवाब थानेदार।

0: डायरी की हवा निकल गई।
1: जैक लगाओ,
2: किक किक किक किक,
1: ट्रेनिंग पहिया, अरे पंपिंग।

जी तो ये मस्ती भरा गीत अभी आपने सुना। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि वैसे तो हमें प्रॉपर ढोलक बजाना नहीं आता, लेकिन फिर भी हम तबला और डोर बजा लेते हैं, ढोलक बजा लेते हैं। इसके अतिरिक्त कुकर की कुकर की जो सीटी आती है या टॉवल से भी गिटार बजाने का अभिनय कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि इन्हें गिटार और बांसुरी जो है बहुत पसंद आती है। वहीं एक श्रोता को हारमोनियम, ढोलक, तबला, मजीरा मंदिर में सत्संग में बहुत साल तक बजाया है। अभी ही 2 महीने पहले रामकथा का आयोजन किया था, तब स्टेज पर पूरे 9 दिन पखावज मंजीरे बजाई, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे बांसुरी और सैक्सोफोन वाद्य यंत्र बहुत पसंद है। और एक श्रोता को मुझे सभी वाद्य यंत्र पसंद है, लेकिन सैक्सोफोन और सितार को जिस तरह हमारे फिल्मी गानों में बजाया गया है तो वो कालजयी बन गए।

हैं और सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। वहीं एक छोटा लिखती है कि मुझे गानों में बांसुरी की आवाज बहुत अच्छी लगती है, पक्षियों का कलरव बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जब ज्यादा चींची करती है तो गुस्सा भी आने लगता है। अरे क्या बात है। वहीं एक छोटा लिखती है कि मैं हारमोनियम बजाता हूं, चूंकि ये रीड वाला वाद्य यंत्र है अतः इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड भी बजाता हूं। वैसे मुझे संतूर की आवाज भाती है, दिल दिमाग को झंकृत कर देती है। वहीं एक श्रोता को घोड़े की टापों की आवाज अच्छी लगती है और एक श्रोता ने लिखा है कि बांसुरी की आवाज और टेबल को बजा के हम यूं तो गीत गा लेते हैं और कभी कभी ढोलक की आवाज के साथ भजन भी हम गाते हैं जो कि अच्छे लगते हैं। एक श्रोता को प्रकृति को सुकून देने वाला संगीत सुनना है तो सुबह 5 बजे उठकर बाहर चले जाइए, वहां बहुत सारे पेड़ और चारों तरफ हरियाली होगी, पानी से भरा तालाब फिर नदी होगी, तो आपके मन को कितनी शांति मिलेगी ऐसा जानते हुए जब आप संगीत सुनेंगे तो उस संगीत का तो कहीं उदाहरण दूसरा मिलेगा ही नहीं, ऐसा आप लिखती हैं। और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम पाकीज़ा, गीतकार कैफी आजमी हैं, संगीतकार गुलाम मोहम्मद साहब हैं। इस गाने के अंत में जो गाड़ी की आवाज है यानी सीटी जो बजती है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है और दिल को एक अलग ही भाव पैदा कर देती है हमारे दिल में।

दोस्तों, समय अभाव के कारण ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पाए और इसी कारण गाने के अंत में जो ट्रेन की आवाज हमें सुनाई देती है वो आपको नहीं सुनवा पा रही है। फिलहाल सुरीला सफर कार्यक्रम का अब वक्त खत्म हो चला है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

मुझे कुछ होता है, आंखों में आंखें ना डालो, मुझे कुछ होता है।

0: दुनिया में हम जैसे आशिक भी कहाँ होते हैं। ठोकर से और भी अरमाए जवां होते हैं, दुनिया में हम जैसे आशिक भी कहाँ होते हैं।
1: अरे वाह रे मजनू,
0: लैला लैला करेगा, लैला ओ लैला, लैला लैला करेगा, ठंडी आहें भरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तुम

0: तो बताओ हमको,
1: डूब मरो,
0: डूबेगा नहीं तरेगा, छप छप छप छप छप छप, डूबेगा नहीं तरेगा, प्यार से हम नहीं डरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो

0: सहेली
1: सभी सखियों को सभी सहेलियों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार और दीपा आपको भी नमस्कार और बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां।
2: जी बिल्कुल, आपकी शुभकामनाएं स्वीकारते हैं और अपने सभी सखियों को, श्रोता भाइयों को और चंचल आपको भी नमस्कार, हेल्दी नमस्कार।
1: हाँ।
2: और बहुत सारी शुभकामनाएं क्योंकि बहुत खास दिन है आज।
1: बिल्कुल, मुझे इंतजार था कि आपका हेल्दी नमस्कार क्यों नहीं आया।
2: वो कैसे छूट सकता है, वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। सब चीज चलती रहेंगी, मतलब हर चीज, परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, कभी खुशी वाले दिन होंगे जैसे आज का दिन है।
1: हाँ।
2: त्योहार आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन
1: और इनमें सेहत बड़ी जरूरी है, इसीलिए आपके हेल्दी नमस्कार का मुझे हमेशा इंतजार रहता है।
2: चलिए,
1: तो चलिए विषय बताते हैं आज के। आज कथा सुधा में हमारी सखियां और सखा सुनेंगे कहानी बड़े भाई साहब, इसका पहला भाग
2: जी।
1: इसके अलावा आज प्रादेशिक व्यंजनों में हम कश्मीरी व्यंजन की बात करेंगे, नदरी यखनू यानी कमल ककड़ी, उसे कश्मीरी भाषा में नदरी यखनी, नदरू यखनी कहा जाता है। तो इससे क्या क्या बन सकता है, इसके क्या क्या व्यंजन बनते हैं, हमारी सखियां हमारे साथ जरूर साझा करेंगी। और खुशी का दिन है भाई, स्पेशल दिन है, खास दिन है, वो क्या है ये आप बताइए।
2: देखिए, आज है हिंदी दिवस। और सुबह से हमारे सभी श्रोता सुन भी रहे हैं कुछ खास हिंदी के, हिंदी से, शुद्ध हिंदी से भरपूर वाले शब्दों से भरपूर वाले गीत हम भी यहाँ पर कुछ आपके लिए प्रस्तुत करेंगे और जानेंगे कि क्या इसकी विशेषता है। और साथ में और भी एक खास बात है जो सारी दुनिया,
1: भाई पूरा देश
2: मना रहा है,
1: क्योंकि आज बहुत खास दिन है ना दीपा, और ये मेहमान तो हम सबके घर में आते हैं, लेकिन आज जो आने वाले हैं वो सबसे खास मेहमान है, क्योंकि वो है विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति, हमारे गणपति बप्पा, आज उनके आगमन का दिन है।
2: बिल्कुल, और चंचल सच कहूं तो गणपति उत्सव सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये वो पल है जब हम अपने घर में सिर्फ बप्पा की मूर्ति नहीं लाते हैं, हम लाते हैं खुशहाली। तो वो जो हंसी पूरे साल घर में गूंजती रहती है, हम लाते हैं मंगल कामनाएं कि हमारा घर, हमारे अपने, हमारे खुश रहें, सलामत रहें। गणपति उत्सव में हम खुशहाली और मंगल कामनाएं घर पर लेकर आते हैं।
1: बिल्कुल, महाराष्ट्र में जो एक रीति रिवाज जिसे हम कहें कि सब लोग छोटी छोटी सी मूर्तियां अपने घर में लेकर आते हैं और बप्पा आते हैं तो सिर्फ उनकी एक मूर्ति नहीं आती है, घर में खुशियों की रोशनी आती है, भरोसा आता है कि अब जो होगा सब ठीक होगा, बप्पा सारी, कहते ना कि तकलीफों को, परेशानियों को हर लेंगे। आंगन में

0: रोशनी आती है, दिल में एक अजीब सा सुकून आ जाता है पापा के आने से।
1: ये बात तो
0: बच्चों की जो हंसी है वो थोड़ी तेज हो जाती है, और फिर भाई बच्चों की हंसी या खुशी है, या हम सब बड़ों की भी, वो इसलिए भी तेज होती है कि रसोई से मोदक की खुशबू आने लगती है। और ये कह सकते हैं कि एक खासियत है इस पर्व की और असली रोशनी भी है। तो हम सभी बोले ना, दिल से सब मिलकर बोलते है ना, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।
1: और बप्पा के आने का मतलब सिर्फ दिए या लाइटें, मतलब कि घर में रोशनी है, सिर्फ ये नहीं, जब मन रोशन होता है ना चंचल, तब हमारी पुरानी नाराजगी भी हम भूल ही जाते हैं कहीं, है ना? सही बात। और जब पूरा परिवार एक साथ आरती में खड़ा होता है, या हमारी सोसाइटी में जब सब एक साथ खड़े हाँ। होते हैं, तो सच में ऐसा लगता है पप्पा हमें यही सिखाने आए हैं कि शुरुआत करने से कभी मत डरो और हर नया काम शुभ है अगर आपकी नीयत साफ है।
0: तो बस बप्पा के आज का जो दिन है, इसमें हमने घर को तो खूब सजाया ही है, क्यों ना अपने मन का भी कोना हम थोड़ा सा साफ कर लें, उसे सजा लें प्रेम की भावना से, अच्छाई से, और पुराने जितने भी मतभेद हैं उसे भुलाकर हम भी इस खुशी के उत्सव में शामिल हो जाएं। और महाराष्ट्र में तो 11 दिन तक ये उत्सव चलने वाला है, हम भी शामिल होते हैं।

0: फिर तो ये तो हुआ गणपति उत्सव के रंग में डूबा हुआ गीत, और अब बारी है कार्यक्रम में कथा सुधा की, तो सुनते हैं कहानी।
1: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
2: कथा सुधा में आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग।
3: मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की, वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द का वाक्य 10-20 बार लिख डालते, कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर से नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिनमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वो 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कभी कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर बार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका

0: पहला सवाल होता, कहां थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि रोष मिश्रित शब्दों में मेरा सत्कार करें।
1: अरे इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, एरा गैरा नथु खैरा सभी अंग्रेजी में विद्वान हो जाते हैं। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने घोंगा हो भाई कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तुम अपनी आंखों से देखते हो मगर नहीं देखते जो तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहा हूं। उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल पढ़ा रहता हूं। फिर तुम कैसे आशा कर सकते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो दो ही तीन साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो?
0: मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों न घर चला जाऊं? जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं? मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे दो घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। छटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे हाथ मुंह धोकर नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल, 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कॉम्पोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वो दांव घात, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, फिर भी

0: जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में अव्वल आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आपकी वो घोर तपस्या कहां गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में प्रथम भी हूं। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हां, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ा। भाई साहब का वो रोब मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब से ये हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं है। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी ससहमत बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े।
1: देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजों को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया, कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी जो चाहे करे पर अभिमान न करे, इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा, उसे यह अनुमान था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में ये हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो, अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशान पड़ जाता है, उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशान खाली न जाए। मेरे फेल होने पर न जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा, जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं, 8-8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब, सफा चट, सिर्फ भी ना मिलेगा, सिफर भी। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कौड़ियों चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है, इन अभागों के नाम भी ना जुड़ते। एक ही

0: नाम के पीछे दोयम तेयम चहारम पंचम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता, और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वो तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पिर की बातों के पढ़ने से क्या फायदा। इस रेखा पर वो लंब गिरा तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना तो ये सब खुराफात याद रखनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब कॉपी सामने खोले कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है, और उसके कारोबार में उन्नति होती है। और जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे। जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्ने में लिखने की जरूरत, मैं तो इसे हिमाकत समझता हूं। ये तो समय की किफायत नहीं बल्कि दुरुपयोग है। व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया। हम जो चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले। मगर नहीं, आपके पन्ने 4 रंगने पड़ेंगे चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है, उल्टी बात या नहीं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताएंगे।
1: स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर भी ये तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है।
2: कथा सुधा में आज आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। आज आपने सुना इस कहानी का पहला भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है। छोटे भाई जयंत पात्रिकर, बड़े भाई साहब जी श्याम, संकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से

0: हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: इस संदेश से पहले सखियों आपने कथा सुधा में सुना बड़े भाई साहब की पहली कड़ी, और अब एक अंतराल का समय हो चुका है।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली, और इस अंतराल से पहले हमने सुनी कहानी और उससे पहले हमने बात की गणपति उत्सव की। बहुत सारे संदेश हमारे सखियों ने भी भेजे हैं
1: जी, बहुत सारे आए हैं
0: तो उनके संदेश भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक गीत सुन लें।
1: चलिए।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत और वैसे ही खूबसूरत संदेश भी हमें मिले हैं।
1: बहुत सारे संदेश और पुनः हम सभी अपनी सखियों को, श्रोता भाइयों को गणेश चतुर्थी और ये आने वाले 10 दिनों तक जो आप हर्षोल्लास के साथ मनाने वाले हैं इस त्योहार को, उसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। और ये पहला संदेश हम पढ़ रहे हैं कि गणपति की स्थापना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि घर आंगन में खुशियों, शांति और समृद्धि के आगमन का शुभ अवसर है। बप्पा के स्वागत के साथ वातावरण भक्ति और उल्लास से भर उठता है और साथ में ये भी लिखते हैं कि उनके आगमन से परिवार में प्रेम, एकता, उत्साह की नई रोशनी फैलती है। और आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ बप्पा का हम स्वागत करें। इसी भावनाओं के साथ बहुत सारे संदेश।
0: हाँ, और हमारे श्रोता भाई ने या सखी है, उन्होंने ये भी लिखा है कि महाराष्ट्र में ये उत्सव बड़े हर्षोल्लास से, जोरों शोरों से और बहुत विशाल तरीके से मनाया जाता है। बड़े बड़े पंडालों में गणपति की मूर्ति स्थापित की जाती है, लोग अपने परिवारों के साथ इस मंडप में भी जाते हैं, दर्शन करते हैं और अपने पूरे परिवार के लिए मंगल कामनाएं मांगते हैं। और हमारे एक संदेश में हमारे शोधा बहन लिखती हैं कि हमारे बेटे बहू ने भी गणपति महाराज की स्थापना की है, गणपति भगवान सभी की मनोकामना पूरी करें।

0: बिल्कुल। और इसी तरह की बातों के साथ एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि बहुत जरूरी है कि हम सब इको फ्रेंडली गणपति का इस्तेमाल करें और जितना हो सके इस बार अपने घर को इको फ्रेंडली अपने घर पर लेकर आए, उनकी मूर्ति और उसी तरह से सजावट भी करें। तो भाई ये बात पे ध्यान रखने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है।
1: तो आपने बात पर ध्यान देने की बात की, मेरा ध्यान गया एक ऐसे संदेश पर जिसमें लिखा गया कि पिछले कई सालों से गणेश चतुर्थी के दिन हम घर पर ही मिट्टी लाकर गणपति जी की मूर्ति बनाते हैं।
0: क्या बात है।
1: और ये अजमेर के

0: कितनी अच्छी बात है। देखिए हमारे ही बीच में अगर एक कोई बात समाज समझा रहा है तो एक और हमारे घर सखी है या श्रोता है जो हमें उस बात को करके भी दिखा रहे हैं। तो अपना परिवार इसी तरह से सखी सहेली का समृद्ध परिवार है।
1: और लगभग ये मिली जुली बात हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है कि घर में हर्ष उल्लास का माहौल रहता है, सकारात्मकता आती है, नई ऊर्जा आती है। तो इसी ऊर्जा के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की तरफ।

0: कितने अच्छे शब्द थे इस गीत के और बहुत सुंदर हिंदी का लालित्य इसमें देखने को मिला. और आज 14 सितंबर है और ये सिर्फ एक तारीख नहीं होती दीपा कि बस कैलेंडर पे हमने जो तारीख देखी उस तरह से नहीं है, बल्कि अपनी भाषा, संस्कृति और पहचान को याद करने का भी बहुत सुंदर अवसर होता है. और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं.
1: बिल्कुल, हिंदी यानी एक ऐसी भाषा जिसमें अपनापन है, भावनाओं की गर्माहट है और दिल की बात को सहजता से कह देने की ताकत भी होती है.
0: बिल्कुल,
1: कभी ये माँ की लोरी बन जाती है और अपने कानों में उतरती है, कभी कविता बनकर मन को छू जाती है और कभी किसी कहानी के किरदारों में हमें अपना जीवन दिखाई देने लगता है, या कभी किसी गीत के बोल जैसे सीधे अपने दिल को उतर जाते हैं ना. बस कुछ ऐसी ही है ये भाषा.
0: और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया. इस ऐतिहासिक दिन की याद में ही हर साल 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिवस के रूप में हम मना लेते हैं. और हिंदी बहुत खूबसूरती सिर्फ उसके इतिहास में नहीं है इसकी, बल्कि उसकी क्षमता में है जो अलग अलग लोगों को एक दूसरे से जोड़ देती है.
1: बिल्कुल, और हिंदी ने दूसरी भारतीय भाषाओं से बहुत कुछ ग्रहण भी किया है और बदले में उन्हें भी अपने शब्दों और अभिव्यक्तियों से समृद्ध किया है. यही तो हमारे देश की खूबसूरती है चंचल, कि यहाँ भाषाएं अलग हो सकती है लेकिन भावनाएं हमेशा

0: एक दूसरे से जुड़ी रहती है।
1: और हिंदी का रिश्ता पता है हमारे फिल्मी गीतों से भी बड़ा गहरा था। हाँ। अभी जो हम गीत सुन रहे थे उसमें बड़ा अच्छा ला लेते था कविता का। और रेडियो पर जैसे ही कोई पुराना गाना बजता है, चाहे उसमें प्रेम हो, विरह हो, जीवन की उम्मीद हो, मतलब हर भावना को बहुत खूबसूरती से हमारे सामने परोसा जाता है और बहुत मधुर संगीत होता है। बरसों पुराने गीत जब हम सुनते हैं ना, तो हमें हमेशा अपने से लगते हैं।
0: बिल्कुल, ये बात तो
1: क्योंकि मिट्टी से जुड़े हुए लगते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और आज हिंदी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है चंचल, दुनिया के बहुत सारे देशों में हिंदी बोली पढ़ी और समझी जाती है। इंटरनेट हो या सिनेमा, टेलीविजन या सोशल मीडिया ने हिंदी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में एक नई भूमिका इन सब ने निभाई है।
1: तो देखो एक कितना सुंदर संदेश हमें मिला है, हिंदी महज भारत की नहीं बल्कि दुनिया की प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी भारत की पहचान भी है और सम्मान भी है। और जो अन्य भारतीय अन्य देशों में बसे हुए हैं उनको जोड़ने का एक काम करती है। वैसे तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन उन्होंने 10 जनवरी गलत तारीख लिखी है। आगे लिखते हैं कि लेकिन भारत में हिंदी दिवस को एक खास दिन तय किया गया है। भारत में 22 भाषाएं और 72,507 लिपि हैं। बहुत बड़ा एक आंकड़ा है, उन्होंने लगभग कि हम कह सकते हैं कि ऐसा है। और इतनी सारी भाषाओं की विविधता के बीच हिंदी ऐसी भाषा है जो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ देती है।
0: ये बात तो बिल्कुल सही है। और एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि इस दिन हिंदी भाषा के सम्मान, उसके प्रचार प्रसार और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए ये दिन समर्पित है। शिक्षण संस्थाओं में इस दिन हिंदी दिवस पर भाषण होते हैं, निबंध लेखन, वाद विवाद और कविता पाठ जैसी प्रतियोगिताएं ये आयोजित की जाती हैं संस्थानों में। और भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं।
1: और दीपक, कोई भी भाषा तब तक जीवित या समृद्ध रह सकती है तब तक उसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में सम्मान के साथ इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। दूसरी भाषाएं सीखना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अपनी भाषा से जुड़े रहना यह बहुत जरूरी चीज है।
0: बहुत ज्यादा जरूरी है। हम विदेश की भी कई भाषाएं सीखते हैं क्योंकि काम काज के चलते आजकल वैसी भी जरूरत हो गई है। लेकिन बाहर जो देश के विदेश में रहते हैं हमारे परिवार के कोई जन, तो ये देखा सुना है कि वो लोग घर में हमेशा कहते हैं कि नहीं, हमारी जो भाषा है, जो हमारे घर की जो भाषा है हिंदी भाषा, वो अपने बच्चों को आना बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: बिल्कुल, क्योंकि ये भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं होती, हमारी स्मृतियां होती हैं और हमारे संस्कार होते हैं। और देखिए संदेश भी बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं। कितनी सुंदर दो पंक्तियां लिखी हैं हमारे किसी श्रोता ने। निज भाषा उन्नत है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहिए की सूल। और आगे उन्होंने सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं, बहुत सारे संदेश हैं। लेकिन पहले एक गीत सुन लेते हैं जो इसमें भी हिंदी का बड़ा सुंदर लालित्य देखने को मिलता है।
0: चलिए।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना, सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया, ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना,
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर,
0: सिर्फ विविध भारती पर।
1: तो भाई अब हम थोड़ी सी व्यंजन की बात कर लें, खाने पीने की बात। भाई मोदक की बात अलग हुई, लेकिन कुछ अलग व्यंजन भी तो होना चाहिए। और क्योंकि अभी श्रृंखला कश्मीरी व्यंजन की है, तो कश्मीर में ना कमल ककड़ी बहुत होती है।
3: बहुत होती है और बहुत प्रकार से वो बनी जाती है।
1: हाँ,
3: लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं,
1: मतलब इसका सूप भी बना सकते हैं, पकौड़े भी बना सकते हैं, इवन सब्जियां भी बहुत सारे तरह से लोग बनाते हैं अपने अपने तरीके से।
3: और खासतौर पर चंचल, जिनको जिनके घर में प्याज और लहसुन नहीं खाया जाता है, नहीं पसंद कर रहे हैं, या किसी कारण से कुछ दिनों के लिए बंद है, तो वो नदरू यखनी बना सकते हैं
1: जी।
3: ये जो कश्मीरी का बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है, ये दही की ग्रेवी में बनाया जाता है, जो कि बिना प्याज लहसुन के, जैसे अभी हमने आपको बताया। क्या लेना है इसमें, 500 ग्राम आप नदरू यानी कमल ककड़ी लीजिए, दही लेना है 500 ग्राम अच्छा सा फेटा हुआ, घी या तेल ले सकते हैं 3-4 बड़े चम्मच, हींग लेना है थोड़ा सा, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, हरी इलायची, ये सब दो तीन, लौंग 4-5, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, सौंठ का पाउडर लेना है छोटा सा चम्मच 1, और सौंफ पाउडर अगर आपको पसंद है तो 2 बड़े चम्मच ले लीजिए, बेसन 1 बड़ा चम्मच, दही को फटने से बचाने के लिए, जो दही को हमें फटना है ना, तो फटे ना, इसलिए हमें उसमें डालना है। अब बनाने की विधि यूं
1: और
3: है,
1: जो भी हम सामग्री हमने बताई है अपने स्वाद के अनुसार अब इसे थोड़ा सा घटा बढ़ा सकते हैं।
3: बिल्कुल। अब सबसे पहले नदरू को साफ करना होता है, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है।
1: हाँ।
3: तो इसको छील करके अच्छे से धो लीजिए, और इसे तिरछा या गोल टुकड़ों में अगर काटते हैं ना, तो पूरी अंदर तक की मिट्टी, जो
1: उसके छेद में अंदर मिट्टी घुस जाती है, चिकनी मिट्टी होती है,
3: तो वो सब बाहर निकल
1: आसानी से निकल जाएगी।
3: अब उबालना है इसे, तो कटे हुए नदरू को पानी में 10 मिनट तक उबाल लें, इसके बाद इन्हें पानी से निकालकर छान लेना है। अब एक कुकर या कढ़ाई में घी गर्म करें, इसमें हींग और सारे खड़े मसाले जो आपके घर में पसंद किए जाते हैं वो सब डाल लीजिए। फिर मसाला मिलाना है, तो उबले हुए नदरू को घी में डालें और 2 मिनट तक भून लीजिए। अब इसमें सौंठ पाउडर, सौंफ पाउडर और थोड़ा सा नमक मिलाकर अच्छी तरह चला लीजिए। थोड़ा पानी डालकर कुकर की 2-3 सीटी आने तक बनाएं, पका लीजिए, या तब तक कि जब तक कि कमल ककड़ी थोड़ी
1: नरम ना हो जाए
3: जी। जो दही का मिश्रण अब तैयार करना है, 1 कटोरे में फैटा हुआ दही और बेसन को थोड़ा सा पानी मिलाकर अच्छी तरह फैट लेना, ताकि कोई गांठे उसमें ना पड़े। उसके बाद ग्रेवी बनानी है, तो कुकर का प्रेशर जब खत्म हो जाए तो ढक्कन खोल लीजिए और गैस को धीमा करें या चालू रखें, और लगातार चलाते हुए दही का मिश्रण इसमें धीरे धीरे कढ़ाई में, या कुकर में अगर आप बना रहे हैं तो कुकर में डालना है, लगातार चलाते रहना है ताकि दही इसमें फटे ना। और जब ग्रेवी में उबाल आ जाए और ऊपर घी या तेल ऊपर तैरने लगे, तब 5-7 मिनट तक धीमी आंच पर और पकने दीजिए। आपकी

0: नदरू यखनी तैयार है।
1: एक और कश्मीरी व्यंजन हमारे पास आई है विधि इसकी, इसमें बताया गया है कि कमल ककड़ी एक
0: इंग्लिश में लोटस स्टेम भी बोलते
1: हैं। हाँ, और वहां की ये पारंपरिक शाकाहारी डिश है और इसे दही की ग्रेवी में पकाया जाता है अक्सर। इसको पकाने के लिए 2 से 3 कप कटी हुई ताजी दही, 1 कप सरसों, लगभग उसी तरह की ये विधि इन्होंने बताई है। और इन्होंने बताया कि मध्यम आकार के टुकड़े काटकर उबाल लें और फिर 10 मिनट तक पानी में उबालें, जैसा कि पिछली रेसिपी में भी था। लेकिन इसमें ये बताया गया कि ये खासतौर पर घी या सरसों के तेल में से पकाया जाता है, उससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और जैसा कि इसमें पहले आपने बताया कि बेसन इसलिए मिलाना है ताकि दही ना फट जाए, तो अगर कमल ककड़ी आपको बनानी है तो इन सब बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा, क्योंकि हमारे पास रेसिपी सिर्फ सब्जी की आई है, आप कमल ककड़ी के बहुत स्वादिष्ट पकौड़े भी बना सकते हैं, इसका कमल ककड़ी का सूप भी बन सकता है। तो ये तो ही कमल ककड़ी के अलग अलग व्यंजन की बात।
0: कमल ककड़ी और चने की दाल, उसको मिला के दाल भी बनती है।
1: हाँ, तो अलग अलग संयोजन से अलग अलग एक स्वाद तैयार हो जाता है। इसी तरह से हमारी बातें, रेसिपी, श्रोताओं के संदेश और गीतों को मिलाकर हमारे जो प्रोग्राम का जायका है वो बन जाता है। तो एक गीत सुन ले,
0: चलिए।

0: प्रेम पुजारी फिल्म के लिए इस गीत को गाया था किशोर कुमार ने, और इस गीत को लिखा था गोपाल दास नीरज ने। और जब मैं इस गीत को सुन रही थी ना, तो मुझे याद आया कि आज हिंदी दिवस है, और हमने भी कोशिश की कि हम कुछ ऐसे गीत बजाएं जिसमें हिंदी का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया। ऐसा ही ये गीत था।
1: बिल्कुल।
0: और गोपाल दास नीरज ने बहुत सारे गीत ऐसे लिखे हैं ना जिसमें हिंदी की इतनी सुंदर शब्द रचना है, और बाद में उन शब्द रचनाओं के यानी कि जो भी उनके लिखे गीत थे या कविताएं थी, उन्हें इतने सुंदर तरीके से गीतों में ढाला गया ना, वो गीत आज भी यादगार बन गए हैं।
1: और नीरज जी के साथ और भी फहरिस्त में लंबी लंबी फहरिस्त है, जैसे कि भरत व्यास, पंडित नरेंद्र शर्मा, कवि प्रदीप, शैलेंद्र, वसंत देव, ये सारे वो गीतकार हैं जिन्होंने हमारी हिंदी फिल्मों के लिए सुंदर रचनाएं दी हैं। चंचल,
0: तो भाई इन रचनाओं को तो हमने सुना, और इतना समय नहीं कि बहुत सारी रचनाएं हम सुना सके, लेकिन कुछ चुनिंदा गीत हमने शामिल किए, और बहुत सारी बातें करते गीत सुनते कार्यक्रम का समय पूरा हो गया, और घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही हैं कि हमारे जाने का समय हो गया। तो बस लेते हैं विदा
1: आप सभी को, दीपा माहेश्वरी और
0: चंचल वर्मा का नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

अंग प्रति अंग शुभांग सुहावे नैन अधर कटि नृत्य दिखावे।